एफएम की 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 12 तारीख, तदनुसार ईस्वी सन 2026 के जून महीने की 2 तारीख। प्रातः के 5:58 हुए हैं। आज की सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ

सीता जी की माता के मन में संशय पैदा हुआ कि देखने में सुकुमार बालक राम उस प्रचंड धनुष को कैसे तोड़ सकेंगे। इस पर राम जी के महत्व को जानने वाली एक चतुर सखी ने रानी को समझाया, हे रानी, तेजस्वी व्यक्ति देखने में छोटा हो सकता है, किंतु वो वस्तुतः छोटा नहीं होता। मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता जिस मंत्र के वश में हैं, वो भी तो अत्यंत छोटा होता है। इसलिए देवी, संदेह त्याग दीजिए। सखी के वचन सुनकर रानी की उदासी मिट गई और विश्वास बढ़ गया। उधर उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से विभिन्न देवताओं से विनती करने लगीं। अपने हृदय की बढ़ती व्यग्रता को पहचान कर सीता जी सकुचा गईं और सोचने लगीं कि यदि तन मन वचन से मेरे चित्त की श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुरक्ति है तो वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने निश्चय कर लिया कि या तो वे श्री राम को ही वरेंगी अथवा स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर देंगी।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कान। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम समर्पण। इसमें सबसे पहले आइए सुनते हैं आशा भोसले को।

कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद 6:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा, जिसमें आज की कलाकार होंगी शाश्वती मुखर्जी। श्रोताओं, आप सुन सकेंगे कार्यक्रम जोहार चाईबासा प्रातः 7 बजे से। 8 बजे समाचार प्रभात का प्रसारण होता है और 8:15 बजे मॉर्निंग न्यूज, 8:30 बजे प्रादेशिक समाचार होंगे, 8:40 पर लोक संगीत का कार्यक्रम माटी की महक, पूर्वान्न है 9 बजे आज का अविविधा कार्यक्रम होगा, 9:30 बजे फिल्म संगीत सुनिएगा कार्यक्रम रसरंजन में, 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग जिसके प्रायोजक हैं NCERT, 10:30 बजे से आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे संध्या 5 बजे तक, 5:02 पर होगा कार्यक्रम विवरण सांध्यकालीन सभा का, 5:05 पर गुलदस्ता प्रोग्राम, इसमें आज आप सुन सकेंगे एक ही संगीतकार की तर्ज पर चंद गीत, 5:30 बजे किसानवाणी कार्यक्रम होगा, 6 बजे मुख्य समाचार, 6:02 पर बंगला कार्यक्रम सुन सकते हैं जिसका नाम है 7 रंग, और 6:30 बजे संथाली कार्यक्रम होगा। संध्या 7 बजे प्रादेशिक समाचार होंगे, उसके बाद जिले में आजकल, तदंतर आपकी पसंद कार्यक्रम होगा रजनीगंधा कार्यक्रम 8:00 से, 9:45 समाचार संध्या का प्रसारण होता है, 9:00 न्यूज 8:09, 9:15 आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम होंगे, 10 बजे इस केंद्र से सुनिए गज़लों का कार्यक्रम महफिल, 10:30 बजे फिल्म संगीत होगा का कार्यक्रम सुरों के रंग में, 11 बजे हिंदी समाचार, 11:05 पर इंग्लिश न्यूज, और आज की सभा संपन्न होगी 11:11 पर। तो ये था आज का कार्यक्रम विवरण।

स्टूडियो की घड़ी में इस समय 6:44 और 25 सेकंड हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज की कलाकार हैं शाश्वती मुखर्जी।

सुगम संगीत इस दैनिक कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे एक ही कलाकार शाश्वती मुखर्जी को।

प्रातः के ठीक 7 बज रहे हैं। पेश खिदमत है आज का कार्यक्रम जोहार चाईवासा, इसमें आज मैं आपके साथ हूँ, आज का आरजे एसबी सिंह। पेश खिदमत है सबसे पहले नगमा, फिल्म तोहफा का शीर्षक गीत, आवाज़ें आशा भोसले और किशोर कुमार की।

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना।

समाधान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: आले नवागे नेहर में ना बले नवा नुकान परिस्थिति रे बले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहेगे आम बले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ मना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो

0: एकदम परिवार।
1: नाम है रंगबला देवी, गाँव बारे हतो देखा तो घर आई ने हमारे घर बहुत दुख के बात है तो हम बात हो जा है।
0: मुकुम बुरन सिंह तामसाय अनिता तामसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुखुर मिना है यापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा निका
2: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्यान हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मुनीम पुरी ने बागिया तो कि दुना से आरती कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमे बुरुरम गोयान तो जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल में
3: अलिंग मुनी सुरन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिने रो जिता हुरा रे मिने रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिटा हुरा इनका अली आया नु तुम ते ना मिल आप ही लेता ना।
4: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।

इस नगमे के साथ ही समाप्त हुआ चाहता है आज का कार्यक्रम जोहार चाई भाषा। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाई भाषा केंद्र। प्रातः के 8 बजेंगे और आप सुन सकते हैं समाचार प्रभात। कीजिए थोड़ा इंतज़ार।

0: जमाने में हुकुम सिंह को गुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हरे घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल, और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
3: Both sides underscored the importance.
4: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउं लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउं लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
5: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
6: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
7: 2 to 3 branches also।
5: वहीं प्रधानमंत्री जनधन

0: मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
2: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरू भाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नवनियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अभी रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात और

0: ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमरीका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कहा, म्यांमा भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउंग क्लाइंग सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under-18 Asia Cup. Myanmar President Ooh Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defence, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Misri said Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing

0: Heads are likely to roll in the Central Board of Secondary Education as the Education Ministry has initiated an internal crackdown over irregularities in the on-screen marking system tender, reports the Times of India in its top story. The Supreme Court has rejected the plea to computer-based NEET re-exam on June 21, writes the Tribune. For the first time, more than 10,000 girls have cleared G-Advanced 2026, the gateway to IITs and premier engineering institutes, and with one in four girl candidates clearing the exam, this all also marks a new record, writes the Indian Express. Myanmar President U Min Aung Hlaing visit to India is widely covered on the front pages of dailies. Myanmar vows its territory won't be used to threaten India during PM meet, headlines the Pioneer. Security tops India-Myanmar dialogue agenda, writes Hindustan Times. Monsoon misses first June onset date in Kerala and is now likely in 2 to 3 days, reports the Statesman. The Pioneer quotes a report that reveals Indian employees take fewer annual leaves than their peers in Asia-Pacific markets, with only 17.2% Indian workers using 100% of their leave. Daily Zappe tributes to Indian cinema's renowned playback singer Suman Kalyanpur, who died on Sunday. The silken voice of Hindi cinema that touched hearts falls silent, headlines a Hindu. And finally, the latest National Family Health Survey reveals that Indian women using the internet has doubled to 64% in 4 years. Among men, it increased from 51.2% to 80.5%, reports the Times of India. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Myanmar President U Min Aung Hlaing says his country will not allow its territory to be used against India's security interests. India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under-18 Asia Cup. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में जमीन के रिकॉर्ड होंगे डिजिटल। मुख्यमंत्री ने भूमि अभिलेखों के एकीकरण और सड़क सुरक्षा की समीक्षा की। पंचायतों में लगेंगे ड्राइविंग लाइसेंस कैंप। राज्यसभा चुनाव को लेकर पहले दिन एक भी नामांकन नहीं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, उम्मीदवार पर केंद्रीय नेतृत्व लेगा निर्णय। गठबंधन ने दोनों सीट पर किया जीत का दावा। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने देवघर में की श्रावणी मेला की तैयारियों की समीक्षा। कहा, श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम जलार्पण कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। धनबाद में विधानसभा की विशेष समिति ने खनन प्रभावित रैयतों को मुआवजा और नियोजन को लेकर की समीक्षा बैठक। प्रभावित परिवारों से लिए गए आवेदन। और राज्य के कई जिलों में आज भी आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना। 8 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिवहन विभाग तथा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में भूमि अभिलेखों के व्यापक डिजिटलीकरण और खास महल भूमि से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण से नागरिकों को भूमि संबंधी अद्यतन जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध होगी तथा विवादों में कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लिए बेहतर सड़क नेटवर्क और रूट चार्ट तैयार करने पर भी जोर दिया। बैठक में सड़क सुरक्षा, IDTR, वाहन निरीक्षण केंद्र, गुड सिमेटिरन योजना तथा गुरुजी आपातकालीन सेवा 1944 को शीघ्र लागू करने समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। झारखंड की दो सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन का दौर जारी है। अब तक एक भी नामांकन नहीं दाखिल हुआ है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उम्मीदवार चयन और चुनावी रणनीति से संबंधित पूरी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। जमशेदपुर दौरे के दौरान परिसदन में मीडिया से बातचीत में बाबूलाल ने कहा कि प्रदेश इकाई ने सभी पहलुओं पर विचार कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। अंतिम निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा।
3: भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट के चुनाव समिति है, लोग बैठे थे, बैठ करके हम सब लोगों ने चर्चा की और केंद्र को हम लोगों ने अवगत करा दिया है। का जो केंद्रीय चुनाव समिति होती है वो फिर तय करते हैं किसको लड़ाना, तो आप केंद्र जब तय करेगी तो आप सब लोगों को अधिकृत रूप से हटा देते।
2: इधर महागठबंधन में कांग्रेस और झामुमो के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मंथन का दौर जारी है। देवघर में पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने श्रावणी मेला की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। आगामी श्रावणी मेला के सफल संचालन को लेकर देवघर और दुमका जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम जलार्पण कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
4: एनएच की तरफ से यह आश्वस्त किया गया है कि डीआरएम आसनसोल से बात करके रेलवे का ब्लॉक लेते हुए ससमय उसको पूरा कर लिया जाएगा। इंटर डिपार्टमेंटल में एनएचएआई, रेलवे और हमारा जिला प्रशासन मिलकर काम कर लेगा। देवघर जिला प्रशासन और दुमका जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों से जो आवंटन की मांग की है उसकी सूची हम लोगों ने प्राप्त कर ली है कि ससमय यह आवंटन जिला को उपलब्ध हो जाए जिससे किसी भी काम को करने में कोई विलम्ब न हो।
2: झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने रांची के नगड़ी और इटकी प्रखंड में हनी वैल्यू चेन परियोजना के तहत संचालित हनी माइग्रेशन सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन और पैकेजिंग व्यवस्था का जायजा लेते हुए उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने तथा व्यवसाय के विस्तार पर जोर दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल airnewsranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विधानसभा की ध्यान आकर्षण विशेष समिति ने धनबाद में खनन प्रभावित रैयतों के मुद्दे को लेकर बैठक की। बैठक की अध्यक्षता टुंडे विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने की। इस दौरान बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल की खनन परियोजनाओं से प्रभावित रैयत परिवारों को मुआवजा, पुनर्वास और नियोजन उपलब्ध कराने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रभावित परिवारों से आवेदन भी लिए गए और विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई। विशेष समिति के अध्यक्ष टुंडे विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि समिति का उद्देश्य खनन कार्यों के कारण भूमि गंवाने वाले रैयतों को न्याय दिलाना है। यह बैठक 3 दिनों तक चलेगी।
5: इस समिति जब से 9 महीना बना था इसी दरमियान 220 करोड़ रुपया भुगतान बीसीसीएल ने सरकार को किया है और वो भी काफी अधूरा है। हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि बीसीसीएल, सीसीएल, डीसीएल जितने भी कंपनी यहाँ सरकारी जमीन को जो उपयोग कर रहे हैं उसका भी राशि दे।
2: रांची प्रक्षेत्र के अपर पुलिस महानिदेशक सह पुलिस महानिरीक्षक मनोज कौशिक ने पुलिस के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध, भूमि अपराध और गुमशुदा बच्चों से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए विशेष अभियान चलाने तथा 10 से 25 जून तक शैक्षणिक संस्थानों में नशा विरोधी जागरूकता अभियान संचालित करने का निर्णय लिया गया।
6: कुछ जो बहुत अच्छे कार्य रांची जिला बल में हुए हैं उसके लिए कुल 23 पदाधिकारियों को आज प्रशस्ति पत्र मेरे द्वारा दिया गया है। जो मादक पदार्थों की सेल या बहुत सारे अच्छे कार्य रांची जिला बल में हुए हैं जहां पे कुछ क्रिमिनल्स को भी पकड़ा गया है कि सिर्फ कैरियर्स ही नहीं बल्कि जो उसका स्रोत है उस पे एक्शन होना चाहिए और जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं उस पे एक्शन होना चाहिए।
2: रांची के वरीय पुलिस

0: पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने पुलिस अधीक्षक यातायात के साथ अल्बर्ट एक्का चौक से अंजुमन प्लाजा तक यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क किनारे अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और फुटपाथ पर वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने सुचारू यातायात व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए।
1: मेन रोड का जो ट्रैफिक है उसको हम लोग, प्रयास है हमारा कि उसको थोड़ा हम लोग हैसल फ्री बनाएं, और जो अनावश्यक कंजेशन जो जगह जगह पे लग रहा है उसको हम लोग रिमूव करें ताकि पब्लिक को आने जाने में आसानी हो। ये सबसे बड़ा चोक पॉइंट पूरे राजधानी का यही है, ये और किशोरगंज चौराहा है, तो हमारा ये प्रयास है कि यहाँ पे जो पार्किंग की व्यवस्था है उसको स्मूथ बनाकर, कुछ बैरिकेडिंग इत्यादि करके, और अपने जो हमारी ट्रैफिक की पुलिस है उनको प्रॉपर ब्रीफिंग करके और उनको डिप्लॉयमेंट करके हम लोग एक अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पे जो है बनवाएं।
0: सरायकेला खरसावां जिले के कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, सक्रिय और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन में एक बड़ा उलटफेर किया गया है। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने जिले के 12 थाना प्रभारियों और पुलिस पदाधिकारियों का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण कर दिया है। खूंटी जिला अंतर्गत मुरहू प्रखंड क्षेत्र में आयोजित 6 दिवसीय मंडा मेला श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। छऊ नृत्य कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने किया। इस दौरान पारंपरिक झूलन अनुष्ठान और दहकते अंगारों पर चलकर शिव भक्तों ने धार्मिक परंपरा निभाई। राज्य के कई जिलों में आज भी आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 8 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री की विभागीय समीक्षा और निर्देश की खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, सीएम का निर्देश, अब राज्य में विद्यार्थियों को साइकिल की जगह इलेक्ट्रिक साइकिल मिलेगी। हिंदुस्तान के शब्द हैं, राज्यसभा चुनाव, झारखंड में पहले दिन एक भी नामांकन नहीं। दैनिक जागरण ने लिखा है, हेमंत खरगे में बातचीत, झामुमो प्रत्याशी की घोषणा आज संभव। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पीडीएस सिस्टम में गुणवत्ता लाने के लिए प्रशिक्षित होंगे अधिकारी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में जमीन के रिकॉर्ड होंगे डिजिटल, मुख्यमंत्री ने भूमि अभिलेखों के एकीकरण और सड़क सुरक्षा की समीक्षा की, पंचायतों में लगेंगे ड्राइविंग लाइसेंस कैंप। राज्यसभा चुनाव को लेकर पहले दिन एक भी नामांकन नहीं, बाबूलाल मरांडी ने कहा, उम्मीदवार पर केंद्रीय नेतृत्व लेगा निर्णय, गठबंधन ने दोनों सीट पर किया जीत का दावा। पर्यटन मंत्री सुदेवे कुमार सोनू ने देवघर में की श्रावणी मेला की तैयारियों की समीक्षा, कहा श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम जलार्पण कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। धनबाद में विधानसभा की विशेष समिति ने खनन प्रभावित रैयतों को मुआवजा और नियोजन को लेकर की समीक्षा बैठक, प्रभावित परिवारों से लिए गए आवेदन। और राज्य के कई जिलों में आज भी आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना, 8 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

ये आकाशवाणी चाईबासा है। अब आइए सुनते हैं लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम माटी की महक, जिसमें आज हम लेकर आए हैं कुरमाली लोकगीत। कलाकार हैं अंगद महतो और साथी।

माटी की महक। इस दैनिक कार्यक्रम में आप सुन रहे थे कुरुमाली लोकगीत। कलाकार थे अंगद महतो और साथी।

विविधा पेश खिदमत है आज का ये कार्यक्रम। इसमें आज मैं आपके साथ हूँ एस बी सिंह।

2 जून, जी हाँ, आज 2 जून है और इसका महत्व, इस पर एक कविता। 2 जून महज एक तारीख नहीं, यह समय के माथे पर लिखा प्रश्न है जो पूछता है, क्या हमने समझा भूख का अर्थ, या सिर्फ शब्दों में बांट दिया दर्द। जहाँ किसी झोपड़ी में आज भी चूल्हा बुझा है और सपनों की रोटियाँ अजली रह गई हैं, यह 2 जून याद दिलाता है कि विकास की चमक के पीछे अभी भी अंधेरा लंबा है। जहाँ उम्मीदें रोज़ 2 जून की रोटी तलाशती हैं, यह दिन सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं, यह संवेदना का आईना है जो हमें दिखाता है कि भूख सिर्फ पेट की नहीं, सम्मान और अवसर की भी होती है। आइए इस दिन को सिर्फ याद न करें, इसे बदलने का संकल्प लें। ताकि हर घर में उजाला हो और हर हाथ में 2 जून की रोटी का हक हो।

0: और कार्यक्रम विविधा में आइए सुनते हैं भेंट वार्ता। विषय है शिशु की देखभाल।
1: डॉक्टर विनीता तिरिया, मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं फिलहाल पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी।
2: तो सबसे पहले तो ये बताइए अभी कि छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनको किस तरह की देखभाल की ज़रूरत होती है?
1: जी ज़रूर, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं वहाँ से एक पीडियाट्रिशियन का काम शुरू होता है, जैसे बच्चे को रिसीव करना, उसके बाद माँ के यहाँ अगर बच्चा स्वस्थ है तो माँ के यहाँ हम डायरेक्टली बच्चे को ट्रांसफ़र कर देते हैं, अगर कोई बीमारी हो तो उनको नीकू में ट्रांसफ़र करते हैं, जो होता है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। आज हम बात करेंगे नॉर्मल बच्चों के बारे में, ठीक है। डिलीवरी होने के बाद बच्चा हुआ, उसके बाद अगर बच्चा सब रिसेसिटेटिव मेजर्स लगा, नॉर्मल उसको जैसे प्रोसेस रहता है वो करने के बाद अगर माँ के पास हम भेज देते हैं, वो वहाँ उस बारे में हम बात करेंगे कि बच्चे का क्या केयर करना है। बच्चे को गर्म रखना है, एक दो दो घंटे में दूध पिलाना है, वहाँ माँ का दूध पिलाना है। अगर सीजेरियन रहता है तो जैसे माँ का दूध थोड़ा कम रहता है, जैसे मिल्क सिक्रीशन में थोड़ा टाइम लगता है, एक दो दिन बाद होता है, तो बच्चे को फॉर्मूला फीड देना है। तो वो डॉक्टर से आपको बताएंगे कैसे दो दो घंटे में कैसे बनाना है, वो दूध की प्रक्रिया अलग है। तो गर्म रखना भी एक है कि उसका सिर में टोपी रहना चाहिए, हाथ के मोजे पैर के मोजे पहनाना है और उसको लपेट के रखना है बच्चे को।
2: मतलब कोई भी मौसम हो
1: लपेट के रखना है, हाँ। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लपेटना है, दो तीन कपड़े से लपेटना है, जो टेम्परेचर पे आप रह सकते हैं बच्चा भी वो टेम्परेचर पे रहेगा, ठीक है। डायरेक्टली बच्चों को पंखा के नीचे नहीं सुलाना है, डायरेक्टली एसी के नीचे नहीं सुलाना है, तो बच्चों को ठंड लग सकती है, ठीक है। फिर ये हुई पहली बात जो टेम्परेचर के बारे में। दूसरा जो मैंने बोला फीडिंग करना है, उसको दो दो घंटे में फीडिंग करना है। सीजेरियन के बाद भी आजकल ऐसा हो गया है कि तुरंत फीडिंग पे आप लगा सकते हैं।
2: अच्छा अच्छा,
1: ठीक है। अब वो तो नई चीज़ें हो गई हैं। और नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो तुरंत पिला देना है, तुरंत दूध पिलाना है। और ध्यान रखना है कि दो दो घंटे या दो से तीन घंटे मैक्सिमम आपको दूध पिलाना ही है बच्चों को, नहीं तो क्या होता है शुगर की कमी हो जाती है। अच्छा। तो उसकी वजह से झटके जैसे हो सकते हैं, अकड़न जो बोलते हैं वो सब हो सकता है, बीमारी वो है। उसके बाद बच्चे को ध्यान रखना है कि बच्चा पेशाब किया कि नहीं किया। नॉर्मली कैसे बच्चे जो पेशाब करते हैं 48 आवर्स ऑफ बर्थ, मतलब 48 घंटे में पेशाब कर लेना चाहिए और 24 घंटे में एक बार पैखाना कर लेना चाहिए बच्चे। अच्छा, को इनकेस नहीं होता है तो अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना है अपने को, ठीक है। तो फिर चौथी बात हो गई कि उसको ज़्यादा छूना नहीं है बच्चे को। जैसे बहुत लोग आते हैं मिलने आते हैं, किस करते हैं तो किसिंग से कैसे गोदी करते हैं, तो बच्चों को आइडियली तो स्टेरिलियम रहता है जो नीला पानी रहता है, दो बार पंप करके उसको निकाल के ही छूना है बच्चों को, नाखून काट के रखना है अपना, तो वो एक बात है। और बच्चों को ज़्यादा छूने तो देना ही नहीं है। बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, वो मतलब मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चों को इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं अभी फिलहाल बेसिक।
2: तो ये छोटे बच्चों को जैसे कि कपड़े से लपेट के रखना चाहिए, किस तरह के कपड़े होना चाहिए?
1: सूती के कपड़े, सूती के कपड़े। कुछ बहुत सारे आते हैं वो बहुत चमकीले कपड़े, सिल्क के कपड़े से ऐसे लपेटते, तो वैसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हो गया बात नहलाना कब है बच्चों को, नहलाना जब जब नाल निकलता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं हम लोग, उसके बाद ही नहलाना चाहिए बच्चों को। 5-7 दिन में निकल जाता है वो।
2: अच्छा, तब तक नहीं नहलाना चाहिए।
1: उसके बाद स्पंजिंग कर सकते हैं। स्पंजिंग बोले तो थोड़ा गुनगुना पानी लेके, कॉटन का एक रुमाल लेके, तो पूरे बच्चों को पोंछ लीजिए आप। अच्छा, ऐसा है।
2: अच्छा, हमारे क्षेत्र में देखा जाता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा तेल मालिश की जाती है, तो क्या तेल मालिश होनी चाहिए?
1: तेल मालिश

0: पाक लेते हैं बाजार से, उससे हल्के हाथों से मालिश करना है बच्चों को।
1: हुँ.
0: और तालू पे जो एंटीरियर फ्रंटनियल रहता है, जो अपने सिर का जो ये सॉफ्ट भाग रहता है, तो उसमें तो तेल लगाना नहीं है, क्योंकि वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और उसका खुला रखना बहुत ज़रूरी है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि
1: अच्छा.
0: वो मान्यता है कि वो लगाएंगे लगाएंगे तो बंद हो जाएगा, तो उसको लगाना ही नहीं है। कान में तेल, नाक में तेल, फिर नाभि में तेल, फिर जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं बच्चों के, वहाँ भी तेल वगैरह कुछ लगाना ही नहीं है वहाँ पे। ऐसा है, हल्के हाथों से बच्चों का मसाज करना है सेंसरी स्टिमुलेशन के लिए। ऐसे मसाज करने से बच्चों के हड्डी बहुत मजबूत हो जाएंगे। ऐसे प्रचलन है वैसा
1: प्रचलन
0: तो
1: है।
0: वैसा नहीं है, तो बिल्कुल हल्के नरम हाथों से मसाज करना है।
1: तो क्योंकि बच्चे जो है ये माँ से फीडिंग करते हैं, है ना, तो माँ का भी देखभाल होना चाहिए, उसको भी खान
0: बिल्कुल
1: पान
0: बिल्कुल
1: में
0: बिल्कुल
1: ध्यान देने की ज़रूरत
0: माँ
1: होगी।
0: का देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि माँ अच्छी रहेगी तो बच्चा अच्छा रहेगा। तो माँ के लिए जो है अभी सब खाना पीना कर सकती है माँ, बस तेल मसाला थोड़ा कम होना चाहिए। लेकिन जैसे बहुत मान्यता रहती है, साग नहीं खाना, टमाटर नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो
1: तेल
0: नहीं
1: नहीं
0: खाना,
1: खाना,
0: हाँ तेल
1: मसाला
0: नहीं
1: नहीं,
0: खाना, वैसा कुछ नहीं है, सब खा सकते हैं।
1: या
0: बस नॉन वेज भी खा
1: वगैरह
0: सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। बस ये है, बहुत स्पाइसी नहीं खाना है, क्योंकि जो इंटेस्टाइन रहता है, जो आंतड़ी रहते हैं, वो प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं उसमें। तो फिर नॉर्मल खाना सब खा सकते हैं, बस तेल मसाला थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए कम करें, बाकी बाकी खाने में कुछ परहेज नहीं है। इनकेस माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो फिर सब खा सकते हैं। क्योंकि माँ का जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड करने में इतने कैलोरीज बर्न होते हैं, माँ अगर अच्छे से खाएगी नहीं तो बच्चे को फिर न्यूट्रिशन भी, थोड़ा दूध सिक्रेशन कम हो जाता है, मिल्क सिक्रेशन, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो माँ को बिल्कुल ज़्यादा और कैलोरी रिक्वायरमेंट हो जाता है, जो नॉर्मल खाने से रहता है उससे ज़्यादा ही भूख लगती है। एज अ मदर मैं भी बोलना चाहूँगी कि 2-3 घंटे में इतनी भूख लग जाती है, आप उसमें भी सब कैलोरीज कम करेंगे, जैसे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, क्योंकि जैसे खाने में क्या सब रहना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब चीज़ें रहने चाहिए। मान लो आप रोटी और लहसुन ही दे रहे हैं, तो फिर न्यूट्रिशन का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होता नहीं है। ऐसा है।
1: तो प्रायः बच्चों में किस तरह की बीमारियां होती है?
0: तो सबसे पहले जो बीमारी है, ये बच्चों को ठंड नहीं, ठंड मतलब से जो मैंने पहले बोला आपको, बच्चों का जो केयर है उनको लपेट के रखना है, ठीक है, उसकी वजह से ठंड लग जाती है, उसकी वजह से भी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, पूरे ठंड बच्चे नीले पड़ जाते हैं, ठीक है। एक है नीला पड़ना, नीला पड़ने के 2 कारण है, या तो बच्चे को ठंड लग रही है, हाथ पैर बिल्कुल नीले पड़ जाएंगे, या तो अगर बच्चा नीला पड़ रहा है, दूध पीते पीते रुक रहा है, उसके पसीना आ रहा है उसके सिर में, तो वो होता है हृदय के प्रॉब्लम, दिल के प्रॉब्लम जो होते हैं वो एक होता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम होता है तो आपको डायरेक्टली पीडियाट्रिशियन को आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में आपको दिखाना चाहिए। फिर दूसरा प्रॉब्लम है ये पीला का प्रॉब्लम, जो जॉन्डिस बोलते हैं हम लोग, बच्चा पीला पड़ जाता है। तो ये भी 2 टाइप के रहते हैं जॉन्डिस, एक फिजियोलॉजिकल एक पैथोलॉजिकल। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, जनरली इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, वो 24 घंटे के बाद होगा, बच्चा 1 दिन का हो गया उसके बाद उसको पीला होता है, वो नॉर्मल रहता है हर बच्चे के लिए, ठीक है। पीला थोड़ा बढ़ेगा बढ़ेगा, 5वें दिन के बाद पीला का जो मात्रा होता है वो कम होता है। इनकेस अगर गार्जियन को, माँ बाप को लग रहा है पीला बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, वो कभी कभी कम हो जाता है, वो ब्लड टेस्ट करेंगे। इनकेस वो बहुत एक रेंज रहता है जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसके लिए फोटोथेरेपी नामक ट्रीटमेंट होती है, जिसमें लाइट के नीचे बच्चों को रखा रहता है, रखाया जाता है। और जो दूसरा पीला है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, वो 24 घंटे के अंदर होता है, तो उसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत सीरियस कंडीशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो बीमारियां हैं, जैसे मैंने बोला बच्चों को ज़्यादा छूने से सेप्सिस रहता है, जो इन्फेक्शन के रेट रहते हैं, वो बच्चों को हो सकता है इन्फेक्शन, जैसे अपन जैसे सर्दी है, खांसी है, बच्चों को छू लिया तो वायरल इन्फेक्शन जो अपने से आए हैं वो बच्चों में भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर जो अपने प्रचलन है, जैसे बहुत जगहों में ऐसा होता है, नाभि में हल्दी लगा लेते हैं, हाँ कुमकुम लगा देते हैं, सिंदूर लगा देते हैं, कुछ वो निकल जाए, वो सूख जाए, उसके लिए वो भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अम्बिलिकल सेप्सिस नाम की चीज़ होती है, और बच्चों में सेप्सिस जो और इन्फेक्शन का रेट इतना ज़्यादा है, जैसे अपने को बुखार होता है तो नई दवाई खाए तो भी चलता है, लेकिन उनका जो इन्फेक्शन होता है पूरे शरीर में ही फैल जाता है। और फिर उसके लिए उनको, जैसे नवजात बच्चों हैं उनको हम घर पर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उनके लिए मतलब नीकू होता है वहीं पर जाकर ट्रीटमेंट होता है, ब्लड टेस्ट करते हैं उसके लिए, उनको अगर इन्फेक्शन कुछ आता है उसमें तो उनको IV एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो सुई लगा के इंजेक्शन देना पड़ता है। तो फिर इन्फेक्शन अगर नवजात बच्चों में होता है तो बहुत सीरियस है। फिर इनकेस और एक जो है, जैसे बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चा बहुत सुस्त है, 2-2 घंटे में दूध पी रहा है, पी नहीं रहा है, बच्चा ले ही नहीं रहा है मुंह में बिल्कुल भी, दूध माँ पिला रही है, तो वो भी एक जो इन्फेक्शन का संकेत है, तब भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। फिर और

0: जैसे बच्चा बिल्कुल अजीब से आंखें कर रहा है ऊपर, हाँ, फिर हाथ पैर टेढ़े कर रहा है, तो वो भी एक रिस्क है कि आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वो हो सकता है वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है कि जो इन्फेक्शन बच्चे में गया है वो दिमाग में चला गया हो। कभी कभी कैल्शियम की कमी की वजह से जो बच्चे 9 महीने के पहले जन्म लेते हैं, जिनको प्रीटर्म बेबी बोलते हैं हम लोग, तो उनमें भी कैल्शियम की वजह से हो सकता है, लेकिन एक आम आदमी को समझ में नहीं आएगा, तो डॉक्टर के पास जाए वो बेहतर रहेगा। वो फिर जो प्रॉब्लम है और बीमारी नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे बच्चा को मैंने बताया 48 घंटे के अंदर उसको पेशाब कर लेना इन केस वो नहीं किया पेशाब, और 24 घंटे के अंदर उसने पैखाना भी नहीं किया, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो क्या नॉर्मल आदमी को समझता नहीं है, वो भी आपको कंसल्ट करना पड़ेगा पीडियाट्रिशियन को एक।
1: तो जब बच्चे बीमार होते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम होता है, उस समय माँ को फिटिंग कराना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे माँ, अगर माँ को भी अगर इन्फेक्शन हुआ है, जैसे मान लो माँ को बुखार है, तो बहुत जगह मान्यता ये है कि माँ से बच्चे को दूध नहीं देंगे, माँ से बच्चे को बुखार हो जाएगा। और बच्चा भी अगर बीमार है, जैसे मान लो बच्चे को कुछ इन्फेक्शन आया है, जैसे CBC CRP जो हम ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें इन्फेक्शन कुछ आया है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो अगर उन इस केस में जो बच्चे को हम लोग नीको में एडमिट करते हैं, तो देखते हैं फिर नली से दूध देते हैं जो राइल्स ट्यूब फीडिंग बोलते हैं, इन केस बच्चा अगर इम्प्रूव कर रहा होता है, बच्चे में इन्फेक्शन है, अगर वो अच्छे से सक कर रहा है, तो फिर उसको दूध देते हैं माँ का दूध।
1: और अगर किसी का ऐसा प्रॉब्लम है कि माँ का दूध नहीं आ रहा है।
0: माँ का दूध नहीं आ रहा है उसके बहुत कारण है, क्योंकि पहला ये है कि एक मेंटल स्टेटस माँ का जो होता है डिलीवरी के बाद, माँ खुद इतनी थकी रहती है, हाँ, तो उसकी वजह से बाकी जगह ऐसा हो जाता है कि मतलब सीजर में जैसे मैंने बोला 2-3 दिन बाद ही मिल्क आता है, नॉर्मल डिलीवरी में तुरंत आ जाता है। प्रॉब्लम ये हो सकता है कि उसका माँ का निप्पल का प्रॉब्लम, जो निप्पल होता है वो थोड़ा निकल के आना चाहिए, जैसे रिट्रैक्टेड निप्पल बोलते हैं, निप्पल बहुत ही अंदर है, वो जो निप्पल का जो भाग है वो आया ही नहीं है, बच्चा किसको खींचेगा, ये एक प्रॉब्लम है रिट्रैक्टेड निप्पल। जैसे हम राउंड्स वगैरह में जाते हैं तो ये बहुत ही आम बात है, वो बताते ही नहीं, वो बोलेंगे मैडम बच्चा दूध पी नहीं रहा है, दूध पी नहीं रहा है, लेकिन बच्चा क्यों दूध नहीं पी रहा, वो बहुत ज़रूरत है देखने के लिए, रिट्रैक्टेड निप्पल। फिर होता है इन्वर्टेड निप्पल, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम है, तो निप्पल अगर अच्छे से बाहर आएगा तो बच्चा शक करेगा, फिर भी इन केस बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो मतलब मान लो बच्चे को इन्फेक्शन है, तो रिट्रैक्टेड निप्पल्स के लिए है, अब डॉक्टर को दिखाइए वो, क्योंकि सिरिंज आते हैं उसे लगा के बताते हैं, नर्सेस बताते हैं उसे खींच के, फिर ट्राई करते हैं कैसे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ऐसा है, क्योंकि माँ दूध अगर पिलाएगी नहीं, दूध का सिक्रीशन तो होते ही रहेगा, होते ही रहेगा, तो कैसे हो जाता है, फिर ब्रेस्ट में दूध इतना भर जाता है तो फिर वो बहुत दर्दनायक होता है, क्योंकि फिर उसको निकालना ही पड़ेगा कैसे भी करके, अगर नहीं होता है तो फिर इन्फेक्शन ब्रेस्ट में भी हो सकता है, ऐसा हो जाता है, फिर बहुत दर्दनायक होता है फिर वो, ऐसा है।
1: और जिस माँ का दूध नहीं आता है, कभी
0: बिल्कुल
1: कभी
0: भी
1: होता है,
0: नहीं।
1: तो ऐसे स्थिति में बच्चे को क्या आहार देना चाहिए?
0: आइडली कैसा है, माँ को दूध आता ही है, क्योंकि जो हार्मोन्स हैं वो तो चालू करते हैं अपना काम, वो चालू ही रहता है, वो बंद नहीं होता है। इन केस होता है कभी कभी हो सकता है माँ को दूध नहीं आ रहा है, जैसे मान लो सिजेरियन सेक्शन के मदर होती है, तो उनको 2-3 दिन बाद ही आता है, तो उसके बाद आप फार्मूला फीड दे सकते हैं, लेकिन आइडियली रिकमेंडेशन फर्स्ट फार्मूला फीड नहीं है, माँ का जो दूध अगर आ रहा है थोड़ा भी आ रहा है, जैसे होता है ना जो कोलोस्ट्रम बोलते हैं हम लोग, इनिशियल ब्रेस्ट मिल्क जो आता है वो पीला गाढ़ा दूध जो होता है, वो बहुत ज़रूरत है देने के लिए बच्चों को, क्योंकि वो बहुत जगह वो भी मान्यताएं हैं कि वो उसको नहीं देना है, उसको फेंक देना है, जबकि वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लिए, वो तो देना ही है। और थोड़ा थोड़ा जैसे आ रहा है दूध, तो एकदम से जैसे सिजेरियन मदर होती है एकदम से आएगा नहीं, तो बच्चे को अगर आप छाती पे लगाएंगे बच्चा शक करेगा शक करेगा, तो जो एक साइकिल रहता है स्टिमुलेशन का ब्रेन को दूध बनाने के लिए, तो फिर वो साइकिल कंप्लीट होगा तो दूध आने लगेगा,
1: आने
0: आने
1: लगेगा।
0: लगेगा। और ऐसा कभी नहीं होता है कि दूध बिल्कुल नहीं है, बहुत माओं को प्रॉब्लम रहती है कि मैं दूध पिला रही हूँ बच्चों को और मुझे लग रहा है कि बच्चे को मेरा दूध कम पड़ रहा है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है OPDs का, तो इस बारे में बताना चाहूँगी कि ऐसे अगर आपका बच्चा दूध पी रहा है, आप 2-2 घंटे में 3-3 घंटे में दूध पिला रही हैं, बच्चा 6 to 8 times यूरिन पास कर रहा है, हाँ, बच्चा सो रहा है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है, तो आपका दूध बिल्कुल अच्छे मात्रा में है, ये जो माँ का दूध जो अभी आइडली रिकमेंडेशन है WHO के थ्रू, 6 मंथ तो कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग है.
1: अच्छा,
0: 6 मंथ कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग है,
1: तब तक कुछ भी नहीं
0: तब
1: देना
0: तक
1: चाहिए.
0: कुछ भी जरूरत ही नहीं है. अच्छा. कुछ जरूरत ही नहीं, जो सारे रिक्वायरमेंट्स है माँ के दूध में हो जाता है. जैसे बहुत जगह प्रथाएं हैं गुट्टी देना, वो सब बिल्कुल भी नहीं देना है. पानी देना, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क तो ऑलमोस्ट 95% पानी है, लेकिन उसके साथ न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फिर जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहते हैं इम्यूनिटी के लिए, जो माँ से बच्चे को जाते हैं, तो ऑलमोस्ट सब रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देता है ब्रेस्ट मिल्क. तो ऊपर से कुछ देने की जरूरत नहीं है. एक बार बच्चा 6 महीने का हो जाता है, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं. हाँ,
1: और ये जो माँ स्तनपान करवाएगी, उस समय बच्चे को कोई खास तरह से लेने की जरूरत है क्या? किस तरह, किस पोजीशन में उसको रखना चाहिए कि?
0: बिल्कुल बिल्कुल, जो ऐसे माँ स्तनपान करा रही है, तो सबसे पहले माँ का पोजीशन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि माँ को खुद बैक रेस्ट लेके अपने पीठ के पीछे पिलो लेके बैठना है. ठीक है, माँ कंफर्टेबल रहेगी तभी वो बच्चे को पिला पाएगी. फिर उसके बाद बच्चे को भी लेना है तो पिलो के ऊपर रख सकती हैं. फिर खुद बैठ, बच्चे के ऊपर जो है झुक के मम्मा को नहीं पिलाना है कभी भी दूध. तो फिर जो बच्चा का जो पेट है वो मम्मा के पेट को टच करना चाहिए, बच्चा का फेस मदर के साइड फेस होना चाहिए, उसके बाद उनको पिलाना चाहिए. क्योंकि इसके पोजीशंस रहते हैं, अभी तो जैसे मैं बता रही हूँ आपको, तो इस वजह से तो बता सकती, दिखाना रहता तो मैं आपको और बेटर इमेजेस दिखा सकती. हाँ, फिर वो है कि बच्चे जो माँ का निप्पल चूसते हैं तो ऊपर का भाग ही दिखना चाहिए, हाफ मून रहता है.
1: अच्छा.
0: हाँ, और चीक्स उनके फुल रहने चाहिए ऐसे. और जो लोअर लिप रहता है, जो नीचे भाग है अपने होंठ का, वो बाहर रहना चाहिए. लिप इवर्टेड बोलते हैं हम लोग वैसे, वो पोजीशन बेस्ट है.
1: अच्छा.
0: हाँ, ये अटैचमेंट बोलते हैं. जैसे डॉक्टर के पास आप जाएंगे, सिस्टर के पास जाएंगे, तो ये सब चीज़ें वो देखते हैं. इनकेस आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं नहीं करा पा रही हूँ, तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए जहाँ पे आपकी डिलीवरी हुई है, तो वहाँ के सिस्टर्स को आप पूछ सकते हैं, डॉक्टर्स को पूछ सकते हैं, मेरे से क्या चूक है, वो आपको बता देंगे.
1: अच्छा, ये तो ही बच्चे की देखभाल. माँ को किस तरह की देखभाल की ज़रूरत होती है ताकि बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई परेशानी ना हो?
0: माँ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिलीवरी के बाद, कैसे बहुत अलग सा जीवन हो जाता है. एक माँ जन्म लेती है, पहले वो औरत होती है, पहले बच्ची थी फिर औरत हुई, एक माँ का भी जन्म होता है बच्चे के साथ. तो माँ को भी, एक नई जो माँ है, तो उसको भी कुछ मालूम नहीं रहता है. जो पुराने प्रचलन है, जो उसकी सास ने बोला, जो उसकी माँ ने बोला, वो वही करते हैं. आजकल का ज़माना अच्छा इस सेंस में है कि डॉक्टर्स आपको सब बताते हैं, और ये माध्यम से न्यूज़पेपर हुआ, रेडियो हुआ, टीवी हुआ, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गया है. सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है माँ का ध्यान रखना है. तो जैसे बच्चा घर में आता है, सब बच्चे की तरफ देते हैं, अरे मेरा ये हुआ है, पोता हुआ है, नाता हुआ है, जो भी हुआ है, तो वो बच्चे की तरफ ध्यान देते, माँ की तरफ कोई ध्यान नहीं देता. जबकि माँ को भी इतने ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत ही जितना बच्चे को ज़रूरत है. तो माँ का खान पान सबसे पहले उस पर ध्यान देना है. मदर का रेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात भर बच्चे सोते नहीं हैं, बच्चे को रात को पिलाते रहना है. तो घर वालों का ये कर्तव्य होता है कि माँ को थोड़ा सोने का भी टाइम दे, क्योंकि रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता ही है. क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो, सिजेरियन हो, क्योंकि नए माँ है, उसको खुद मालूम नहीं बच्चे को कैसे पकड़ना है, बच्चे को क्या करना है, तो आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इनकेस पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक होता है, जो माँ बिल्कुल, मतलब जो साइकिक होता है, जो साइकोलॉजी होता है माँ का, बिल्कुल बदल जाता है. बच्चा रो रहा है रात में, कोई उसको हेल्प नहीं कर रहा है, उसको भूख लगी, कोई उसको खाना नहीं दे रहा है. तो ये सब की वजह से माँ पे भी बहुत असर पड़ता है दिमागी तौर पर. तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाती है मदर्स बहुत सारी. उनको समझ ही नहीं आता क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, बिल्कुल अलग ही दुनिया में चली जाती है. तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, इट्स रियल. मैं भी माँ बनी हूँ 2 टाइम, तो मुझे भी मालूम है इट्स रियल, और उस चीज की बातें होनी चाहिए आज के जमाने में. तो अगर घर में आपको सपोर्ट है तो आप मदद मांगिए, मेरे से नहीं हो रहा है, आप बच्चा पकड़िए थोड़ी देर. ऐसा आप माँ बन के ऐसा मत सोचिए कि मैं सब कर लूंगी, आप नहीं कर सकते हैं. और जो लोग हैं आजकल के फादर्स, तो खैर बहुत अच्छे हो गए हैं, तो वो भी हेल्प करते हैं. जैसे आपके सास हुए, घर में कोई हेल्प हुआ, बच्चे हैं, मतलब बड़े कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं. आप दूध पिला दीजिए, उनको दे दीजिए बर्पिंग करने के लिए. और एक बात है कि बर्पिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. बर्पिंग जो डकार निकालना बोलते हैं, जैसे ब्रेस्ट फीड करती है मदर, उसके बारे भी मैं बोलना चाहूँगी. तो 15 से 20 मिनट आपको एक छाती पे लगाना है बच्चे को, बच्चा इनकेस आपको लगे, नॉर्मली बच्चे पेट भर जाता है सो जाते हैं, उसके बाद आपको कंधे पे लेना है बच्चे को, फिर थोड़ा हल्के हाथों से थपथपाना है, आइडियली 10-15 मिनट रखना है, तो उसके बाद बच्चा डकार निकालता है। इनकेस अच्छा। नहीं भी निकालता है तो भी आपको उसको खड़ा रखना है, क्योंकि जैसे आप बच्चे को तुरंत दूध पिला के सुला देंगे तो फिर वो उल्टी कर देगा, तो उल्टी करने का ये रिस्क है। कभी कभी बाहर उल्टी करता है बच्चा, नाक से मुंह से निकलने लगेगा दूध, या तो ऐसे हो सकता है कि जो अपनी श्वास नली है और जो खाने की नली है बिल्कुल बाजू बाजू रहती है, तो जो खाने की नली से श्वास की नली में चला जाएगा तो उसको एस्पिरेशन निमोनिया बोलते हैं, तो फिर उस केस में बच्चे को सांस की तकलीफ हो जाएगी, तो आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, एक रिस्क वो रहता है। और ब्रेस्ट फीडिंग में और एक बात ये है कि जैसे आपने एक छाती से पिलाया, मान लो राइट ब्रेस्ट से पिलाया आपने, नेक्स्ट टाइम बच्चा 2 घंटे 2.5 घंटे में अपने आप रोने लगता है, या अगर नहीं रो रहा है तो आपको टाइमर लगाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए कि 2 घंटे में मुझे 2.5 घंटे में उठना ही है, और बच्चे को आपने राइट ब्रेस्ट से पिलाया तो नेक्स्ट आपको लेफ्ट ब्रेस्ट से पिलाना है। आप एक ही पिलाएंगे तो फिर कैसे रहता है। और एक चीज है कि बच्चे को 15-20 मिनट हम क्यों बोलते हैं पिलाने के लिए, क्योंकि जैसे बच्चा रो रहा है मान लो, तो पहले छाती से जो मिल्क का जो ये रहता है, फोर मिल्क बोले तो जो मिल्क जो पहले आता है उससे बच्चे का बस प्यास बुझता है। उसके बाद जो आखिरी का मिल्क रहता है मान लो 10 मिनट के बाद का, उसमें रहेगा मिल्क जो थोड़ा वो उसका बच्चे का पेट भरेगा, जो पहले जो है प्यास और दूसरा जो पार्ट रहता है मिल्क का वो पेट भरेगा, तो बच्चा कैसे प्यास भी बुझ गया पेट भी भर गया तो सो जाता है बच्चा। जैसे अभी बहुत सारे कैसे रहते हैं, बच्चा रोने लग रहा है, बच्चा रो रहा है, बहुत रो रहा है, तो सबको क्या लगता है बच्चा भूखा होगा, उसको दूध पिला दो, तो बार बार दूध पीते रहेगा बच्चे। एक छाती पे पिलाया तो दूध का कैसा है, पिलाने से कैसे है? तो बच्चे का जो दूध का जो है, जैसे पहले का दूध प्यास ही बुझाता है, तो फिर बच्चा वही 4 मिल्क ही पिएगा, तो उसे वेट गेन नहीं होता है बच्चे का। और
2: बच्चा, आप सुन रहे थे महिला चिकित्सक से ली गई भेंट वार्ता शिशु की देखभाल, और अब चंद संदेश।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: స్వయం ఇది కట్టుపడే భారతీయ సేన.
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ.
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है. नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है. इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है.
3: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले वगे नेहर में ना बोले नवा नुकन परिस्थिति रे बोले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहा कि हम बोले रुड़ तब बनवा आले परिवार से मतलब पूरे ये ना.
4: इस संदेश के साथ समाप्त हुआ आज का विविधा कार्यक्रम. और 9:30 बजने के बाद आप सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम रसरंजन में. तो आइए इसका आगाज करते हैं फिल्म सिलसिला के इस मगने से. आवाज़ें हैं अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर की.

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: प्रेम कहानी, यह है इस फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।
1: याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है आज का रसरंजन कार्यक्रम। यह आकाशवाणी चाई भाषा है।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नहाटा।
3: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार। एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
3: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
2: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
3: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साह वर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
3: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
2: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
3: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी, हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
3: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन तथ्य कुछ और है
2: जी।
3: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
2: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
3: बताइए।
2: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
3: जी वो तो है।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
3: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
2: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
3: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
2: जी
3: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
2: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें, पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
3: तो ये तो हुई पहली रोचक बात, अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
2: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं, कि जहां पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
3: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है
2: जी,
3: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
2: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
3: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है
2: जी।
3: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
2: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि
3: जी।
2: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
3: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे
2: जी,
3: हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
2: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, वेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
3: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है
2: जी।
3: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
2: बिल्कुल।
3: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
2: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
3: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
3: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य

0: शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
1: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे।

0: मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेंबर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है

0: सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
1: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
2: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
3: चलो
4: अरे भेड़िया, अरे भेड़िया।
2: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
5: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
3: चलो चलो चलो चलो,
6: अरे
3: पकड़ो,
6: चलो चलो, मुझे
7: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
3: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
2: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
5: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
2: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
5: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
2: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
5: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
2: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
8: लुई पाश्चर
9: सर,
8: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
9: कहिए सर।
8: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
9: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
8: ठीक है।
5: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है, और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
2: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
5: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
2: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
5: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
2: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
5: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
2: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
5: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
2: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
5: तो फिर उन्होंने क्या किया?
2: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
10: अरे आजा आजा आजा।
11: हाँ,
10: इंजेक्शन लगा दूं?
11: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
5: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताईं।
12: सर, सर ये टेलीग्राम।
11: अच्छा, लाओ दिखाओ। हाँ, अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
12: क्या हुआ सर?
11: देखो, टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
12: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
11: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
12: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
11: हाँ चार्ल्स।
5: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
2: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
13: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
11: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
13: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए वरना मेरा बेटा।
9: आप
13: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
9: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ अब
13: मेरा
9: अच्छा,
13: बेटा।
9: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
5: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
2: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
5: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
2: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
5: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
2: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
5: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
11: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
5: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। ही वाज अ ह्यूमनिस्ट, ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
14: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
15: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार,
16: नमस्कार। आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, जिसके प्रायोजक थे NCERT। 10:30 बजने वाले हैं। हम आकाशवाणी

काइवासा से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कीजिए थोड़ा इंतज़ार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 और 5 सेकंड होने को हैं और हम उपस्थित हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम जोहार रांची को लेकर। जोहार रांची कार्यक्रम में मैं हूं आज आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुनीता,
1: और मैं हूं विश्वजीत,
0: और आप सभी को हमारा नमस्कार
1: जोहार।
0: और विश्वजीत कैसे हो?
1: मैं तो ठीक हूँ। और चलिए अब हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं,
0: बिल्कुल,
1: और बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत प्यारे प्यारे गाने भी मुझे लगता है कि आप लेकर आई हैं।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और देखो ये कार्यक्रम जो है ना जोहार रांची, ये हम इसलिए लेकर आते हैं जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, और जानकारियाँ करते करते जब कुछ मीठे मीठे गीत सुनने को मिले तो बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो
0: कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं पहले इस खूबसूरत से गीत के साथ। बाकी चर्चा, जानकारी, खबरें सब हम देंगे थोड़ी देर में।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10 plus 2 BTEC cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samrit Bharat. Join Indian Navy.
1: जोहार रांची कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। और विश्वजीत, कुछ अच्छी बातें हम अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगे। तुम्हारे पास मुझे लगता है कुछ है ऐसी बात जो तुम बताने के लिए एकदम बिल्कुल उत्सुक हो, तो बताओ फिर।
2: बिल्कुल दीदी, हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत जैसे कि करते हैं एक सुविचार के साथ। तो आज का जो सुविचार है ना, वो बहुत ही स्पेशल है। कहते हैं कि छोटी सी इस जिंदगी को यूं ही नफरतों में ना गवाना, कल किसने देखा है यहाँ आज को ही अपना बनाना, शिकायतों से क्या मिलेगा आखिर, कोशिशों को ही अजमाना, हर हाल में आगे बढ़ना, यही है जिंदगी का अफसाना।
1: मतलब छोटी छोटी बातें हैं जो तुमने बताई हैं कि आगे बढ़ना है, कोशिश करना है, और जिंदगी जो है ना उतार चढ़ाव का खेल है।
2: बिल्कुल,
1: बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं हमारे जीवन में जब हम थोड़े परेशान होते हैं, कभी बहुत खुश भी होते हैं, कभी लगता है कि काश ऐसा कुछ अच्छा हो जाता कि हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाती।
2: बिल्कुल, और जिंदगी है, मुझे लगता है कि जिंदगी है तो तकलीफ तो होना ही है। वैसे में हमें घबराना नहीं है, बल्कि तकलीफों का सामना बिल्कुल डटकर और निडर होकर करना
1: है। हाँ, सही बात है। और अच्छा, एक बात तुमने गौर किया है, अगर तुम्हारे जीवन में एक जैसी जिंदगी चलेगी, बहुत खुशियां हैं, खुशियां हैं, खुशियां खुशियां हैं, तो तुम्हें लगेगा अच्छा रोज तो यही होता है, लेकिन बीच में थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए परेशानियां आती हैं जो हमें वापस से हमारे अंदर एनर्जी भरती है कि अच्छा ये प्रॉब्लम आई है, ये परेशानी आई है, इससे हमको किसी भी तरह से निकलना है। तो जब हम कोशिश करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं ना, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। और जिंदगी का जो सफर है ना विश्वजीत, एक बिल्कुल रास्ते की तरह है, टेढ़े मेढ़े भी मिलेंगे, सीधे रास्ते भी मिलेंगे। फिलहाल अभी एक रास्ता जो है ना हम अपने श्रोताओं के साथ तय करते हैं, वो है संगीत का रास्ता।

0: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं जोहार रांची कार्यक्रम विश्वजीत और सुनीता के साथ। ये कार्यक्रम जारी रहेगा भारतीय सेना को समर्पित इस गीत के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: तो जोहर रांची कार्यक्रम में विश्वजीत, आगे हम अपने श्रोताओं से क्या बातें करेंगे ये बताओ।
2: बातें करेंगे मौसम की, चूंकि अमूमन बदल चुका है, जून के आते ही मौसम में भी बदलाव हुआ है और कल जिस प्रकार से आंधी बारिश हुई है, ऐसे में तो थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ गई है मुझे लगता है। दीदी
1: मुश्किलें बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है बल्कि थोड़ी राहत मिली है। और पता है कि जब तेज हवा और बारिश कल हुई तो मौसम शाम में तो बहुत अच्छा था, हालांकि अभी बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, हो सकता है शाम तक बारिश आएगी। और बात कर ले मौसम विभाग के जानकारी की, तो ना रांची में जो अभी लगातार जो बारिश हो रही है उससे मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है। अधिकतम तापमान जो है ना 33 डिग्री के आसपास रहता है और न्यूनतम 22.6 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और अभी जो आया है फोरकास्ट उसके अनुसार 7 जून तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी, यानी थोड़ी सी राहत अभी हमें और मिलेगी। हाँ, और अच्छा
2: बारिश से तो राहत मिली रही है, लेकिन वो आंधी और तूफान से कहीं ना कहीं हमें बचना पड़ेगा, क्योंकि कल जब जिस प्रकार से आंधी तूफान आई थी और ऐसे में बहुत सारे पेड़ मुझे लगता है कि गिरे और अचानक से आंधी तूफान के कारण मुझे लगता है थोड़ा सा तैयारी करके रहना चाहिए।
1: सात जून तक रहेगा। और जब तेज हवाएं चलती है और जब बिजली कड़कती है वज्रपात की, तो उसमें बहुत लोगों की जान भी चली जाती है। तो अगर फोरकास्ट मौसम विभाग की ओर से आजकल सबके फोन पे आ जाते हैं, तो जैसे ही आपके फोन पे आता है थोड़ा सा ध्यान खुद का रखें, बिजली जब कड़कने की संभावना जताई गई हो तो उससे बचने का उपाय करिए। और सबसे खराब कब लगता है आंधी तूफान, जब चलता है ना तो लाइट तुरंत कट।
2: यही तो परेशानी है, बारिश हो मजा आता है, लेकिन बारिश के साथ साथ जो आंधी तूफान हो और इसके कारण जो परेशानियां बढ़ती है उससे कहीं ना कहीं हमें निजात पाना है, उससे बचना।
1: लेकिन फिर भी पहले से बहुत राहत है। और ऐसे ही मौसम गर्मी निकल जाए तो अच्छा लगेगा, लेकिन एक बात तो है ना विश्वजीत की गर्मी पड़ना भी जरूरी है। गर्मी नहीं पड़ेगी तो बारिश नहीं होगी, और इस बार वैसे भी कम बारिश का अनुमान जताया जा रहा है,
2: पहले की तुलना में 10% कम बारिश का अनुमान है इस साल।
1: तो कोशिश यही करनी चाहिए कि गर्मी पड़ रही है थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। जो उपाय हैं, जो प्रिवेंशन है उसके लिए, जो क्योर कर सकते हैं गर्मी को, वो सब अपने जीवन में अपनाना चाहिए ताकि मौसम का आनंद हम ले सके। मौसम का क्या है, मौसम आता जाता रहेगा और जो प्यार और खुशियां हैं ना वो हमारे आसपास यूं ही बनी रहे, हम तो यही चाहते हैं।

0: और विश्वजीत, इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतने अच्छे अच्छे गीत की बात हो रही हो, तो अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, बात कर लेते हैं आज इतिहास की, क्योंकि इतिहास की जो घटनाएं होती है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। अच्छी चीजें हमें और अच्छा करने की प्रेरणा देती हैं, और बुरी चीजें जो हुई हैं, जो दुर्घटनाएं हुई हैं, वो हमें आगाह करती हैं कि ऐसा काम हम दोबारा ना करें कि इन परिस्थितियों का सामना करना पड़े। तो इतिहास के पन्नों पर नजर डाल लेते हैं, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दिन से। आज सबको पता है 2 जून है, तो 2 जून 1996 को यूक्रेन अपने अंतिम परमाणु युद्धास्त्र रूस को सौंपने के साथ ही परमाणु मुक्त देश बना।
1: आज के दिन वर्ष 1999 को भूटान में टीवी प्रसारण की शुरुआत हुई थी।
0: और आज के दिन 2000 में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में स्थित विश्व की सबसे ऊंची इमारत पेट्रोनॉस ट्रिवन टावर्स दर्शकों के लिए खुला था।
1: ऑस्ट्रेलियाई मॉडल जेनिफर हॉकिंस मिस यूनिवर्स बनी थी आज के दिन वर्ष 2004 में।
0: 2005 में 2 जून को भारत, रूस और चीन का व्लादिवोस्तोक सम्मेलन

0: समाप्त हुआ था।
1: वर्ष 2008 में लेफ्टिनेंट जनरल नरेश कुमार परमार को थल सेना की चिकित्सा सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया था।
0: और बात कर लेते हैं आज जिन्होंने जन्म लिया, जिनका जन्मदिन है आज, तो सबसे पहले बताएं कि इंडियन बिजनेसमैन बहुत बड़े रहे हैं। शुरू में जब पुराने भारत की बात कर ले, आज तो हम नए भारत में रहते हैं, तो 2 जून 1963 को नटराजन चंद्रशेखर, जो बहुत बड़े व्यवसायी थे अपने दौर में, उनका जन्म आज हुआ था।
1: आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज ही के दिन इलैया राजा, भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार तथा गायक का जन्म हुआ था। वर्ष था 1943।
0: 1951 में अनंत गीते, जो एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, उनका जन्म भी हुआ था। और 1955 में नंदन नीलगैनी, भारतीय उपक्रमी, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन और प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक सदस्यों में से एक है, उनका जन्म भी आज हुआ था।
1: आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक में से एक मणि रत्नम का जन्म हुआ था वर्ष 1955 में।
0: 1955 में, जैसा तुमने बताया कि भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और क्रांतिकारी फिल्म निर्देशकों में से एक मणि रत्नम का जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी, बेहतरीन संगीत, विशेषकर उन्होंने A.R. रहमान के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया, और राजनीतिक गंभीर विषयों पर आधारित फिल्मों के लिए पूरे भारत में ख्याति प्राप्त की।
1: और उनका जन्म 2 जून 1956 में मदुरई तमिलनाडु में हुआ। वे शानदार कहानी, कहने का अंदाज, साथ ही साथ बेहतरीन सिनेमाग्राफी, संगीत और दृश्यों का अनोखा मेल, और इनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
0: और इनका पूरा नाम बताए क्या तुमको? इनका पूरा नाम है गोपाल रत्नम सुब्रमण्यम। तो ये है, लेकिन इन्हें हम लोग मणि रत्नम के नाम से जानते हैं। और चेन्नई तमिलनाडु टॉकीज प्रोडक्शन इनकी प्रमुख कंपनी है, और बहुत सारी फिल्में इन्होंने ऐसी बनाई है जो एपिक फिल्में भी इन्होंने बनाई है। हाँ। और साथ ही इनकी फिल्म रोजा, बॉम्बे, दिल से, और बहुत सारी क्लासिकल फिल्में नायकन, अंजलि, कन्नथिल, मुथमित्तल, और अभी जो नए प्रोजेक्ट आए 2022 में पोन्नियन सेल्वन और पोन्नियन सेल्वन 2, और इन्हें इनकी प्रमुख फिल्में हैं। और प्रमुख सम्मान में इन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और भारत का 4th सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री मिला है
1: वर्ष 2002 में। और भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान देने वाले दृश्य और संगीत के जादूगर, महान फिल्म निर्देशक मणि रत्नम को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: और सुनते हैं उनकी फिल्म का एक खूबसूरत संगीत।

0: और इतिहास की बात कर रहे थे हम विश्वजीत, तो आज हम उन्हें भी याद कर ले जो आज हमारे बीच से चले गए, यानी जिनका आज निधन हुआ है। तो अपने श्रोताओं को बताएं कि 2 जून 2004 को श्रीकांत जीचकर भारत के एक ऐसे योग व्यक्ति थे जिन्होंने 42 यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की थी।
1: आज के दिन भारतीय राजनीतिज्ञ एवं ब्रिटिश भारत उड़ीसा प्रांत के मुख्यमंत्री रहे विश्वनाथ दास का निधन हुआ था वर्ष 1984 को।
0: और आज ही के दिन 1978 में प्राण कृष्ण पारिजा पद्म भूषण से सम्मानित भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उनका निधन हुआ था।
1: और आज 2 जून को हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राजकपूर की पुण्यतिथि है। उनका निधन भी आज के दिन वर्ष 1988 को नई दिल्ली में 63 वर्ष की आयु में हुआ था। वे लंबे समय से अस्वस्थ थे और उनसे जुड़ी जटिलताओं के कारण उनका देहांत हुआ था।
0: और बात कर ले राज कपूर की, तो जिन्हें हम शोमैन के नाम से जानते हैं और जिन्होंने ऐसी अनगिनत फिल्में बनाई हैं कि अगर पूरे फिल्मों की बात करें या पूरे उनके जीवन की बात करें तो समय शायद एक दिन का भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि राज कपूर ना सिर्फ एक उच्च कोटि के कलाकार थे, अभिनेता थे, बल्कि निर्देशक और फिल्मकार बहुत ही उच्च कोटि के दर्जे के थे, मतलब उनके निर्माण तक पहुंचना आज भी लोगों के लिए टेढ़ी खेल है, वहां तक पहुंच पाना ही बहुत मुश्किल है।
1: और तभी तो भारतीय सिनेमा का द ग्रेटेस्ट शोमैन कहा जाता था। उन्होंने आवारा, श्री 420, संगम, मेरा नाम जोकर, बॉबी जैसी कई कमाल की फिल्में दी हैं और निश्चित रूप से इन्हीं को देखते हुए वर्ष 1988 को भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से उनको सम्मानित भी किया गया।
0: और राज कपूर की फिल्में न सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी बहुत

0: विश्वजीत बातें कर रहे हैं हम
1: बिल्कुल
0: जो है रांची की, तो रांची की खबरें और रांची की जो खास जानकारियां हैं अगर हम अपने श्रोताओं को नहीं दें तो ये गलत होगी, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जानकारियां हैं जो हम अपने श्रोताओं के साथ शेयर करेंगे। पहले जानकारी से पहले एक बात मेरे को ये बताओ कि जब रोड में तुम गाड़ी चलाते हो तो उस वक्त क्या फील होता है?
1: फील तो बस यही होता है कि बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि हमारा रांची शहर ना क्राउडी हो गया है और ट्रैफिक बहुत ज्यादा समस्या है।
0: बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और उससे भी ज्यादा सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि रोड में तुम्हें जहां तहां गाड़ियां
1: हाँ,
0: लगी मिल
1: यही दिक्कत है
0: जाएगी,
1: कि
0: मतलब
1: कहीं भी
0: सिविक सेंस
1: गाड़ी लगा
0: होते हुए भी लोग कुछ नहीं करते हैं। जहां मन किया गाड़ी खड़ी की, सामान खरीदिए, चाय पी लिए, कुछ भी कर लिए, जाम होता है तो होता रहे। लेकिन इसके लिए खबर आई है।
1: हाँ, इसके लिए अब रांची और झारखंड की सरकार बिल्कुल सख्त हो चुकी है, क्योंकि अब आपके रांची शहर के लिए थोड़ा सा ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए अब नो पार्किंग जोन पे अगर आप वाहन खड़ा करते हैं ना तो

0: आपको ना केवल जुर्माना देना पड़ेगा बल्कि वाहन आपका जब्त भी हो सकता
1: ये
0: है,
1: अच्छी बात
0: ये
1: है
0: कड़ा
1: क्योंकि
0: निर्देश दिया गया है।
1: हाँ जरूरी भी है ना, क्योंकि बेतरतीब ढंग से चलती गाड़ियां, कोई कितनी स्पीड में चल रहा है, कोई दाया बाया, कोई कट नहीं, रॉन्ग साइड से चल रहा है, और ऐसी स्थिति में नो पार्किंग जोन में सबसे ज्यादा गाड़ियां खड़ी नजर आ रही है,
0: हाँ,
1: तो जरूरी है कि इसको इसमें सुधार किया जाए ताकि
0: और
1: जो व्यवस्था
0: ट्रैफिक
1: है
0: को
1: ना।
0: थोड़ा सा बेहतर और दुरुस्त
1: हाँ
0: करने के लिए ये
1: बिल्कुल
0: सख्त
1: बिल्कुल
0: कदम है, और ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे हम सभी के लिए बेहतर है। और क्या ये निर्देश दिया गया है कि नो पार्किंग जोन पर अगर आप वाहन खड़ा करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक नियमों का अगर उल्लंघन करते हुए भी अगर आप पाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑटो ई रिक्शा चालकों द्वारा बीच सड़क पर सवारी बिठाने या उतारने पर रोक लगाई जाएगी। नियमों का पालन करते समय आम नागरिकों के साथ शालीनता से पेश आने की हिदायत दी गई है, और साथ ही साथ सड़क पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और चलाया जाएगा
1: और
0: अभी।
1: बहुत जरूरी इसलिए भी है कि जब सड़कें स्मूथ ट्रैफिक चलती है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है, और इतने सारे फ्लाईओवर बन गए हैं तो संभव हो अगर आपका रास्ता उस रास्ते में पड़ता है तो फ्लाईओवर का इस्तेमाल भी जरूर करें। बात तुमने अगर की है गाड़ियों की ट्रैफिक की, तो ट्रेन में भी ट्रैफिक जाम होता है पता है ना,
0: हाँ
1: तो
0: बिल्कुल,
1: कुछ बहुत जरूरी जानकारी है जो हमारे यहाँ से जुड़ी हुई है, तो अपने श्रोताओं को वो दे दे। जो ट्रेनें रद्द हो गई थी ना अपने निर्धारित समय से चलेंगी, 8 मई को नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की गई थी, लेकिन सभी ट्रेनें अब वापस अपने निर्धारित समय से चलेंगी, जिसमें पुणे हटिया गया लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस वाया रांची, वास्को दिगामा जसीडी एक्सप्रेस वाया रांची समेत अन्य ट्रेनें शामिल हैं। साथ ही गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए 10 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको गाड़ी आराम से मिलेगी। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि विकास कार्य के कारण 2 ट्रेनें भी प्रभावित रहेंगी, क्योंकि दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल के अंतर्गत विकास कार्य होगा, इसके कारण रोलिंग ब्लॉक किया जाएगा, इस कारण खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस 3, 5 और 6 जून को और आद्रा हटिया आद्रा के बीच रद्द रहेगी। साथ ही टाटानगर हटिया एक्सप्रेस 2, 3 और 6 जून को दूसरे मार्ग से चलेगी। तो अगर
0: तो
1: आप इन
0: बहुत
1: ट्रेनों
0: अच्छी
1: में
0: अच्छी जानकारी है, और मुझे लगता है कि इन जानकारी के साथ आपका जीवन, आपकी जिंदगी वो बेहतर और थोड़ा सा आसान हो जाएगा।
1: हाँ, क्योंकि ना अगर आपको पहले से पता हो कि आपकी ट्रेन
0: हाँ,
1: रद्द हो गई है या लेट
0: तो
1: से
0: वो
1: चल रही है,
0: परेशानियों से आप बच
1: बच
0: सकते
1: सकते हैं। तो फिलहाल अभी बातें बहुत लंबी हो गई हैं,
0: हैं।
1: हमारे श्रोता सोच रहे होंगे
0: इंतजार
1: कि
0: कर रहे हैं
1: हाँ
0: अगले गाने
1: बिल्कुल,
0: का।
1: चलो चलो फिर सुनते हैं।
2: कहाँ ले जाऊं, कहाँ जाना है, अरे कुछ आता पता कोई ठिकाना है।

0: बात हम अपने झारखंड की कर रहे हैं विश्वजीत, तो तुम्हारे पास मुझे लगता है एक बहुत अच्छी खबर है, तो जल्दी से बता दो।
1: बहुत ही अच्छी खबर है और हम सभी के लिए एक अच्छी खबर यही है कि स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अब झारखंड के 2582 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिलने जा रहा है।
0: अरे वाह।
1: और इसके लिए स्कूलों का चयन भी हो चुका है। इन स्कूलों को मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2025-26 के लिए चयनित किया गया है और इसके लिए ना अच्छी खासी राशि भी मिलने जा
0: अच्छा?
1: रही है।
0: अच्छा, बता दो।
1: मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए पहली से जो आठवीं तक और छठी से आठवीं की स्कूल की विद्यालय को 1.5 लाख रुपए, वहीं पहली से दसवीं और पहली से बारहवीं या छठी से बारहवीं और नौवीं से बारहवीं के स्कूलों को 2 लाख, इसके अलावा विशेष विद्यालय को भी 2 लाख, आवासीय विद्यालय को भी 2 लाख, निजी विद्यालय को भी 2 लाख की राशि दी जा रही है। और इससे कहीं ना कहीं हमारे जो विद्यालय हैं और जिनका परिसर है उसको स्वच्छ और बेहतर बनाने के लिए बहुत बड़ी मदद है। हाँ। और मिलने वाली है।
0: और अच्छी बात यह है ना कि स्वच्छता कितनी जरूरी है, ये इस बात से भी पता चलता है कि लोगों को जागरूक करने के लिए उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं, ताकि और मन से वो अपने विद्यालय और विद्यालय का परिसर साफ सुथरा रखें, ताकि कहते हैं ना कि अच्छे स्वच्छता भरे माहौल में पढ़ाई करने से पढ़ाई करने में भी मन लगता है। तो तुमने अच्छी खबर सुनाई, तो एक खबर मैं अभी अच्छी सुनाऊं। हाँ, पता है क्या, अब रेगिस्तान में उगाई जा सकेगी फसल। चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी बैक्टीरिया को विकसित किया है जो रेगिस्तान की रेत को मात्र 10 महीने में उपजाऊ मिट्टी में बदल सकता है। यह बैक्टीरिया रेत के कणों को आपस में जोड़ता है, नमी को रोक कर रखता है और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व को बढ़ाता है। प्रयोग में देखा गया है कि 10 महीने के बाद रेत में ह्यूमस बन जाता है और फसल उगाई जा सकती है। इस तकनीक से थार रेगिस्तान, सहारा और गोभी जैसे रेगिस्तानी इलाकों में हरियाली भरी जा सकती है। तो हम तो चाहेंगे कि ये पूरे विश्व में जल्दी से जल्दी इस तकनीक का विकास हो, ताकि हमारे जहाँ भी जो रेगिस्तान है वहाँ भी हम फसल उगा पाए।
1: हमारे किसानों के लिए, हमारे देश के लिए और अनाज भंडार के लिए बहुत
0: बहुत जरूरी है। तो अब उपयोगी है फिलहाल एक गीत सुनाना है ना, लेकिन गीत सुनाने से पहले एक छोटी सी जानकारी अपने श्रोताओं को और दे दे स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि स्वास्थ्य की बात करना भी जरूरी है और एक अच्छी खबर इसमें भी आई है
1: कि अब फेफड़ों के कैंसर का नया टीका बिल्कुल तैयार हो चुका है। क्यूबा और अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने मिलकर फेफड़ों के कैंसर के इलाज के लिए वैक्सीरा नाम का ये टीका विकसित किया है। यह टीका उन मरीजों के लिए उपयोगी है जिन्हें फेफड़ों का कैंसर है या कैंसर को रोकने वाली बड़ी इलाज करने वाली है।
0: कैंसर जैसी बीमारी अब उतनी घातक नहीं रह गई जितनी पहले थी, और ये जो वैक्सीन है ना, ये रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएगा और कैंसर की कोशिकाओं को पहचान कर उस पर हमला करेगा। और ये इस तरह की जब वैक्सीन और चीजें जब आती है ना, तो इलाज के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होती हैं। तो बहुत अच्छी खबर है और उम्मीद करते हैं ये टीका जल्दी से जल्दी बाजार में आए, ताकि पूरे बाजार में आए, ताकि लोगों को इससे राहत मिले। और विश्वजीत, देखते देखते हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने को है और तुम भी सुबह से हो, तुम्हें भी अब जाना है क्योंकि बाकी काम भी होते हैं।
1: बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई और बहुत अच्छे अच्छे गाने भी हमने
0: सुनवाए श्रोताओं को,
1: उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा हमारे श्रोताओं को।
0: बिल्कुल, और इस कार्यक्रम से हम अपने श्रोताओं से विदा भी लेते हैं और कहते हैं नमस्कार जोहार, लेकिन साथ में ये गीत भी सुनते हैं।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम आपकी पसंद का, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके ही पसंद किए कुछ प्यारे प्यारे से खूबसूरत से फिल्मी नगमे। कार्यक्रम हम सुनेंगे भारतीय सेना को समर्पित इस गीत के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

आपके पसंद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूँ इस कार्यक्रम में आपकी रेडियो दोस्त सुनीता। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म तुम्हारे लिए के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और धुन बनाई है जयदेव वर्मा ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप हैं बठिंडा रोड डबवाले से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, साथ ही आप हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। लीजिए अपनी पसंद का सुनिए फिल्म तुम्हारे लिए का ये खूबसूरत सा गीत।

पुनर्मिलन इस फिल्म का गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत के बोल लिखे इंदिवर ने, धुन बनाई है सी अर्जुन ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप हैं गोंदा टाउन कांके रोड से रमेश प्रसाद जायसवाल, भीम सिंह, सिद्धि जायसवाल, अनुप्रिया भगत। साथ ही आप हैं नूर महल महसोल सीतामढ़ी से, मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज। लीजिए अपनी पसंद पर सुनिए फिल्म पुनर्मिलन का ये खूबसूरत सा गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

अगले गीत की फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता आप हैं, जतू का किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, शबाना आलम, नाज प्रवीण, चांदनी नाज। साथ ही आप हैं ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। आपने सुनना चाहा है फिल्म शहनाई का ये गीत। इस गीत को गाया मोहम्मद रफी ने, गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई है रवि ने।

आनंद, इस फिल्म का गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने, धुन बनाई है सलील चौधरी ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मेका, बलविंदर बीरक, जयतक बीरक, मीका बीरक। साथ ही आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। दंतरेंगी से आप हैं भागवत वर्मा। लेवाई से गुलाबदास मानिकपुरी। लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू। चर डोंगरी पिपरिया से आप हैं दुर्गाराम साहू। लीजिए अपनी पसंद का सुनिए फिल्म आनंद का ये खूबसूरत सा गीत।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म आरजू से इस गीत को गाया लता मंगेशकर ने। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। साथ ही आप हैं झारखंड बड़ा बाम्बो गांव सुपाईसाई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेन, चक्रधरपुर ग्राम केलिया लोहा से आप हैं कोमल बेसरा, बासंती, अनु, बनमाली, पूजा और सिद्ध कुमारी। अपनी पसंद पर सुनिए।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, 12 बजने को है, आपको इंतजार होगा महिलाओं को संबोधित हमारे दैनिक कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का। आज चर्चा होगी इसमें रिश्तों में संवाद जरूरी है, भेंटवार्ता आप सुनेंगे, वर्षा जल संचयन की विधि और महत्व, जानकारी आपको मिलेगी एक पेड़ माँ के नाम अभियान की। कार्यक्रम की प्रस्तुति है गौरव पांडे की और कार्यक्रम में आज आपके साथ है सुभाषिनी और लता।

0: बहनों, बारह बज चुके हैं और वक्त है आपके मनपसंद कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का, यानी आप सभी श्रोता सखियों से ढेर सारी बातें करने का।
1: तो स्वागत है बहनों आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। आज कार्यक्रम के सफर में आपकी दो सखियां हाजिर हैं, मैं हूँ लता,
0: और कार्यक्रम के सफर में लता के संग आपकी एक और हम सफर है सुभाषिनी। तो स्वीकार करें बहनों हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: और कार्यक्रम के सफर में जैसा कि सुभाषिनी ने कहा कि हम दोनों हैं, तो आज हम आपको जानकारी के साथ बहुत सारी बातें आज हम बहनों आपके साथ करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बहनों, जैसे कि सुभाषिनी तुमने कहा कि वक्त जो है वो ढेर सारी बातें करने का रहता है बहनों का इस समय, तो ये सिलसिला शुरू करते के साथ हम यह भी बहनों को बताना चाहेंगे कि खामोशियां अक्सर रिश्तों को निगल जाती हैं, बात करने से ही दिल की उलझने संभल जाती है।
0: वाह क्या बात है लता, बहुत ही प्यारी और बहुत ही सही बात कही तुमने। जैसे पौधे को जिंदा रखने के लिए पानी की जरूरत होती है ना, वैसे ही रिश्तों को सींचने के लिए संवाद रूपी जल की आवश्यकता होती है।
1: हाँ बहनों, रिश्तों में संवाद ऑक्सीजन की तरह है, इसके बिना गलतफहमियां पनपती हैं और दूरियां बढ़ती हैं। जब आप मुश्किल में पड़ जाते हैं और मुश्किल बात भी शांति से कह पाते हैं तो रिश्ता मजबूत होता है। वही बात को दबाने से रिश्ता घुट घुट कर अंदर ही रह जाता है।
0: बिल्कुल, बातचीत के अभाव में छोटी छोटी बातें भी बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं बहनों। सही संवाद से मन के संदेह और गलत फहमियां समय पर खत्म हो जाती हैं, और जब आप अपने साथी या परिवार के साथ खुशी और दुख दोनों साझा करते हैं तो विश्वास और भी गहरा हो जाता है।
1: साथी बहनों, संवाद से एक दूसरे को समझना आसान हो जाता है, क्योंकि संवाद विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। इससे आप जान पाते हैं कि सामने वाले की भावनाएं और जरूरतें क्या है।
0: बिल्कुल सही, स्वस्थ रिश्ते की नींव ही अच्छे और सकारात्मक संवाद की टिकी होती है उसी संवाद पर, और बातचीत के दौरान अपनी बात रखें और उसके साथ साथ दूसरे की बातों को धैर्य से सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है बहनों, क्योंकि जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं ना तो उन्हें लगता है कि आप उनकी इज्जत करते हैं।
1: बिल्कुल सुभाषिनी, और मुझे लगता है कि संवाद का अर्थ केवल बातें करना ही नहीं बल्कि बातें सुनना भी है। तो तुमने सही कहा, जो लोग दूसरों को धैर्य से सुनते हैं तो लोग भी उसकी बात ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, और ध्यान से और पूरी बात सुनने से बात का जो गलत मतलब निकलने का जो खतरा होता है वो खत्म हो जाता है। और संवाद जब टूटता है तभी विवाद जन्मता है, इसलिए रिश्तों को बचाने के लिए बोलना और सुनना दोनों जरूरी है।
0: और सखियों, रिश्ते जो होते हैं ना वो कांच के बर्तन की तरह नाजुक होते हैं, जिन्हें संवाद रूपी धागे की आवश्यकता होती है। इसीलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने माता पिता, जीवन साथी

बच्चे, भाई बहन, मित्रों, इन सब से नियमित संवाद बनाए रखें। याद रखिए सखियों, जहां संवाद जीवित रहता है ना, वहां रिश्ते कभी नहीं मरते।

0: खोजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme, Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: तो बहनों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और अब हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं जहां हमें लेकर चलेंगी सुभाषिनी।
2: बिल्कुल, तो बहनों अब वक्त है अपने मेहमान से आपको मिलवाने का। तो आज की हमारी मेहमान है श्रेया तिवारी, जो समाज सेवी हैं और उन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत सारे काम किए हैं। और आज का हमारा विषय भी है वर्षा जल संचयन की विधि, और इनसे बातचीत कर रही हैं हमारी सखी लता।
1: धरती पर बढ़ते जल संकट और भूजल स्तर में लगातार हो रही गिरावट के बीच वर्षा जल संचयन आज समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। बारिश के पानी को सुरक्षित तरीके से संग्रहित कर उसका उपयोग करने से न केवल पानी की कमी दूर की जा सकती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल बचाने में भी मदद मिलती है। वर्षा जल संचयन की विधि विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं, और इसके लिए आज हमारे बीच हैं श्रेया तिवारी जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे रही हैं, अपनी संस्था के माध्यम से पर्यावरण बचाने का नेक कार्य कर रही हैं। श्रेया जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्ते। नमस्ते लता जी, धन्यवाद आपको एवं आकाशवाणी को कि इस प्रमुख विषय पे आज मुझसे बात करने की एक मुझे सहयोग दिया गया, धन्यवाद
1: जी। श्रेया जी, जैसा कि आज हम आज के बहुत ही ज्वलंत मुद्दे, आज की जरूरत के विषय में बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वर्षा जल संचयन क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है।
3: जी देखिए, वर्षा जन संचयन विषय पे काफी पहले से हमारे पूर्वजों ने अपनी विधियों से जिस तरह से इनकी संरक्षण करनी चाहिए उन्होंने किया था, लेकिन अब हम लोग सिविलाइज्ड वे में या फिर शहरों में आके इन सारी चीजों से दूर हो गए हैं, तो हमें उसकी आपूर्ति पता चल रही है। तो विशेष पर वर्षा जल संचयन विषय पे हमारा ये रहता है कि इस पानी को वर्षा ऋतु में या फिर बारिश की पानी को इकट्ठा कर उसको सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को ही संचयन कहा जाता है, ताकि जब हमें इसकी आपूर्ति लगे या फिर जब हमें इसकी कमी हो तब हम इसे उपयोग कर सके। इसका एक प्रक्रिया है पूरी तरीके से, अगर हम चाहे तो इसे कैसे कर सकते हैं या जुड़ सकते हैं।
1: जी बहुत खूब। मैम, वर्षा जल संचयन से जल संकट को कैसे कम किया जा सकता है, बताए।
3: देखिए, जहाँ तक हमें पता है कि हम लोग जहाँ तक यूज कर पाते हैं अपने डेली यूज के या बेसिक नीड्स या तो हमारे पानी पीने के लिए जो सबसे जरूरी है, वो हम लोग ग्राउंड वाटर सोर्सेज वाटर जो है वो ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ओपन वाटर यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में नहीं कर पाते हैं। अंडरग्राउंड वाटर लेवल जितना है वो दिन ब दिन नीचे जाता जा रहा है, तो उसका एकमात्र सोर्स ये जल संचयन करके ही हो पाएगा वर्षा की, क्योंकि वो इनडायरेक्टली अगर हम लोग एक वे प्रोसेस बनाते हैं कि हमें इसे कैसे संचयन करना है, तो वो पानी जो आ रहा है वो जल स्तर पे जाके नीचे, और वो हमारे ही यूज के लिए हम लोग कर सकते हैं फ्यूचर बेस पे।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैम, घर में वर्षा जल संचयन की कौन कौन सी सरल विधियां अपनाई जा सकती हैं?
3: देखिए, पहले तो आप हमारी बचपन की अगर बात की जाए तो हमें याद है जहाँ तक कि जब भी बारिश होती थी तो हमारे पेरेंट्स या फिर हम लोग खुद बहुत इंजॉय करते हुए बाहर पे घर के बर्तन टब ये सारी चीजों को कर लेते थे। ये एक एंजॉयमेंट भी होता था, और शायद उस समय इस आपूर्ति की हमने कल्पना नहीं की थी कि हमने भविष्य में ये सारे दिन भी देखने हैं, तो वो एक हंसते खेलते चीजें हो जाती थी। लेकिन Nowadays, इसको एक बहुत वेरीफाइड वे पे डिजाइन किया गया है वाटर हार्वेस्टिंग फॉर्म पे, जिसको हम लोग अगर एक सोसाइटी बेस या

0: घर पे हम लोग, कभी भी आप घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो एक प्लान्ड वे में अगर हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी या फिर उसकी जो पूरी प्रोसेस होती है उसको अपना सके तो ये हम लोग बहुत अच्छी वे पे वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। और इसकी विधि बहुत ज्यादा भी नहीं है, हम लोग पाइपलाइन सोर्सेस से ग्राउंड वाटर टैंक बना के इसकी स्टोरेज कर सकते हैं और आपकी डेली बेस की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पानी आराम से यूज कर सकते हैं। आप देखती होंगी राजस्थान एरिया में जहाँ पे पानी की इतनी संकट होती है, वहां पे प्रोबेबली लोग जब घर अपने बनाते हैं तो वो स्पेसिफिक ना वाटर रूम्स रेडी करते हैं ताकि उनकी जब भी वर्षा हो तो वो वाटर स्टोरेज कर सके। तो ये हम हमारे सिविलाइज्ड एरिया में या फिर अर्बन एरियाज में तो हम लोग कर सकते हैं, और गांव क्षेत्र में आप देखती होंगी कि जितनी भी तालाबे हैं कुएं हैं वहां तो वो नेचुरली वे में हो जाता है, लेकिन शहरी क्षेत्र में इन सारी चीजों को अपना के हम जरूर वाटर अपना कंजर्वेशन कर सकते हैं। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द बेस्ट सोर्स, इसके लिए हमें कुछ अपना अलग से नेचुरल चीजों को करना नहीं होता। नेचुरल सोर्सेज हमें जो भी प्रकृति से मिली हुई है उसके लिए तो हमें हमेशा ऋणी रहनी चाहिए हमारी प्रकृति के लिए।
1: वाह, बहुत खूब जी। मैम, छत पर गिरने वाला वर्षा जल को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या है, ये बताएं।
0: देखिए बेसिकली जैसे हमें पता चलता है कि बारिश हो रही है, जैसे अभी मौसम हो रही है, तो जहाँ कोशिश किया जाए कि हम लोग एक बार छत के पानी को साफ कर ले। और ये बहुत सिंपली है कि अगर आप अपने छत से एक अलग सा पाइपलाइन सोर्सेस करके, ग्राउंड टैंक करके, और उसपे फिल्टर्स लगते हैं पाइप्स पे, तो वो अंडरग्राउंड स्टोरेज ये पे आप पानी को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसी बहुत सारी लिंक्स हैं या फिर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के, खासकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। तो आप अगर आपके घर पे अगर थोड़ी सी भी स्पेस हो सकती है तो आप छोटा सा गड्ढा करके उसपे, काफी सारे वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है जिसपे आप बड़े जो गिट्टी होते हैं उन सारे का लेयर्स बना के या उसके ऊपर फिर मट्टी देके, तो वो क्या होता है ना, टैंक जैसा नीचे बन जाता है, ऊपर फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाता है और आपके छत का जो पानी रहता है वो आपका अंडरग्राउंड जो टैंक आपने रेडी किया हुआ रहता है वो सारा उस पे चला जाता है। अगर आप चाहें तो उस पानी को यूज भी कर सकते हैं, अदरवाइज वो पानी ऑटोमेटिकली आपके ग्राउंड सोर्सेज वाटर लेवल पे चला जाता है। तो आपकी इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप इस चीज को कितने इंपॉर्टेंटली लें और इसको इम्प्लीमेंट करें।
1: वाह, बहुत ही उम्दा जानकारी, बहुत ही खूबसूरत। मैम, बातों बातों में आपने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी वर्षा जल संचयन के बारे में आगे बताया, तो मैम हम आगे ये जानना चाहेंगे आपसे कि वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
0: देखिए मैम, बहुत ज्यादा डीपली मैं इस चीज पे नहीं बता पाऊंगी बिकॉज इनकी जो भी सिस्टम है, आप चाहे तो अकॉर्डिंगली इस चीज की जो प्रोसेस है इसमें मुझे जहां तक आइडिया है गवर्नमेंट सब्सिडी भी इंक्लूडेड आजकल इन चीजों पे, सोलर इम्पैलेंस या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आपको प्रोसेस देती हैं। बट अकॉर्डिंगली अगर आप अपने स्तर से करना चाहें तो इट्स अ सिंपल प्रोसेस कि आप अपने छत का पानी या वाटर, जब भी आपका रेन ये हो तो आप उसके फिल्टर अच्छी फिल्ट्रेशन करके और सुरक्षित टैंक तक का जो पाइपलाइन प्रोसेस रहता है उस अकॉर्डिंग को करके हम लोग उस चीज को यूज कर सकते हैं इन अ सिंपल प्रोसेस। क्योंकि हमारा बहुत जगह प्लांटेशन प्रोजेक्ट चलता है तो बेसिकली हमारे ऑफिस में जो टेरेस रहती है एंड जो प्लांटेशन एरिया रहता है तो वी डोंट नीड कि हमें इसको एकदम प्योर फॉर्म चाहिए या क्या, तो हमने एक सिंपल डिगिंग वे में वो एरिया बना रखा है जहाँ पे वो पानी आ जाता है फिल्ट्रेशन में, तो वो ग्राउंड लेवल वाटर को भी स्टोरेज अच्छे से कर लेता है एंड हम लोग अगर उसको यूज भी करना चाहे तो अच्छे वे पे कर सकते हैं।
1: यानी कि एक परिवर्तन आप लोग ला रहे हैं समाज में और शायद इसीलिए आप अपनी संस्था का नाम परिवर्तन ही आपने दिया है।
0: जी जी जी, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि छोटी छोटी परिवर्तनों से हम अगर भविष्य की ओर थोड़ी भी परिवर्तन ला सके तो इससे बड़ी और हमारी कोई ये नहीं हो पाएगी।
1: बिल्कुल, तो मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है मैम कि भविष्य में जल संकट से बचने के लिए वर्षा जल संचयन कितना प्रभावी समाधान है।
0: देखिए जब भी आप भविष्य की बात करते हैं तो हमें एक बार अपने वर्तमान एवं भूत दोनों को सोच लेना चाहिए। आपको याद होगा हमने जो देखा है अपनी पीढ़ी अपनी

0: बचपन में हमने नदियों को खलखलाते हुए देखा हुआ है, हमने साफ जल देखा हुआ है नदियों का, और आज हमने नदी को नाले में परिवर्तित भी होते हुए देखा है। तो
1: बिल्कुल
0: आप सोच सकती है कि हमने जब पानियों को बाल्टी से नल में आते हुए देख लिया, नदियों से अब बूंदों में आते देख लिया, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हमें इसकी भविष्य के लिए संचयन करना कितना जरूरी है। सिर्फ हमने नहीं, हमने अपने भविष्य के में आने वाली पीढ़ियों के लिए, या इतने मिलियन स्पीसीज है उनके लिए, जो भी नेचर रिसोर्सेस है उसको बचाना कितना जरूरी है। और जल जल ही जीवन है, इस कल्पना और इस प्रतिज्ञा से अगर हम हर थॉट को लेके चलेंगे तो ये भविष्य में बचाने की हर उपयोग, कहते हैं ना एक एक बूंद से घड़ा भरती है, तो वही एक एक बूंद को बचाने की प्रक्रिया से ही भविष्य बनेगी।
1: वाह, बहुत ही खूबसूरत जवाब मैम। और हम आशा करते हैं कि हमारी बहनें जो सुन रही हैं आपकी बातों पर अमल करेंगी, बूंद बूंद बचाएंगी और जल ही जीवन का जो संदेश है वो हम सब उस पर अमल करेंगे। मैम आप आज हमारी कार्यक्रम में जुड़ी हैं तो हम चाहेंगे कि चलते चलते आप हमारी बहनों से कुछ साझा करें, कुछ बहनों को संदेश दें।
0: जी जी मेरा मेरा बहुत आभार रहेगा सारी बहनों को कि वो हमारी प्रकृति से मिली हुई हर एक चीज की बहुत ज्यादा वंदना करे, और उस चीज की उपयोग को उतना ही महत्व रखे जितना ही हमारा जीवन है। क्योंकि जब तक हमें हमें ये जीवन मिला है, हमें प्रकृति की हर एक चीज का वैल्यू करना होगा, ताकि हमारे आने वाले भविष्य के, हमारे बच्चों को वही चीज जिंदगी हम दे सके जिससे हम जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हर एक चीज की उतनी ही कदर की जाए जितनी एक जीवन की।
1: वाह बहुत खूब मैम, आज आपने हमारी बहनों से इतनी अच्छी जानकारी साझा की, तमाम बातें आपने बताई, आप आज हमारी कार्यक्रम में जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत धन्यवाद लता जी।
2: बहने आप अभी सुन रही थी भेंट वार्ता, विषय था वर्षा जल संचयन की विधि। भेंट वार्ताकार थी श्रेया तिवारी जो एक समाज सेवी हैं, और उनसे बातचीत कर रही थी हमारी रेडियो सखी लता। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं लता।
1: तो सुभाषिनी कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्यों ना बहनों के साथ कुछ खट्टा मीठा हो जाए, यानी कि कुछ गीत संगीत हो जाए। तो
2: बिल्कुल
1: चलो बहनों के साथ सुनते हैं प्यार भरा खूबसूरत संगीत।

0: बिल्कुल, बहुत सारे पेड़, घने जंगल कितने सुकून देते हैं, है ना? यानी जैसे गाने भी हमने सुनाए कि पर्वतों का जहाँ डेरा होता है और जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ की हवा बहुत ही शुद्ध होती है।
1: बिल्कुल.
0: तो यानी कि कहने का मतलब ये है लता, कि पेड़ जो होते हैं ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, हमें छांव देते हैं, फल फूल देते हैं, बिल्कुल हमारी माँ की तरह।
1: हाँ, तो आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान। बहनों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया गया। एक राष्ट्रीय व्यापी और वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण अभियान है। इसका उद्देश्य अपनी माँ के प्रति सम्मान और प्रेम व्यक्त करने के साथ साथ पर्यावरण को हरा भरा बनाना है।
0: बिल्कुल, यानी कि पेड़ ही हैं जो हमारे पर्यावरण को हरा भरा बना सकते हैं। और ये अभियान जो है वो मात्र वृक्षारोपण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी भावनात्मक और पारिस्थितिक पहल है। मातृत्व और प्रकृति का सम्मान, जैसे कि एक माँ हमें जीवन और पोषण देती है, वैसे ही जो प्रकृति माँ है ना, वो हमारा पालन पोषण करती है। और ये अभियान दोनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अनूठा माध्यम है, यानी कि इन दोनों को हम इससे उन्हें एक तरह से कहें तो उन्हें
1: सम्मानित दे सकते
0: सम्मानित
1: हैं।
0: कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सुभाषिनी, मैंने इस पहल का मुख्य लक्ष्य जलवायु परिवर्तन से निपटना, प्रदूषण कम करना और हरियाली को बढ़ावा देना है। यह लोगों को व्यक्तिगत रूप से जोड़ता है, जिससे समाज में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना जागृत होती है।
0: एक पेड़ माँ के नाम अभियान बहुत ही सफल रहा, और इस अभियान की अपार सफलता को देखते हुए इसका दूसरा चरण एक पेड़ माँ के नाम 2.0 भी चलाया गया है। इसके तहत व्यापक स्तर पर पौधारोपण के लक्ष्य रखे गए हैं, जिनमें स्कूली बच्चे हो गए, युवा हो गए और विभिन्न संगठन हो गए, उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित की गई है।
1: बिल्कुल बहनों, यदि आप भी इस नेक पहल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप अपनी माँ के साथ मिलकर या उनकी स्मृति में अपने घर, बगीचे या किसी सार्वजनिक स्थान पर एक पेड़ लगाएं। और हाँ, पेड़ लगाते समय अपना और अपनी माँ का चित्र, सेल्फी लेना ना भूलें।
0: या फिर इसे सरकार के आधिकारिक वेबसाइट माई भारत पोर्टल पर अपलोड करें, और ऐसा करने पर आपको अपनी माताजी और आपके नाम का एक विशेष डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। और इसी के साथ लता, हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं।
1: अगले कार्यक्रम में बहनों हम फिर हाजिर होंगे। तब तक अपनी सखी लता
0: और सुभाषिनी को दे इजाजत।
1: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी, अभी आप सुन रहे थे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुभाषिनी और लता के साथ। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
0: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नहाटा।
0: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
0: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
2: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
0: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साह वर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
0: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है इस श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
2: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
0: जी विमलेश जी, दरअसल होता ये है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
2: बिल्कुल।
0: लेकिन तथ्य कुछ और है।
2: जी।
0: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
2: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
0: बताइए।
2: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
0: जी वो तो है।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
2: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
0: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर

0: सकेंगी जी। आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
1: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें, पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
0: तो ये तो हुई पहली रोचक बात, अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
1: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियाँ हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती, ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
0: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है
1: जी,
0: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
1: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
0: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है
1: जी।
0: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
1: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि
0: जी।
1: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
0: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
1: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, वेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है
1: जी।
0: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
0: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
1: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: De Marseille, dans le sud de la France.
5: Ladies and gentlemen, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मोनसिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
6: चलो,
1: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
7: चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो
6: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया ये।
1: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
3: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
1: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया।
3: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
1: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
3: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
7: लुई पाश्चर
4: सर,
7: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
4: कहिए सर।
7: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
4: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
7: ठीक है।
3: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है और अच्छी बात ये है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयाँ आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन हैं।
3: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
3: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
3: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
3: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
3: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
8: अरे आजा आजा आजा हाँ, इंजेक्शन लगा दूँ?
9: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
3: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
10: सर सर ये टेलीग्राम।
9: अच्छा लाओ दिखाओ। अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
10: क्या हुआ सर?
9: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
10: कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो सर।
9: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
10: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
9: हाँ चार्ल्स।
3: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
1: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
11: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
9: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
11: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए वरना मेरा बेटा।
9: आप
11: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
9: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
3: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
1: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
3: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
1: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
3: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
1: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
3: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
12: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
3: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माई ग्रैंडफादर वॉज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट ऑलवेज वर्किंग टूवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
13: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
14: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
15: उमंग उमंग उमंग उमंग।
16: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुनझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 74,186 पर, जबकि निफ्टी 44 अंक लुढ़ककर 23,338 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu has said that education is a powerful means of empowerment as it enables individuals to become self-reliant, aware and capable. Addressing the tribal beneficiaries of scholarship scheme in New Delhi today, the President said true development can only be achieved when all sections of society progress socially, economically and educationally. She highlighted that the government scholarship schemes have transformed the lives of tribals by enabling access to higher education and new opportunities.
1: भारत सरकार जनजातियों समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न
2: The Ministry of Home Affairs has notified the Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026, introducing key changes to registration timelines and the appeals mechanism under the Immigration and Foreigners Rules 2025. The amendment allows registration to be completed at any time before the expiry of 180 days from arrival in India. Previously, registration had to be completed within 14 days after the end of the 180-day period. However, late registration beyond this period will now be permitted only under emergent circumstances. The Chief Justice of India, Justice Suryakant, administered the oath of office to five new judges of the Supreme Court today. Justices Sheel Nagu, Sri Chandrasekhar, Sanjeev Sachdeva and Arun Valli and Senior Advocate V. Mohana took oath as judges of the Apex Court. The centre had cleared their appointments yesterday on the recommendation of the Supreme Court Collegium. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Deputy President of South Africa, Paul Mashatile, in New Delhi today. They discussed opportunities in trade, investments, MSMEs, digital and infrastructure domains. They also agreed on working closely in international forums. In a social media post, Dr. Jaishankar said he appreciates Paul Mashatile's strong commitment to deepening the long-standing partnership between the two countries. The anti-terrorism squad of Uttar Pradesh has arrested a young man named Mohammad Sheikh from Azamgarh, allegedly linked with Pakistani gangster Shehzad Bhatti. The ATS received information that Pakistan's ISI and terrorist organizations were collaborating with Bhatti with the aim of spreading terror and threatening India's sovereignty, unity and territorial integrity. Intelligence was collected about Mohammad Sheikh, who had connected with Shahzad Bhatti's terrorist gang via WhatsApp. The Central Board of Secondary Education CBSE portal for verification of issues in the supplied scanned copy of answer books and for re-evaluation of answers has been made live from today and will remain open till the 6th of June. The CBSE said the facility can only be availed by the students who have obtained scanned copy of their evaluated answer books. The board stated that Aadhaar verification has been included for security reasons. For children who do not have Aadhaar, the parents, relatives or guardians' Aadhaar details can be used. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over interior Karnataka, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. IMD said coastal Andhra Pradesh, Gujarat, Odisha, Rajasthan and West Madhya Pradesh can experience thunder squall with wind speed reaching 50 to 60 kilometers per hour. The Met Department predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Haryana, Chandigarh, Delhi, Uttarakhand, West Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim for today. Similar conditions are likely to prevail over Konkan and Goa, Lakshadweep, Maharashtra, Rayalaseema, Saurashtra and Kutch, Telangana, the Andaman and Nicobar Islands and Himachal Pradesh. Benchmark domestic equity indices were trading on a negative note in afternoon trade today. The Sensex fell 81 points to 74,186, while the Nifty dropped 44 points to 23,338 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: रखा। सीबीएसई 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल सक्रिय, बोर्ड ने जानकारी के लिए जारी किया वीडियो। और पर्यावरण सप्ताह के तहत झारखंड वन विभाग की ओर से कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन, स्वच्छता अभियान, मानव श्रृंखला, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग और कार्यशालाएं शामिल। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों से बातचीत की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार आदिवासी छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं का के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये देश के विकास के लिए सभी समाज का आवश्यकता है। देश का सामग्रिक विकास तब कहला जाएगा जब सभी स्तर के बच्चे, सभी स्तर के समाज के लोग विकसित होंगे, आगे बढ़ेंगे सोशियली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, कल्चरली। लेकिन हम जो बड़े बन जाते हैं, शहर में रह जाते हैं, अपना संस्कृति, अपना परंपरा, अपना अतीत को भूल जाते हैं। अतीत कभी भूलना नहीं।
0: झारखंड में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच झारखंड जल मिशन 2.0 को लेकर एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्री योगेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में विभाग के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल एमओयू में शामिल होगा। मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने आकाशवाणी को बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस एमओयू कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने विभाग की बकाया राशि भुगतान की भी उम्मीद जताई।
2: केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में आज 2 से 3 बजे तक के बीच मीटिंग है। झारखंड केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और झारखंड सरकार के साथ एमओयू होना है, जिसमें झारखंड जल जीवन मिशन 2.0 को लेकर के उसमें एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और बेहतर रूप से नल जल योजना को धरातल पर कैसे चालू किया जाएगा, जो बकाया राशि है आगे मिलने की संभावना है एमयू के पश्चात। अभी अगर आप देखेंगे 6,207 करोड़ रुपया अभी बकाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन जुड़ेंगे।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा करेंगे। इस दौरान विभागीय कार्यप्रणाली, योजनाओं की अद्यतन प्रगति एवं लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। राजमहल विधायक एमटी राजा ने राजमहल और उधवा प्रखंड में 2.34 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 11 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें डीप बोरिंग, जल मीनार, तालाब में सीढ़ी घाट, सार्वजनिक भवन और पोखर का सौंदर्यीकरण शामिल है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल और सामुदायिक भवनों जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि पिछले 3 दशकों से उपेक्षित इलाकों का भी विकास हो सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विशेष गहन पुनरीक्षण और जनगणना के मद्देनजर बूथ से पंचायत तक संगठन मजबूत करने का अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 15 जून तक हर बूथ पर BLA 2 और 10 सदस्यीय बूथ कमेटी बनाई जाएगी। केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे के नेतृत्व में 4 जून तक चाईबासा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में संगठनात्मक बैठकें होंगी। वहीं रांची जिले में 8 प्रखंडों के लिए केंद्रीय व जिला योजक मंडल सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है।

0: यह पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 182 अंक गिरकर 74,085 पर, जबकि निफ्टी अंक लुढ़क कर 23,302 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,70,000 रुपये प्रति किलो है। जमशेदपुर पुलिस ने उलीडी थाना क्षेत्र में हुए विकास सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी पीयूष पांडे ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं।
1: उलीडी थाना अंतर्गत एक डेड बॉडी हम लोग को मिली थी, जिसकी शिनाख्त करने पर विकास सिंह 25 वर्ष जो उलीडी के रहने वाले थे उसके रूप में इनकी पहचान हुई थी। तो इसमें बॉडी के ऊपर काफी धारदार हथियार से अटैक करने वाले निशान थे और इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसआईटी बनाई गई। इसमें भी इन्वेस्टिगेशन करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ने इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के दौरान अपनी संलिप्तता स्वीकारी है।
0: झारखंड वन विभाग 1 से 5 जून तक पर्यावरण सप्ताह मना रहा है, जिसमें स्वच्छता अभियान, मानव श्रृंखला, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग और कार्यशालाएं शामिल हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी है।
2: एक सप्ताह का कार्यक्रम स्टार्ट किया है, लोगों ने बायोडायवर्सिटी पार्क में वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया प्लास्टिक रिमूवल के लिए। वहाँ से कल हम लोग हौराप में करने जा रहे हैं, वहाँ पे पक्षियों के भी हम लोग वॉचिंग करेंगे, देखेंगे कौन कौन से पक्षी वहाँ पे हैं और वो कैसे हम लोगों के बायोडायवर्सिटी के लिए यूजफुल है, लोगों को उसके बारे में बताया जाएगा।
0: गिरिडीह में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के शासी निकाय की बैठक हुई। इसमें राज्यसभा सांसद, जमुआ विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, गिरिडीह महापौर, पर्यटन मंत्री के प्रतिनिधि और कई विधायकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में जिले के अधिसूचित पर्यटन स्थलों की स्थिति और पर्यटन विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। विधायक मंजू कुमारी ने बताया कि 20 श्रेणी के पर्यटन स्थलों के समग्र विकास के लिए कंसल्टेंट के जरिए डीपीआर तैयार कराया जाएगा। जो पर्यटन स्थल अब तक अधिसूचित नहीं हुए हैं उनके लिए भी दोबारा प्रस्ताव भेजा जाएगा।
3: पर्यटन विभाग डीसी साहब के अध्यक्षता में बैठक हुआ, जमुआ विधानसभा में झारखंड हम मंदिर में तत्काल बोला गया शौचालय 2 यूनिट का, उसके बाद पानी का व्यवस्था, उसके बाद उसका बैठने के लिए आरसीसी बनाया जाएगा। दूसरी बात, हमारे जो जलीय शिव मंदिर है हमारे मिर्जागंज में नाली का पानी है, किस तरह से उसको मतलब की निकाला जाए उसके लिए भी डीसी साहब ने आश्वासन दिए हैं।
0: पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर स्थित दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या और सुविधा को ध्यान में रखते हुए टाटानगर बक्सर टाटानगर एक्सप्रेस में स्थायी रूप से एक अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। रेलवे के इस फैसले से ट्रेन में यात्रियों के लिए बैठने की क्षमता बढ़ेगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक हो सकेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं से किया संवाद, कहा भारत सरकार आदिवासी छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत। झारखंड जल मिशन 2.0 को लेकर दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एमओयू आज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से वर्चुअल माध्यम से होंगे शामिल। मुख्यमंत्री आज स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की करेंगे समीक्षा, विभागीय कार्यप्रणाली, योजनाओं की अद्यतन प्रगति एवं लंबित मामलों का लेंगे लेखा जोखा। सीबीएसई 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल सक्रिय, बोर्ड ने जानकारी के लिए जारी किया वीडियो। और पर्यावरण सप्ताह के तहत झारखंड वन विभाग की ओर से कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन, स्वच्छता अभियान, मानव श्रृंखला, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग और कार्यशालाएं शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी का। अनुरंजनी में हमारी आज की कलाकार हैं श्रीमती सिप्रा बोस, जिनसे हम सुनेंगे सबसे पहले दादरा और उसके बाद हम सुनेंगे पहाड़ी दादरा।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। हमारी आज की कलाकार है श्रीमती सिप्रा बोस। आइए उनसे सुनते हैं दादरा।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम सुगम संगीत का। सुगम संगीत में हमारे आज के मेहमान हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। आइए सबसे पहले सुनते हैं मलिक गुमनाम की शब्द रचना। संगीतकार और गायक कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह।

मिताली सिंह के गाए इस गजल के साथ ही आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्यास कर रही है।
0: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक हैं। मेरे सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपने जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
0: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
1: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत में इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र सीडीसी को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल यूपीआई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जांच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमरीका की मध्य

0: अव्यवस्था से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक की उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है फौजी भाइयों के कार्यक्रम जय भारती का। जय भारती कार्यक्रम हम सुनेंगे भारतीय सेना को समर्पित इस गीत के बाद।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ಸ್ವಯಂ ಈ ಕಟ್ಟಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: जय भारती कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है. इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सुनीता. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म एलओसी कारगिल के इस गीत के साथ, जिसे गाया है सोनू निगम और श्रेय घोषाल ने. गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और धुन बनाई है अनु मलिक ने.

समीर के बोले यार रहमान का संगीत, अलका याग्निक उदित नारायण की खूबसूरत सी आवाज़, फिल्म का नाम द लीजेंड ऑफ भगत सिंह।

साजन की बाहों में इस फिल्म का गीत आप सुनेंगे कुमार शानू और साधना सरगम की युगल स्वरों में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है नदीम शावन ने।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा को सशक्तिकरण का शक्तिशाली साधन बताया है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं ने जनजातीय समुदाय को उच्च शिक्षा के अवसर देकर उनका जीवन बदला है। राष्ट्रपति ने युवाओं से आधुनिक शिक्षा और तकनीक को अपनाने की अपील की।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपने जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: नई दिल्ली में कल आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह में देश की 42 पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें झारखंड के पाकुड़ जिले की जीकरहट्टी पूर्वी पंचायत ने महिला हितैषी पंचायत श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान पाकर राज्य का नाम रोशन किया है। गिरिडीह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पांडेडीह के किसानों का कहना है कि समय पर मिलने वाली 2-2 हजार रुपए की राशि से उन्हें खाद बीज खरीदने में मदद मिल रही है। इस योजना ने महाजनों पर उनकी निर्भरता खत्म कर किसानों का आत्मबल मजबूत किया है।
2: ग्राम पांडे डिग्री डी से हूँ। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों के लिए 6,000 रुपए देते, जो प्रत्येक माह 2,000 रुपए करके मिलती है।
3: अशोक वर्मा, पंचायत पांडे डी, प्रखंड गिरिडीह, जिला गिरिडीह का एक किसान हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मुझे साल भर में 2-2 हजार रुपए करके शुरुआत से ही मिलते आ रहे हैं। एक ऐसा किस्त भी मिला और इस पैसे से हम किसान वर्ग खेती कार्य के लिए खाद बीज व अन्य उपकरण का में खर्च करते हैं और इस हम सभी को लाभ भी मिला है।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से श्री मरांडी ने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबे माफिया और अधिकारी एसीबी की मदद से भी नहीं बच पाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता की कमाई लूटने वालों की असली मंजिल जेल होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावां में जनगणना 2027 के कार्य में लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्रवाई हुई है। चांडिल के प्रखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हराधन भूमिज हो गई हैं। इस बार मेला फेस रिकॉग्निशन और एआई तकनीक से लैस होगा। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि आम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वीआईपी दर्शन पूरी तरह बंद रहेंगे। सभी बुनियादी सुविधाएं समय पर पूरी की जाएंगी। जमशेदपुर में आयोजित 15वीं झारखंड राज्य सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में जेएसएससीपीएस के तैराकों ने शानदार प्रदर्शन किया है। रांची के प्रथमी सिंह सरदार ने 1 स्वर्ण और 4 रजत सहित कुल 5 पदक जीते। वहीं लखिंदर सिंह मुंडा ने भी कांस्य पदक जीतकर संस्थान का नाम रोशन किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नॉनस्टॉप अंताक्षरी का। ये कार्यक्रम हम सुनेंगे भारतीय सेना को समर्पित इस गीत के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ಸ್ವಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: नॉन स्टॉप अंताक्षरी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है. जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंताक्षरी कार्यक्रम की शुरुआत होती है माँ अक्षर के गीत के साथ. और प्रायः ऐसा कोई भी व्यक्ति ना होगा जिसने अंताक्षरी अपने जीवन में ना खेला हो. ये एक ऐसा खेल है जो सभी खेलते हैं, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, युवा हो, कॉलेज का कैंपस हो, घर में शादी का माहौल हो, घर में चार लोग आपस में बैठे हो, या फिर गांव में लाइट नहीं हो और चौपाल पर लोग बैठे हैं. ये ऐसा खेल है जो कहीं भी कभी भी खेला जा सकता है और बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा खेल भी है. तो चलिए, हम और आप रोज ही खेलते हैं, आज आप और हम फिर से मिलकर खेलेंगे एक बार अंताक्षरी. और मैंने अपनी प्लेलिस्ट बना ली है, मुझे उम्मीद है आप सबकी प्लेलिस्ट भी रेडी होगी. तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माँ अक्षर के इस गीत के साथ.

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम रांची मेलोडीज का, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही खूबसूरत से प्यारे प्यारे गीत। और इन सब गीतों के साथ आज मैं हूं इस कार्यक्रम में आपकी दोस्त सुनीता। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म मधुमति के इस गीत के साथ। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, धुन बनाई है सलील चौधरी ने और इस गीत को गाया है तलत महमूद और माफ कीजिएगा, इस गीत को गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने।

उसने कहा था इस फिल्म का गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और धुन बनाई है सलील चौधरी ने। और इस गीत में लता मंगेशकर का साथ दे रहे हैं हेमंत कुमार।

बार जो इस फिल्म का गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में, गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

शैलेंद्र की शब्द रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, मुकेश और लता मंगेशकर की खूबसूरत सी आवाज, फिल्म का नाम जिस देश में गंगा बहती है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही रांची मेलोडीज कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है, लेकिन उम्मीदवारों के नामों पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष दोनों ही खेमों में आम सहमति बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व जल्द ही अंतिम नामों की घोषणा कर सकता है। एडीजी मनोज कौशिक ने गुमला में रांची जोन के 4 जिलों की पुलिस के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने 3 वर्षों के लंबित मामलों, विधि व्यवस्था और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा की समीक्षा की। एडीजी ने महिला और बच्चों से जुड़े अपराधों और पॉक्सो मामलों में त्वरित कार्रवाई और तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पलामू प्रमंडलीय आयुक्त कुमुद सहाय की उपस्थिति में नवनियुक्त उप परिवहन आयुक्त राजेश साहू ने विधिवत पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान पदाधिकारी मनीष कुमार ने उन्हें प्रभार सौंपे। आयुक्त ने नए अधिकारी को पारदर्शिता के साथ राजस्व संग्रहण बढ़ाने और जनता को बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में कल आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह में देश की 42 पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें झारखंड के पाकुड़ जिले की जिकरहट्टी पूर्वी पंचायत ने महिला हितैषी पंचायत श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान पाकर राज्य का नाम रोशन किया है। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कांवरिया पथ सुगम बनाने और शेड लगाने के साथ ही इस बार मंदिर परिसर के बाहर करीब 1300 लॉकर बनाए जा रहे हैं। इससे श्रद्धालुओं को मोबाइल और कीमती सामान सुरक्षित रखने में बड़ी राहत मिलेगी। राज्य में पिछले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिसमें सबसे अधिक 21.6 मिलीमीटर वर्षा रांची में हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। आज चर्चा होगी आईपीएल आरसीबी चैंपियन, साथ ही स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द वीक में वैभव सूर्यवंशी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। रिपोर्ट संकलन और प्रस्तुति स्वर है अमिता खोरी का, प्रस्तुति है प्रभु शरण की। ये कार्यक्रम हम सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samrit Bharat. Join Indian Navy.
3: क्रीड़ा जगत कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को अमित का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको बता दें कि आज हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे आईपीएल की। आईपीएल का खिताब एक बार फिर आरसीबी के पास आया है, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक बार फिर चैंपियन बना। इसके पहले 18 साल लगे थे चैंपियन बनने में, इस बार सिर्फ एक साल बाद आरसीबी फिर से चैंपियन बना है। पर्सनालिटी में बात करेंगे वैभव सूर्यवंशी की। 680 रनों में 610 रन उन्होंने सिर्फ बाउंड्री से बनाए हैं, तो इस अनूठे वैभव की चर्चा करेंगे। खेल खबरें तो होंगी ही, खास खास में आज हम बात करेंगे फ्रेंच ओपन के अनोखे कोर्ट के बारे में। इसके अलावा इनहांस्ड गेम, एक अनूठा प्रयास शुरू किया गया, लेकिन इसमें सफलता बहुत हद तक नहीं मिली, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले आईपीएल की हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आईपीएल 2 महीने के सफर के बाद आईपीएल खत्म हुआ और आरसीबी फिर से एक बार चैंपियन बना है। अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक बार फिर इतिहास रच डाला। आईपीएल सीजन 19 के फाइनल में गुजरात को आरसीबी ने 5 विकेट से हराया और लगातार दूसरी बार ये टीम चैंपियन बन गई। आरसीबी ऐसा करने वाली इतिहास की तीसरी टीम बन गई है। इससे पहले चेन्नई ने 2010 और 2011 में लगातार ये खिताब, आईपीएल का खिताब जीता था। फिर मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई ने 2019 और 2020 में इसी तरह लगातार दो साल मुंबई की टीम चैंपियन बनी थी। आरसीबी ने पिछले साल 3 जून 2025 को यह खिताब पाया था और इस खिताब को पाने में 18 साल लगे थे। 18 साल का सूखा पिछले साल खत्म हुआ था। इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर पिछले साल पंजाब को हराकर आरसीबी ने अपना पहला खिताब जीता था और इस बार जीत के साथ ये पहली टीम बन गई जिसने अपने शुरुआती दोनों आईपीएल खिताब एक ही न्यूट्रल मैदान पर लगातार दो साल जीते हैं। थोड़ी मैच की चर्चा कर ले दोस्तों। आरसीबी ने टॉस जीतकर गुजरात को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। गुजरात 20 ओवर में 155 रन बना सकी। मैच के हीरो विराट कोहली ने 42 गेंदों में नाबाद 75 रन बनाकर एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उन्हें चेज मास्टर क्यों कहा जाता है। विजयी छक्का भी विराट कोहली के बल्ले से लगा। बेंगलुरु की पहली जीत 18 साल के इंतजार के बाद आई थी, इस बार 12 महीने के इंतजार के बाद आई। अगर पूरे मैच की बात करें, टर्निंग पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो शुरुआती 6 ओवर में सिर्फ 45 रन गुजरात की टीम ने बनाए थे। टॉप स्कोरर ओपनिंग जोड़ी गिल और साई दोनों के विकेट चले गए थे। गिल 10, साई 12, बटलर 19, तीनों मिलकर सिर्फ 41 रन बना सके। औसत स्ट्राइक रेट 103 का रहा। वाशिंगटन सुंदर ने 50 रन और अरशद ने 15 रन बनाए और उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सका। रबाडा ने 15 की इकोनॉमी से 3 ओवर में 44 रन दिए। एक ओवर में 2 विकेट लेकर सिर्फ राशिद खान प्रभावी बॉलर रहे। विकेट कीपर ने अय्यर का कैच मिस कर दिया। पावर प्ले में बाउंड्री पर 2 बार मिसफील्ड रहे और 2 रन आउट भी चुके। तो ये बहुत सारे रीजंस रहे जो गुजरात की टीम के हार के कारण बने। अब अगर हम बेंगलुरु की बात करें, टर्निंग पॉइंट की बात करें, तो शुरू के 6 ओवर में 70 रन जड़ दिए गए। वेंकटेश अय्यर ने 200 के स्ट्राइक रेट से 16 गेंद में 32 रन बनाए। चेज मास्टर कोहली ने 25 गेंदों में 52 रन के साथ आईपीएल के इतिहास में अपने सबसे तेज 50 लगाई उन्होंने। पार्टिकल, पाटीदार और कृणाल के विकेट जल्दी गिरने के बाद डेविड ने 17 गेंदों में 24 रनों की अच्छी पारी खेली। रसिक ने 27 रन देकर 3 विकेट लिए। भुवनेश्वर हेजलवुड के 2-2 विकेट रहे और सभी की इकोनॉमी 10 से नीचे रही। पावर प्ले के तीसरे ओवर में पाटीदार ने 19 मीटर दौड़कर कप्तान गिल का कैच पकड़ा और जिसने सारे मैच का रुख बदल दिया। अब अगर रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो 40 गेंदों तक गुजरात की शून्य बाउंड्री थी। पाटीदार लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने वाले तीसरे कप्तान बने। तो कुछ रिकॉर्ड्स की भी हम चर्चा करते हैं। गुजरात ने इस मैच के दौरान लगातार 40 गेंदों में एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। इससे पहले 2009 में डेक्कन और बेंगलुरु के बीच फाइनल में 35 गेंदों में बाउंड्री नहीं लगी थी। फाइनल में कोहली ने 3 छक्कों और 9 चौकों के साथ नाबाद 75 रन बनाए और इसी के साथ आईपीएल इतिहास की अपनी सबसे तेज 50 उन्होंने जड़ी। और 2018 में राजस्थान के खिलाफ 26 गेंदों में उन्होंने अर्धशतक बनाया था। रजत पाटीदार की अगर हम बात करें, तो रजत पाटीदार आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने बतौर फुल टाइम कप्तान अपने पहले 2 सीजन में टीम की कमान संभालते हुए उसे आईपीएल का चैंपियन बना दिया। टीम को 2 बार चैंपियन बनाने वाले महेंद्र सिंह धोनी और रोहित जैसे कप्तानों के क्लब में पाटीदार भी शामिल हो गए। आरसीबी ने आईपीएल इतिहास में सबसे कम समय के भीतर यानी महज 363 दिनों के अंदर 3 जून 2025 से 31 मई 2026 ये जो समय रहा, शुरुआती 2 लगातार खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड की बात करें, अवार्ड की बात करें, तो वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कैप के अलावा और भी बहुत सारे अवार्ड मिले, जैसे सुपर स्ट्राइकर का अवार्ड मिला। सुपर सिक्स की बात करें तो 72 छक्के लगाए, 10 लाख रुपए इनाम के रूप में मिले। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में इनको अवार्ड मिला। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर के रूप में भी अवार्ड मिला, 10 लाख रुपया। प्राइज मनी की अगर हम बात करें, तो बेंगलुरु को यानी विजेता टीम को 20 करोड़ और गुजरात की टीम यानी उप विजेता टीम को 12.5 करोड़ रुपए मिले। तीसरे और चौथे स्थान की टीमों को, राजस्थान को 7 करोड़ और हैदराबाद को 6.5 करोड़ रुपए दिए गए। कोहली ने 208 के स्ट्राइक रेट से मात्र 25 गेंद में आईपीएल इतिहास में अपना सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। फाइनल में यह उनका 2016 के बाद पहला अर्धशतक था। इससे पहले फाइनल में उनका स्ट्राइक रेट 126 था। 37 साल 207 दिन की उम्र में प्लेयर ऑफ द मैच बने कोहली। आईपीएल फाइनल में कुंबले के बाद दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। आईपीएल फाइनल एक ही वेन्यू पर जीतने वाली तीसरी टीम बनी आरसीबी, जैसा कि हमने आपको बताया। मुंबई ने कोलकाता, हैदराबाद और कोलकाता ने चेन्नई में ऐसा किया है। 5वीं बार आईपीएल खिताब जीते कृणाल धोनी, किरण पोलार्ड और हार्दिक पंड्या की बराबरी की। सिर्फ रोहित और नायडू 6-6 बार ही उनसे आगे हैं। 4थी सबसे सफल टीम रही बेंगलुरु। अगर ट्रॉफी जीतने की बात करें तो चेन्नई ने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में आईपीएल का खिताब जीता है। मुंबई ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल का खिताब जीता है। चेन्नई और मुंबई की टीमें 5-5 बार जीती हैं। कोलकाता की टीम ने 3 बार यह खिताब जीता है और वो है 2012, 2014 और 2024 में। बेंगलुरु ने 2025 और 2026 में खिताब जीता है। राजस्थान ने 1 बार 2008 में, डेक्कन चार्जर ने 2009 में, हैदराबाद ने 2016 में और गुजरात ने 2022 में खिताब जीता है। अब लीग रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो कुछ लीग रिकॉर्ड की हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो सीजन रहा आईपीएल का 19वां सीजन, इसमें 1426 छक्के लगे। लीग इतिहास में पहली बार 1300 से अधिक छक्के लगे। 2025 में 1294 छक्के लगे थे और उसका रिकॉर्ड ये टूट गया। चौकों का आंकड़ा भी पहली बार 2300 यानी 2300 के पार पहुंचा। बल्लेबाजों ने 2332 चौके लगाए। पिछले सीजन में 2245 चौके लगे थे। पहली बार किसी भारतीय ने 150 रनों की पारी खेली और इस खिलाड़ी का नाम है केएल राहुल। केएल राहुल ने पंजाब के खिलाफ 152 नॉट आउट रन जड़े और ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे बैटर हैं। मौजूदा सीजन में 26,151 रन बने और आईपीएल के एक सीजन में ऐसा पहली बार हुआ है। पिछले सीजन में 25,166 रन बने थे। सीजन में कुल 65 बार टीमों ने 200 से अधिक का टोटल बनाया, यह भी एक सीजन में रिकॉर्ड है। पिछले साल 52 बार ऐसा हुआ था। सीजन में रिकॉर्ड 50 भी

हुई थी। अब इस सीजन में 15 शतक लगाने वाले अगर खिलाड़ियों के नामों की चर्चा करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है केएल राहुल का, जिन्होंने 67 बॉल में 152 रन बनाए और इनका स्ट्राइक रेट 226.87 था। अभिषेक शर्मा ने 68 बॉल में 135 रन बनाए, नॉट आउट रहे थे, स्ट्राइक रेट 198.53 था। रयान रिकेल्टन ने 55 गेंद में 123 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 223.64। संजू सैमसन ने 56 बॉल में 115 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 205 का। डिकॉक ने 112 रन बनाए मात्र 60 बॉल में और स्ट्राइक रेट 186.67 का रहा। मिचेल मास ने 56 गेंद में 111 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 198.21 का रहा। कूपर कोनोली ने 59 बॉल में 107 रन बनाए, नाबाद रहे, स्ट्राइक रन रेट 181.36 का रहा। विराट कोहली, जो इस पूरे टूर्नामेंट के हीरो रहे, उन्होंने 60 बॉल में 105 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 175 का। शुभमन गिल ने 53 बॉल में 104 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 278.38 का। तिलक वर्मा ने, वैभव सूर्यवंशी ने 37 बॉल में 103 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 278 का। तिलक वर्मा ने 45 बॉल में 101 रन बनाए और 224.44 का स्ट्राइक रेट रहा। संजू सैमसन की बात करें तो उन्होंने एक और शतक लगाया था, 54 बॉल में 101 रन बनाए थे। श्रेयस अय्यर ने 51 बॉल में 101 रन बनाए, स्ट्राइक रन रेट 198 का रहा। साई सुदर्शन ने 100 रन बनाए 58 बॉल में, स्ट्राइक रन रेट 172.41 का रहा। फिन एलन की बात करें तो उन्होंने 47 बॉल में 100 रन बनाए और स्ट्राइक रन रेट 212 का रहा। तो दोस्तों, ये जो आईपीएल रहा इसमें रिकॉर्ड की भरमार रही, बहुत ऐसे रिकॉर्ड बने, बहुत ऐसे रिकॉर्ड टूटे और अपने आप में ये आयोजन अभूतपूर्व रहा और आरसीबी की टीम ने 2 बार एक ही मैदान में खिताब जीतकर इतिहास रचा। और दोस्तों, अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब पर्सनालिटी में बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी की, यानी अनूठे वैभव की। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने विस्फोटक बल्लेबाजी से इस पूरे आईपीएल में तहलका मचा दिया। T20 में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी बैटर ने एक आईपीएल में 200 से अधिक के स्ट्राइक रन रेट से 550 से ज़्यादा रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप हासिल किया और उन्होंने 776 रन बनाए, 72 छक्के उन्होंने लगाए और ऐसा करने वाले वह पहले बैटर बने किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी सीजन में किसी भी खिलाड़ी ने इतने रन नहीं बनाए। बेबी बॉस ने यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के आईपीएल के 2012 में बनाए गए 59 छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वैभव की बल्लेबाजी को बयां करने के लिए अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय जैसे शब्द भी कम पड़ रहे हैं। पावर प्ले में 490 रन बनाए उन्होंने और 37 छक्के जड़े। एक सीजन में किसी बैटर का पावर प्ले में ये रिकॉर्ड है और इस दौरान स्ट्राइक रन रेट 231.18 रहा। मिडिल ओवर्स में वैभव और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते थे क्योंकि स्ट्राइक रेट 235.38 तक पहुंच जाता था। पिछले 6 ओवरों में हर 5 गेंद पर एक छक्का उन्होंने लगाया, लेकिन मध्य ओवरों में ये रेट थोड़ा घट गया। उन्होंने 72 छक्कों में से 54 पेसर्स के खिलाफ जड़े, 232 गेंदों पर 247.84 के स्ट्राइक रेट से तेज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना उनकी शानदार टाइमिंग और हेड आई कोऑर्डिनेशन को साबित करता है। उन्होंने बुमराह, कमिंस, एनगेडी, सिराज, बोल्ट जैसे 150 के रफ्तार वाले दिग्गज पेसर्स के खिलाफ पहली गेंद पर छक्का लगाया, जो उनकी आक्रामक मानसिकता को दिखाता है। केवल एक बार ऐसा हुआ जब किसी खिलाड़ी ने एक ही सीजन में ऑरेंज कैप जीती हो, सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हों और सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट हासिल किया हो। यह कारनामा 2011 में आरसीबी के लिए गेल ने किया था। सिक्स और स्ट्राइक रेट के मामले में तो उनके आसपास कोई नज़र नहीं आता। और इधर वैभव ने भी ऑरेंज कैप हासिल किया। वैभव सूर्यवंशी ने 5 अवार्ड जीते,
सुपर स्ट्राइकर का

अवार्ड, सुपर सिक्स का अवार्ड, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड, इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड और ऑरेंज कैप भी उन्हें ही मिला। तो दोस्तों, वैभव एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है और बड़े बड़े खिलाड़ी भी इनको दाद दे रहे हैं। और दोस्तों, अब हम खास खास में बात करने जा रहे हैं फ्रेंच ओपन के अनोखे कोर्ट की। फ्रेंच ओपन के शोर, भीड़ और टेनिस के रोमांच से कुछ दूर एक ऐसी जगह है जहां पहुंचते ही माहौल बदल जाता है। फ्रेंच ओपन की मेजबानी करने वाले रोला गैरो स्टेडियम के बीचों बीच बना आर्टे बॉटनिकल गार्डन मानो किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लगता है। यहाँ 500 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, रंग बिरंगे फूल हैं और उनके बीच छिपा है एक अनोखा टेनिस कोर्ट, कोर्ट सिमोन मैथ्यू। इस कोर्ट का नाम दो बार की पूर्व महिला सिंगल चैंपियन सिमोन मैथ्यू के नाम पर रखा गया है और यहाँ पहुँचने वाले खिलाड़ी और दर्शक पहले हरियाली के बीच से गुजरते हैं। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि वे किसी बॉटनिकल पार्क में घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैच शुरू होता है वहीं शांत जगह शोर और जुनून से भर उठता है। खासकर जब कोई फ्रेंच खिलाड़ी कोर्ट पर हो तब यहाँ का माहौल किसी फुटबॉल स्टेडियम जैसा लगता है। रविवार को फ्रांस के टीटुआ द्रोगे के मुकाबले में यही देखने को मिला। दर्शक लगातार द्रोगे अले के नारे लगा रहे थे, हर पॉइंट पर तालियां और शोर गूंज रहा था, लेकिन यह समर्थन द्रोगे के लिए दबाव भी बन गया। दुनिया के 110वें नंबर के खिलाड़ी द्रोगे मैच में अपनी लय नहीं पकड़ सके और सीधे सेटों में हार गए। शाम ढलने के बाद कोर्ट सिमोन मैथ्यू की खूबसूरती और भी ज़्यादा नज़र आने लगी। दर्शक जब सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपनी सीटों तक पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसा एहसास होता है मानो किसी गुप्त स्टेडियम में प्रवेश कर रहे हैं। ऊपर हरियाली और फूलों की खुशबू, नीचे लाल मिट्टी का कोर्ट और बीच में हजारों दर्शकों की आवाज़ें, यही है इस कोर्ट को बाकी से अलग करता है। कोर्ट सिमोन मैथ्यू सिर्फ एक टेनिस कोर्ट नहीं बल्कि रोला गैरो की एक नई पहचान है। यहाँ हरियाली की शांति भी है और खेल का उन्माद भी। दिन में यह जगह किसी बगीचे जैसे लगती है, लेकिन रात होते होते यही कोर्ट खिलाड़ियों के लिए सबसे कठिन परीक्षा का स्थान बन जाता है। साल 2019 में शुरू हुआ यह कोर्ट फ्रेंच ओपन का तीसरा सबसे बड़ा कोर्ट है। इसकी खासियत सिर्फ इसकी क्षमता या आधुनिक डिजाइन नहीं बल्कि उसका माहौल है। चार विशाल कांच के ग्रीन हाउस के बीच बना यह कोर्ट ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद टेनिस को अपनी गोद में जगह दी है। कोर्ट जमीन से करीब 4.5 मीटर नीचे बनाया गया है ताकि वह आसपास के बगीचों के साथ घुल मिल जाए। तो दोस्तों, ये अनोखा कोर्ट है, खिलाड़ियों को वहाँ खेल का तो आनंद आता ही है, साथ साथ ऐसा लगता है जैसे वे प्रकृति की गोद में जाकर बैठ गए हैं। खास खास में हम एक और बात की चर्चा करने जा रहे हैं और वो है कि एक अनोखा आयोजन हुआ, एनहांस टूर्नामेंट। हालांकि ये बहुत सफल नहीं हुआ लेकिन फिर भी इसकी हम चर्चा करते हैं। अमेरिका के लास वेगास में चमकती रोशनी, तेज संगीत, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भीड़ और करोड़ों की इनामी राशि। दावा था यहाँ इंसानी शरीर की सीमाएं टूटेंगी और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे, लेकिन एनहांस्ड गेम का पहला आयोजन पूरी तरह से सफल नहीं रहा। करीब 5 घंटे तक चली प्रतियोगिता में आखिर तक कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं बना। अंतिम इवेंट में ग्रीस के तैराक क्रिस्टियन गकोलो मेव ने 50 मीटर फ्री स्टाइल रेस 20.81 सेकंड में पूरी की और यह आधिकारिक विश्व रिकॉर्ड से सिर्फ 0.07 सेकंड बेहतर था। हालांकि यह रिकॉर्ड मान्य नहीं है क्योंकि उन्होंने प्रतिबंधित स्किन सूट पहना था और डोपिंग भी की थी। फिर भी आयोजकों ने इसे सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर जश्न मनाया। इन हैंड्स गेम का मकसद ही अलग है। यहाँ खिलाड़ियों को प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाएं लेने की अनुमति हालांकि दी जाती है, कुछ प्रतिबंधित दवाएं लेने की छूट है। स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाया जा रहा था कि खिलाड़ी किस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट में दिलचस्पी ले रहे हैं। दिलचस्प बात यह रही कि 3 ऐसे खिलाड़ी भी विजेता बने

इन्होंने दावा किया कि उन्होंने किसी भी तरह के प्रतिबंधित दवाओं का सेवन नहीं किया। अमेरिका के फ्रेड कैरली ने 100 मीटर दौड़ जीतने के बाद कहा कि बाकियों को और मेहनत करनी चाहिए, शायद थोड़ा और प्रतिबंधित दवा उन्हें लेना चाहिए। वहीं महिलाओं की 100 मीटर रेस जीतने वाली ट्रिस्टन एवलिन ने कहा कि यह साबित करता है कि जीत सिर्फ केमिस्ट्री से नहीं मिलती बल्कि जुनून होना चाहिए। आयोजकों ने रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ज्यादातर खिलाड़ी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज से मशहूर आइसलैंड के स्ट्रांगमैन थॉर ब्योर्नसन 510 किलो डेडलिफ्ट का अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके। कई वेटलिफ्टर तीन तीन कोशिशों के बाद भी रिकॉर्ड से काफी दूर रहे, यहां तक कि जब कनाडा के वेटलिफ्टर बॉयडी सेंटावी असफल हुए तो आयोजकों ने नियम बदलते हुए उन्हें एक अतिरिक्त मौका दिया। माहौल किसी पेशेवर टूर्नामेंट से ज्यादा स्कूल स्पोर्ट्स डे जैसा लग रहा था। हालांकि खिलाड़ियों के लिए इनाम बेहद बड़ा था। ब्रिटेन के तैराक बेन प्राउड ने 50 मीटर बटरफ्लाई जीत कर एक अन्य रेस में दूसरा स्थान हासिल कर करीब 3.5 करोड़ रुपए कमाए। उन्होंने कहा कि जब मैंने इन गेम्स के बारे में सुना तो लगा जैसे लॉटरी लग गई। यह दुनिया का पहला ऐसा खेल आयोजन था दोस्तों, जहां खिलाड़ियों को कुछ प्रतिबंधित दवाएं लेने की अनुमति थी। आयोजकों का दावा था कि इनसे इंसानी क्षमता की नई सीमाएं सामने आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाएं और कई पूर्व खिलाड़ियों ने इसका विरोध भी किया। उनका मानना था कि यह खेल भावना के खिलाफ है, और दोस्तों ऐसा हुआ भी। बहुत से ऐसे खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में आए जिन्होंने किसी तरह की कोई प्रतिबंधित दवाएं नहीं ली थी, इसके बाद भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया और अवार्ड भी जीते। इसलिए ये आयोजन अपने आप में बिल्कुल अनोखा तो था, लेकिन बहुत सफल नहीं कहा जा सकता। और दोस्तों अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं, और अब हम आपको रूबरू कराते हैं कुछ खास खेल खबरों से। मध्य प्रदेश के समरदीप सिंह गिल ने राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप प्रतियोगिता के अंतिम दिन पुरुषों की शॉर्ट पुट स्पर्धा में पंजाब के अनुभवी खिलाड़ी तेजिंदर पाल सिंह तूर को पछाड़कर स्वर्ण पदक जीता। दो बार के एशियाई खेलों के चैंपियन तूर ने 20.07 मीटर के पहले थ्रो के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, लेकिन 25 वर्षीय गिल ने चौथे प्रयास में 20.46 मीटर का थ्रो कर बढ़त हासिल कर ली, जो अंत तक कायम रही। तूर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 21.77 मीटर है। उन्होंने पिछड़ने के बाद वापसी की कोशिश की, लेकिन उनका अंतिम प्रयास 20.06 मीटर पर समाप्त हुआ। गिल ने भारतीय एथलेटिक महासंघ द्वारा निर्धारित ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के 20.36 मीटर के

0: ते सीनियर फेडरेशन कप प्रतियोगिता के अंतिम दिन पुरुषों की शॉर्ट पुट स्पर्धा में पंजाब के अनुभवी खिलाड़ी तेजिंदर पाल सिंह तूर को पछाड़कर स्वर्ण पदक जीता। दो बार के एशियाई खेलों के चैंपियन तूर ने 20.07 मीटर के पहले थ्रो के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, लेकिन 25 वर्षीय गिल ने चौथे प्रयास में 20.46 मीटर का थ्रो कर बढ़त हासिल कर ली, जो अंत तक कायम रही। तूर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 21.77 मीटर है। उन्होंने पिछड़ने के बाद वापसी की कोशिश की, लेकिन उनका अंतिम प्रयास 20.06 मीटर पर समाप्त हुआ। गेल ने भारतीय एथलेटिक महासंघ द्वारा निर्धारित ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के 20.36 मीटर के क्वालिफाइंग मार्ग को भी पार कर लिया। कर्नाटक के SSP और NCI त्रिवेंद्रम के संतोष कुमार टी ने पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में राष्ट्रमंडल खेलों के क्वालिफाइंग मार्क को पार कर लिया। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत करते हुए विंसेंट केमर के खिलाफ एक कड़े और तनावपूर्ण मैराथन मुकाबले के बाद जीत हासिल की और आर प्रज्ञानंदा ने बेस्ली शो को हराया, लेकिन विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पहले दौर में ही हार का सामना करना पड़ा। गुकेश ने लगभग 5 घंटे तक चले 144 चाल के मुकाबले के बाद आर्मागेडन में जीत की बदौलत 1.5 अंक हासिल किए, जबकि कीमर को क्लासिकल मुकाबला बराबर रहने के कारण 1 अंक से ही संतोष करना पड़ा। झारखंड के खेल इतिहास में का दिन बुधवार का दिन बेहद खास रहा, जब राज्य के 3 प्रतिभाशाली पहलवान एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय कुश्ती टीम के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने रांची रवाना हुए। यह पहला अवसर है जब झारखंड से एक साथ 3 पहलवान सीनियर स्तर के एशियन गेम्स ट्रायल के लिए क्वालिफाई करने में सफल हुए हैं। ट्रायल के लिए रवाना होने वाले खिलाड़ियों में रिया कुमारी, अमित गोप और अभिषेक कुमार हैं। तीनों खिलाड़ी दिल्ली और लखनऊ में आयोजित चयन ट्रायल में अपनी चुनौती पेश करेंगे। ट्रायल में सफल रहने पर उन्हें जापान के आईची नागोया में होने वाले एशियन गेम्स 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। जेमिया रॉड्रिक्स यस्तिका भाटिया के शानदार अर्धशतकों के बाद पदार्पण कर रही तेज गेंदबाज नन्नी शर्मा की घातक गेंदबाजी के दम पर भारत ने इंग्लैंड को 38 रनों से हराकर 3 मैचों की महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। नियमित कप्तान हरमनप्रीत कौर की गैर मौजूदगी में खेल रही भारतीय टीम ने खराब शुरुआत से उभरते हुए 7 विकेट पर 188 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया और इंग्लैंड को 8 विकेट पर 150 रन पर रोक दिया। 12 जून से शुरू होने वाले T20 विश्व कप से पहले यह भारत की अंतिम सीरीज है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं प्रभु शरण, और इसी के साथ अमित को विदा दीजिए। दोस्तों नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। रिपोर्ट संकलन और प्रस्तुति स्वर था अमित अखौरी का। प्रस्तुति और संयोजन था प्रभु शरण का। कार्यक्रम क्रीड़ा जगत अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए श्रोताओं, आज हमारी रांची केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 4:35 पर आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गाने। कार्यक्रम होगा सांझ सरगम। प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे शाम 5 बजे और 5:02 पर आप सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

श्रमिक लोक, ये कार्यक्रम का वक्त होगा शाम 5:30, जिसमें आज चर्चा होगी भारतीय सिनेमा के असली शोमैन राज कपूर, बापू की इकलौती रेडियो यात्रा, प्रवासी मजदूरों का सबसे बड़ा सहारा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, और हुनर भी रोजगार भी सीखो और कमाओ योजना, पीएम 15 सूत्री कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की, और 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। छह बजकर 2 मिनट पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा मिट्टी जांच की उपयोगिता, और आज की बात में आप सुनेंगे बहुस्तरीय फल बागवानी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रविंद्र कुमार, और भेंटकर्ता होंगे संजीव कुमार लाल। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की।

रोजाना की तरह आज भी आप सुनेंगे 6:32 पर कार्यक्रम हमारी दुनिया, जिसके अंतर्गत आज चर्चा होगी मोबाइल का सीमित प्रयोग करें और कुछ पसंद के लोकगीत भी हम आपको सुनवाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे संजीव कुमार लाल।

प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा शाम 7 बजे और 7:11 पर जिले में आजकल। आदिवासी अखड़ा, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:15 से। आज का ये कार्यक्रम होगा खड़िया भाषा में। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे प्रदीप कुमार। श्रोताओं, आज मंगलवार है और आज के दिन आप सुनते हैं 7:45 पर इंग्लिश टॉक। टुडेज टॉपिक, जेन ऑस्टिन एज ए नॉवलिस्ट, टॉकर बाय डॉक्टर अनन्या बोस। रात 8 बजे आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गाने, कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत और 8:10 पर हम आपको सुनवाएंगे विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। समाचारों का समय होगा 8:45 से। पहले आप सुनेंगे समाचार संध्या, 9 बजे इवनिंग न्यूज और 9:15 पर उर्दू समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गूंजे झारखंड, और 10:30 का समय रहेगा शास्त्रीय संगीत का, जिसमें आज के कलाकार होंगे अभिराम पाठक। इनसे आज आप सुनेंगे राग बहार में आलाप और धमार गायन। और 11 बजे से आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और रात 11:10 पर हमारी आज की सांध्यकालीन सभा का समापन होगा। तो ये थे कार्यक्रम विवरण, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम।
1: Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat. Join Indian Navy.
0: कार्यक्रम सांझ सरगम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रौनक जहां का प्यार भरा नमस्कार। आज की पहली शुरुआत कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों से, गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत आनंद मिलिंद का, फिल्म का नाम एक लड़का एक लड़की।

0: प्रोग्राम की अगली पेशकश सच्चा झूठा फिल्म से, गीत के बोल इंदिवर के तर्ज कल्याण जी आनंद जी की। इस गीत में आवाजें आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।
1: यूं ही तुम

इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर।

सिर्फ तुम। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था समीर ने और संगीत से सवारा था नदीम श्रवण ने और आवाज अलका याग्निक की। और अब सुनिए आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार जतिन ललित। फिल्म का नाम चलते चलते।

0: इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम सांझ सरगम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। आइए सुने प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को 15 जून तक मतदाताओं की मैपिंग पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लंबित फॉर्मों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा है ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे। श्री कुमार ने कम मैपिंग वाले बीएलओ को विशेष प्रशिक्षण देने की बात भी कही। गढ़वा के नक्सल प्रभावित रहे बूढ़ा पहाड़ से सीआरपीएफ हटाने की तैयारियों पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखा है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बल को बनाए रखने का प्रयास जारी है। यदि केंद्र सरकार सीआरपीएफ हटाती है तो राज्य सरकार वहां अपने जवानों की पूरी तैनाती करेगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार पर ट्रेजरी घोटाले की जांच में लापरवाही का आरोप लगाया है। रांची में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि यह घोटाला हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। उन्होंने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के हवाले से कहा कि बड़ी राशि का सही हिसाब नहीं मिल पा रहा है। गोड्डा की मोतिया ओपी पुलिस ने नशामुक्त अभियान के तहत छापेमारी कर 2.78 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना पर खटनई शिव मंदिर के पास यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सरायकेला खरसावां के कपाली में रंगदारी को लेकर हुई फायरिंग में एक जमीन मालिक घायल हो गया है। चार दीवारी निर्माण के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने 3 राउंड गोलियां चलाई। पुलिस ने मौके से खोखा बरामद कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:02 हो रहे हैं। संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण के बारे में जानते हैं।

अब से कुछ देर बाद यानी कि 5:05 पर सुनने का कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के इस गुलदस्ता कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ही संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीतबद्ध किए कुछ गाने। 5:30 पर होगा कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। इसमें आज चर्चा होगी धान की नर्सरी में ध्यान देने योग्य बातें। संथाली लोकगीत सुनिएगा सुराई मुर्मू और साथियों के स्वर में। मौसम की जानकारी होगी, साथ ही भेंटवार्ता होगा उन्नत किस्म की धान के बिछड़े को कैसे रोपें। भेंटवार्ताकार होंगे ब्लास्टर पूर्ति और इनसे बातें करेंगे डोबरो बुड़ियोली। उड़िया लोकगीत होगा सूर्यभिपान और साथियों के स्वर में। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे ठाकुर चंद्र मुर्मू और डोबरो बुड़ियोली। 6:00 होगा मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। क्षमा करेंगे, 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 6:02 पर होगा कार्यक्रम बंगला कार्यक्रम सात रंग। 6:30 पर सुनिए संथाली कार्यक्रम जिसमें होगा लांगड़ी लोकगीत

6:55 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:10 पर होगा विशेष श्रृंखला, जिसे प्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, सरकार के 12 वर्ष। विषय होगा किसान कल्याण। विशेषज्ञ होंगे शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। 7:45 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम, कार्यक्रम आपकी पसंद। 8:00 होगा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 पर हम आपको लेकर चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार संध्या क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। 9:00 आप सुनेंगे 9:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम, जिसे रिले किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 10:00 होगा गजलों का कार्यक्रम महफिल। 10:30 पर सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। 11:00 हिंदी में समाचार होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। और 11:10 पर हमारी आज की सभा सम्पन्न होगी। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। गुलदस्ता कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा। पहला गाना है फिल्म पत्थर के सनम, गायक लगा रहे मोहम्मद रफी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और आइए अब सुनते हैं फिल्म पिया का घर, आवाजें हैं किशोर कुमार की।

हार है कि जीत है, ये ना सोचो इसमें अपनी। हार है कि जीत है, उसे अप...

श्रोता सुन रहे हैं गुलदस्ता कार्यक्रम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से। आज आप सुन रहे हैं एक ही संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीतबद्ध किए कुछ गाने। अगला गाना है फिल्म नाइट इन लंदन। गायक कलाकार है मोहम्मद रफ़ी।

इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम अभी समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: जो बिहार को नेता बनाएन सानी लोकगीत सुरई मुरमू और सातन को सपड़ाते नेता कार्यक्रम मांग सब लहा आजम मिट बार जरूरी संदेश को
1: और जलवायु यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
3: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
2: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचा

0: हटाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
1: हमने 1800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
0: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और से संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
2: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मील चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मील हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
0: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
3: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
0: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु, सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
4: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ।
0: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
5: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
0: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।

0: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
1: अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
2: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
1: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
3: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: Jadi kami sih kan wasan desa itu dila arah kerja kerja munasib mulahan juga arahun beraya teh min kapal mara oleh katé, dhan ki unat kism evang bicara kaisi lagaya bisa edi katé, nuak kini leh a balaster purti tikin arakin sila kapal mara remina kena dobro uri uli tikin, kan dila pun ajamnya oleh kan nuak min kapal mara.
5: Tising abena hatu. तांतनगर पीढ़ी जुमला ची प्रखंड मेनाते अंगारडी हतुरे अबिटाया आकाशवाणी चाय भाषा कार्यक्रम किसान बानी पैते चिरगेल अटकर हुबायना ची अबेन मेंडो उनासील चासी होड़ो तनाबेन किसान तनाबेन इनामेंते तिसिंग अबेन लोते उन्नत किस्म की धान की बिचड़े को कैसे रोपें मीना भी शहर है बेपटा चपगर लगे लिंग हुजुक ने एंते चास हो गया कि आबेना नुतुम डगर को नाबेन कजी आर ले रहे विषय ओडों रिलंग जागर एंते आबेना उपरूम को नाबेन जागर तर दो ऐसो बुगिने जो हर गे
6: अलिंगा नुतुम दो ब्लास्टर पूर्ति हाथुर दो हिंदू पूर्ति को मितालिंगे हाथु दो अंगारडीए प्रखंड दो तांतनगर उन्डो पंचायत तो अंगारडीए पंचायत के पोस्ट ऑफिस दो केड़ी टंगर
5: ऐसो रांसर या कजी ब्लास्टर पुर्ती ची हिंदू पुर्ती तकिन अबेन अबेन आउ नुरुम कोकमिन जगर केड़ा एनर दो उन्नत की सुमरिया बाबा पड़ा चिलकेर वायत या बुगिन है निया विषय रे अबेन मेंडो उन्नत सील की शांतना बेन चासी ओड़ोतना बेन नेन विषय रे होनां ऐसो बुगिल का सिया जगर को बेन जगर तर जगरल रद ऐसो बुगी हुआ
6: हाँ ठीक गया जान चास रही हो बाबा के बाबा चास उन्नत किस्म चास चाहे जान चास रही हो इंत सबसे पहले दो अबू फरवरी मार्च अप्रैल रे जो गमाया है इन सबिन ओतिहासक दो सी खेत को रेडी ठीक थे उसके बाद गुरी बुधर को सिमी बुधर को इन्हें ते ओंडो ओंडो एटा बिटर को जोबरा बुधर को पता बुधर को एम खेत को रेडी ठीक थे तो को पलटी थे उसके बाद पढ़ा दो नैन बाबा दो उन्नत किस्म बाबा दो रो रे दो काको पढ़ाया लोसम रे को पढ़ाया जो कि जुलाई रिया ताक ते को पढ़ाया इनते लास्ट जुलाई तक रे को पढ़ाया जैसे मौसम मिया एन हिसेब ते को पढ़ाया यदि नैने लेखा यदि मौसम साथ काय मबुर दो इन पढ़ाओ ताक रे को पढ़ाया अंडो ताक रे के करवाया जैसे चार टू सकमियन रे दो अबुए 15 दिन होबावा उसके बाद 21 दिन भीतर रिकॉर्ड वाचाबाया निना दो
5: या
6: 21 दिन भीतर रिकॉर्ड वाचाबा के थे इन्हें थे दादो हिसाब के को जुगाया हिसाब के को जुगाया चिलके चिलके जुका जुका ते हर आईडी वाइन का जुका जुका ते को तपा पर या
5: अच्छा गामा को का हुआ और दो और दाखो का नाम और दो पड़ा तीरे के नर दो ना चिलके तो हुआ समय तो सेनो इदी है
6: अच्छा आप तो ना दो नहार एरिए को तो कहा था ना आपको तो नहार एरिए रे दो पड़ा हर एन तो ठकुरवाया अंडो जदि अब इंतार जान दे डीप बोरिंग को मिना या बांधा को मिना इन दो इना कोई तो पटाई के ते ते ताक रेगे 21 दिन भीतर रिकॉर्ड वाचा बाय का
5: गड़ा कुटी को बांधा कुटी करे
6: या बांधा कुटी करे गड़ा कुटी करे गड़ा कुटी को ते दो ऐसे जोर को सुविधा हुआ अंडो डीप बोरिंग ते ऐसे जोर को सुविधा हुआ बांधा कुटी को ते दो ऐसे जोर को सुविधा हुआ इनते इन इनका के को पार्टी का ओकोयो का को नुकसान हुआ ऐसे जोर लापा को नमिया
5: अच्छा नंद्रे चिलिकन बुधर को एमते हुबाओ जोकनो इनां कजिके लिका रियोगे जान लगन दिकु बुधर को डाई यूरिया ची फास्फेट को मिल लिका एना जाना को एमो दुरकर ची कागे
6: इना दुरकरा डाई जब को लसड़े तन रे के डाई दो को आर्थ को हरता तक लसर मिसर गात का अच्छा सिमी को अगुये
5: ᱪᱤᱞᱤᱠᱮᱱ ᱚᱛᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚᱱ ᱮᱠ ᱫᱚᱱ ᱫᱩ ᱫᱚᱱ ᱛᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱚᱛᱮ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱥᱟᱠᱤᱭᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱵᱚ ᱟᱫᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱫᱚᱱ ᱮᱠ

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: चसी बुई हामिसी को निया संदेश सौंते के तेहे चासपास अखड़ा किसान वाणी नोड़े गए केचे दो करना। वहाँ तेहे लेकर अली ठाकुर चंद्र मुर्मू
4: आर डोबरो बुड़े लिखिन पैते
3: जोहार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया है। रांची में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश ने महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा जनहित की योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्ग निर्माण योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने पलमा गुमला पथ चौड़ीकरण, भारतमाला परियोजना और इकोनॉमिक कॉरिडोर के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उपायुक्त ने अधिकारियों को भू अर्जन संबंधी बाधाओं को दूर कर निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। रांची के प्रेस क्लब में कल झारखंड कांग्रेस का एक दिवसीय प्रवक्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मौजूदगी में होने वाले इस शिविर का मुख्य उद्देश्य संगठनात्मक मजबूती, पार्टी विचारधारा और प्रभावी जनसंवाद पर फोकस करना है। साहिबगंज में उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा की अध्यक्षता में पेसा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों और पारंपरिक ग्राम प्रधानों को जागरूक किया जाएगा। उप विकास आयुक्त ने इस कानून की जानकारी पंचायत और ग्राम स्तर तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। रांची में कल से पहली बार झारखंड वेमेंस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। JSCA स्टेडियम के ओवल ग्राउंड में 3 से 7 जून तक होने वाली इस प्रतियोगिता में पलामू, संथाल, कोल्हान और छोटा नागपुर की 4 टीमें हिस्सा लेंगी। इसका फाइनल मुकाबला 7 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱥᱳᱱᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱥᱩᱨᱚᱠᱥᱟ ᱚᱴᱚᱞ ᱯᱮᱱᱥᱚᱱ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ
2: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
3: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
4: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मेरे बेटा क्रांति बेसरा आले वगे नेहर में ना बोले नुकन परिस्थिति रे बोले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे मैं कह गई हम बोले रुड़ तब में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
5: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउका कहाँ बना है वो लोग आउका वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नंबर सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
6: नाम है रणबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए में हमरे घर है बहुत दुख के बात होते हम बात हो जाए
7: तुम लोग बुरंग सिंह काम सोए अनुता तमसाय भरुपा ऐसा करना ऐसे दुकुरा में ना आया यापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा मिका
8: अन्य तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने में उड़ीने बागिया तो कि ये दोनों से यार की कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तमा दुर्गम गई अंदर जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काका मेरे मिया
9: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लिंग सी जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम ते ना मिला आप ही लेते ना
3: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण निशुल्क चिकित्सा बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क कन्यादान हेतु अनुदान उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: ᱫᱮᱞᱟᱱᱤᱛ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮᱭᱟ ᱢᱤᱫ ᱛᱩᱛᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱱ ᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱩᱛᱤ ᱠᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱢᱚᱦᱮᱱᱫᱨᱚ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ
10: ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮᱛᱟᱱᱯᱩᱨ ᱫᱚ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱜᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱫᱚ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱞᱚᱞᱚ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱜᱼᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱚᱞᱚ ᱥᱟᱢᱲᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱜᱼᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱤᱛᱤᱞ ᱟᱨ ᱵᱷᱤᱴᱟᱢᱤᱱ ᱰᱤ ᱥᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱜᱼᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱵᱷᱩᱜᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱩᱵ ᱵᱷᱩᱜᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱᱛᱮᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱵ ᱵᱷᱩᱜᱟᱹᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱫᱚ 3.5 ᱠᱟᱨᱚᱲ ᱜᱟᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱵ ᱵᱷᱩᱜᱟᱹᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱞᱵᱟᱞᱟᱣ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱞᱵᱟᱞᱟᱣ ᱥᱟᱶ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱡᱟᱨ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱯᱩᱨ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱟᱨ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱯᱩᱨ ᱫᱚ ᱤᱯᱤᱰᱟᱨᱢᱤᱥ ᱟᱨ ᱰᱟᱨᱢᱤᱥ ᱢᱮᱱᱛᱮᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱯᱤᱰᱟᱨᱢᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱥᱠᱳᱣᱟᱢᱟᱥ ᱠᱳᱥᱤᱠᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱵᱷᱮᱥᱮᱞᱥ ᱠᱳᱥᱤᱠᱟᱭ ᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱞᱮᱠᱥᱟᱭᱤᱴ ᱠᱳᱥᱤᱠᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱢᱮᱞᱮᱱᱤᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱨᱮ ᱟᱥᱟ ᱵᱷᱚᱨᱥᱟ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱛᱟᱭ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱡᱟᱨ ᱵᱤᱢᱟᱨ ᱧᱟᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱯᱤᱛ ᱯᱤᱛ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱟᱱᱟᱼᱱᱟᱣᱟ ᱨᱟᱱ ᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱱᱟᱼᱱᱟᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱪᱟᱠᱛᱟ ᱯᱤᱛ ᱨᱟᱠᱟᱵᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱵᱟᱵᱟᱛᱟ ᱜᱟᱹᱫᱩᱨ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱢᱟᱨᱠᱚᱛᱚᱠᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱯᱤᱛ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹᱛᱮ ᱜᱟᱥᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱞᱥᱮᱴᱤᱞᱟ ᱨᱟᱥᱴᱟᱠ ᱥᱟᱞᱯᱷᱟᱨ ᱟᱨᱴᱤᱠᱟᱨᱤᱭᱟ ᱤᱭᱩᱨᱮᱱᱥ ᱮᱢᱟᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱫᱟᱹᱫ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱢᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜᱼᱟ ᱫᱟᱹᱫ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱡᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱵᱟᱛᱟ ᱜᱟᱹᱫᱩᱨ ᱜᱟᱹᱫᱩᱨ ᱛᱮᱢ ᱜᱟᱹᱫᱩᱨ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱟᱫ ᱵᱟᱭ ᱢᱟᱨᱛᱚᱠᱚᱜᱼᱟ ᱫᱟᱫ ᱠᱟᱹᱡ ᱠᱟᱹᱡ ᱛᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱤᱫᱤᱜᱼᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱛᱤᱡᱩ ᱠᱚ ᱟᱹᱛᱤᱧ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱨᱟᱢᱟᱨᱟ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱫᱟᱫ ᱥᱚᱥᱚ ᱛᱮᱠᱚ ᱜᱟᱨ ᱮᱥᱮᱫ ᱠᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱛᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱟᱲᱟᱜ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱡᱚᱢᱼᱧᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱤᱯᱟᱹᱨ ᱥᱟᱞᱯᱷ ᱠᱟᱞᱤᱢᱤᱭᱩᱨ ᱥᱟᱞᱯᱷᱟᱨ ᱢᱮᱡᱮᱨᱤᱭᱟᱢ ᱨᱟᱥᱴᱨᱟᱠᱥ ᱮᱢᱟᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱦᱤᱯᱟᱹᱨ ᱡᱚᱥᱴᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱢᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱢᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱵᱷᱮᱨᱤᱥᱮᱞᱟ ᱤᱫᱤᱛᱮ ᱚᱰᱚᱝᱚᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱭᱮᱥ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱟᱥᱮ ᱱᱟᱥᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱛᱮ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱯᱮ ᱯᱩᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱟᱨᱟᱜ ᱜᱮ ᱪᱟᱠᱛᱟ ᱪᱟᱠᱛᱟ ᱨᱟᱠᱟᱵᱼᱟ ᱫᱟᱹᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱠᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱟᱵᱟᱛᱟ ᱜᱟᱹᱫᱩᱨ ᱠᱷᱟᱱᱮᱢ ᱩᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱮᱱᱛᱷᱟᱨᱤᱥ ᱨᱮᱱᱤᱱᱠᱩᱞᱟᱥ ᱢᱮᱡᱮᱨᱤᱭᱟᱢ ᱮᱢᱟᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱤᱨᱮᱥᱤᱯᱞᱟᱥ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱢᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱟᱹᱥᱩᱣᱟ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱫᱚᱭᱚᱜ ᱨᱩᱣᱟᱹ 104 ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ 105 ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱚᱭᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱰᱷᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱟᱨ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱫᱤᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱠᱟᱹᱡ ᱠᱟᱹᱡ ᱟᱨᱟᱜ ᱯᱩᱥᱨᱤ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱡᱚᱦᱟ ᱢᱮᱫ ᱠᱩᱴᱤ ᱢᱩ ᱟᱨ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵᱼᱟ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤᱛᱮ ᱯᱩᱥᱨᱤ ᱵᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱚᱥᱟᱜᱚᱜᱼᱟ ᱢᱩ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱹᱴᱤᱡ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱞᱟᱰᱳᱱᱟ ᱨᱟᱥᱴᱟᱠᱥ ᱮᱥᱴᱮᱢᱳᱱᱤᱭᱟᱢ ᱞᱮᱠᱮᱥᱤᱥ ᱮᱴᱨᱳᱯᱤᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱯᱩᱸᱰ ᱪᱷᱟᱵᱞᱟ ᱞᱤᱠᱳᱰᱟᱨᱢᱟ ᱦᱚᱸ

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले?
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़ी है।
3: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: ᱟᱵᱚ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱜᱟᱨ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱩᱱᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱩᱢᱮᱨ ᱫᱚ 115 ᱵᱚᱨᱚᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱰᱷᱮᱨ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱰᱟᱹᱝᱜᱩᱣᱟᱹ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱟᱜᱟᱨ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱥᱤᱝᱵᱷᱩᱢ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱱᱤᱵᱟᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟᱵᱚᱱ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱨᱟ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱᱤᱛ ᱟᱭ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱯᱚᱛᱨᱚ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱯᱟᱨᱜᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱵᱷᱮᱨᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱥᱚᱱ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱨ ᱢᱚᱱᱛᱮ ᱵᱮᱥᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ 4,000 ᱴᱟᱠᱟ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱰᱷᱮᱨ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱤᱞᱞᱟ ᱵᱟᱞ ᱥᱚᱝᱨᱚᱠᱷᱚᱱ ᱤᱠᱟᱭ 9955131314 9090070004899 ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱥᱚᱢᱯᱚᱨᱠ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱞᱞᱟ ᱵᱟᱞ ᱥᱚᱝᱨᱚᱠᱷᱚᱱ ᱤᱠᱟᱭ ᱡᱤᱞᱞᱟ ᱩᱯᱟᱭᱩᱠᱛ ᱠᱟᱨᱭᱟᱞᱚᱭ ᱛᱤᱥᱨᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱪᱟᱭᱵᱟᱥᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
7: ᱵᱚᱭᱦᱟᱢᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱛ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱵᱚᱛᱥᱚᱞᱮ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱥᱟᱶ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱠᱮᱪᱮᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱷᱟᱬᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ
6: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱟᱹᱱᱡᱩ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱥᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ
7: ᱵᱤᱫᱟᱹᱭ ᱡᱚᱦᱟᱨ
6: ᱡᱚᱦᱟᱨ

आप सुन रहे थे संथाली कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी कराची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं

जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है, वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत नई दिल्ली में केंद्र और झारखंड सरकार के बीच हुआ एमओयू। नियमों के अनुपालन पर मिलेंगे 2500 करोड़ रुपए। झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। सत्ताधारी जेएमएम कांग्रेस गठबंधन और विपक्षी भाजपा खेमे में। उम्मीदवारों के नामों पर अब भी सस्पेंस बरकरार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और जनहित की योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने 15 जून तक हर हाल में मतदाताओं की मैपिंग पूरी करने के दिए निर्देश। कम मैपिंग वाले बीएलओ को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। और हॉकी इंडिया ने न्यूजीलैंड में होने वाले महिला नेशंस कप टीम का किया ऐलान। झारखंड की 3 खिलाड़ियों को मिली जगह। सिमडेगा की सलीमा टेटे संभालेंगी भारतीय टीम की कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज जल जीवन मिशन 2.0 के तहत झारखंड सरकार और केंद्रीय मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्र से 6500 करोड़ रुपए की लंबित राशि की मांग की, जबकि केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने मानकों के अनुपालन पर 2500 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात कही। इसके साथ ही जिलाधिकारियों को नियमित निगरानी और 100 करोड़ से अधिक की योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा के निर्देश दिए गए। बैठक में 1400 करोड़ के ओवरसाइज्ड घटकों की समीक्षा करने और जेजेएम के प्रबंध निदेशक का पद संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपने की सिफारिश की गई। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है, लेकिन उम्मीदवारों के नामों पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी दोनों ही खेमों में आम सहमति बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व जल्द ही अंतिम नामों की घोषणा कर सकता है। इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने दावा किया है कि पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी उनकी जीत तय है।
2: केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद हमारे उम्मीदवार की घोषणा भी हो जाएगी, लेकिन वो उम्मीदवार होगा जो 100% का भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता होगा और पूरे तरीके से दमखम से चुनाव लड़ेगा। भाई आंकड़े हमारे पक्ष में बिहार में भी नहीं थे, लेकिन लोगों ने अंतरात्मा की आवाज और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है उसके आधार पर दिया। यहाँ तो व्हिप भी जारी नहीं होता है, तो हमारे जो उम्मीदवार है वो सारे वोटर्स के पास जाएंगे, अपना वोट मांगेंगे, अपना विजन बताएंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी के दावों पर सत्ताधारी गठबंधन ने पलटवार किया है। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने नैतिकता को ताक पर रखकर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है।
3: यहाँ उनके कुत्सित प्रयास सफल नहीं होंगे। नैतिकता को ताक पर रख के उन लोगों ने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की। कहां से लाएंगे विधायकों की संख्या? खरीद फरोख्त, पैसे के बल पर राजनीति करेंगे, झारखंड को दागदार करेंगे, वो सब नहीं चलेगा। ये झारखंड है, फुल प्रूफ रणनीति है हेमंत सोरेन जी की, इंडिया गठबंधन का दोनों उम्मीदवार जीतेंगे।
1: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया है। रांची में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश ने महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार, और जिस तरह से इन 12 वर्षों में देश की सेवा उन्होंने की है, लगातार लोगों की सेवा के लिए वो कृत संकल्पित है, और अंत्योदय को लक्ष्य मानते हुए 4 आयाम, युवा, महिला, गरीब और किसान, उनके लिए निरंतर योजना बनाना, उस योजना का लाभ उन तक पहुंचे, उसके लिए उन्होंने काम किया।
1: झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने देश की वर्तमान परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की मांग की है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने ट्रेजरी घोटाले की जांच रिपोर्ट जल्द महालेखाकार को सौंपने की भी बात कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने और बेहतर मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बच्चों समेत सभी नागरिकों का हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने और एम्बुलेंस की निगरानी के लिए AI कंट्रोल रूम बनाने को कहा है। इसके अलावा आपातकालीन सेवाओं में सुधार और ANM GNM की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @ न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @ANews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने CBSE में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया में गड़बड़ी के विवाद के बाद बोर्ड अध्यक्ष और सचिव को पद से हटा दिया है। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। वहीं साइबर हमले के बावजूद बोर्ड का री इवैल्यूएशन पोर्टल सुचारू रूप से कार्य कर रहा है और पहले ही दिन 16,000 से अधिक छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया। गढ़वा के नक्सल प्रभावित रहे बूढ़ा पहाड़ से CRPF हटाने की तैयारियों पर राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखा है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बल को बनाए रखने का प्रयास जारी है। यदि केंद्र सरकार CRPF हटाती है तो राज्य सरकार वहां अपने जवानों की पूरी तैनाती करेगी।
5: तो मैंने होम सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है कि आप CRPF और मेरी बात भी CRPF IG से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करते हैं कि अधिक अधिक जितना देरी और रह सके जितना अधिक समय तक तो वो रहे, लेकिन वो आप जानते हैं कि भारत सरकार का मामला है। गृह विभाग भारत सरकार अगर चाहे तो विड्रॉ कर ले, लेकिन अगर वो विड्रॉ जिस समय करेगा तो फुल स्ट्रेंथ में बुरा पहाड़ ऐसे क्षेत्र में झारखंड की पुलिस वहाँ उनकी पोस्टिंग होगी।
1: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को 15 जून तक मतदाताओं की मैपिंग पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लंबित फॉर्मों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से ना छूटे। श्री कुमार ने कम मैपिंग वाले BLO को विशेष प्रशिक्षण देने की बात भी कही।
6: निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी अन्य पदाधिकारी के साथ में बैठक हुई, उसमें कुछ सिलेक्टेड BLO का भी हम लोग आमंत्रण किया था, उनका मैपिंग काम है। आज वो पैरेंटल मैपिंग के बारे में चर्चा की गई थी, उसमें अभी लगभग 76% के ऊपर मैपिंग हो चुका है, उसमें बचा हुआ 24% में कुछ USDD वोटर का भी उसमें शामिल है।
1: ADG मनोज कौशिक ने गुमला में रांची जोन के 4 जिलों की पुलिस के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने 3 वर्षों के लंबित मामलों, विधि व्यवस्था और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा की समीक्षा की। ADG ने महिला और बच्चों से जुड़े अपराधों और पॉक्सो मामलों में त्वरित कार्रवाई और तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए।
7: विधि व्यवस्था एवं उसके अलावा स्पेशल क्राइम्स पे हम लोग एक रिव्यू किए हैं, जिसमें गुमला, लोहरदगा, खूंटी और सिमडेग चारों जगह के ऑफिसर्स रिव्यू हुआ है। उसमें जो लास्ट 3 इयर्स में जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए थे तो उसकी डिटेल प्रोग्रेस हम लोग जांचे हैं और जिन केसेस में एक्शन पेंडिंग है तो उनमें एक्शन करने के लिए डायरेक्शन। उसके अलावा

0: जैसे हैं क्राइम अगेंस्ट व्यूमन एंड चिल्ड्रन, उसके लिए स्पेशल डायरेक्शंस दिया गया है सभी एसपीज के।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं, जिसे जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार वीरता, खेल, समाज सेवा और कला संस्कृति जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों के लिए नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। और अब मौसम का हाल। राज्य में कल संताल परगना को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी जिलों में 40 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात के साथ मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। न्यूजीलैंड में होने वाले FIH महिला नेशंस कप के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। इसमें झारखंड की तीन खिलाड़ी सलीमा टेटे, निकी प्रधान और दीपिका सोरेंग को जगह मिली है। सिमडेगा की सलीमा टेटे को टीम की कमान सौंपी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत नई दिल्ली में केंद्र और झारखंड सरकार के बीच हुआ MOU। नियमों के अनुपालन पर मिलेंगे 2500 करोड़ रुपए। झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। सत्ताधारी JMM कांग्रेस गठबंधन और विपक्षी भाजपा खेमे में उम्मीदवारों के नामों पर अब भी सस्पेंस बरकरार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और जनहित की योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने 15 जून तक हर हाल में मतदाताओं की मैपिंग पूरी करने के दिए निर्देश। कम मैपिंग वाले BLO को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। और हॉकी इंडिया ने न्यूजीलैंड में होने वाले महिला नेशंस कप टीम का किया ऐलान। झारखंड की तीन खिलाड़ियों को मिली जगह। सिमडेगा की सलीमा टेटे संभालेंगी भारतीय टीम की कमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे रामगढ़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता।
1: रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर स्थित किलाहारी ड्रिल स्क्वायर में पिछले दिनों बैच 7 के 1121 अग्निवीर रंगरूटों ने शपथ ग्रहण समारोह के परेड में हिस्सा लिया। गर्व और उत्साह के माहौल के बीच इन अग्निवीरों के 24 सप्ताह की कठिन सैन्य ट्रेनिंग परेड में देखने को मिली। साथ ही परेड में सैन्य अनुशासन, टीम वर्क, युद्ध तैयारी और रेजिमेंट की शानदार परंपराओं की झलक भी दिखी। युवा अग्निवीरों ने
2: बनाया जाए खेती और किसानी, दूसरा किसान कृषि का की परिभाषा को सरकार ने बदला। वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाड़ी को आगे बढ़ाया, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें उन सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस इसके अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग, मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था, जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है। प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना करने की बात कही थी, मैं बार बार कहता हूं कि खेती के साथ अगर बाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं, कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाएं, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का यह नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हार्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हार्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं।

0: होता है उससे पैसे मिल जाते हैं, और अपने पशुपालन है, भेड़ पालन है, मतलब ढेर सारी से पशुपालन से भी पैसे मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर खोल दे, बी कीपिंग है जिसमें कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही फिशरी है, फिशरी में गांव के जितने भी तालाब थे, सोचिए मनरेगा के तहत इस सरकार ने कई लाख जीर्णोद्धार कराया तालाबों का, पुराने तालाबों का, और नए तालाब को तैयार करवाया। उसमें जो पानी भरा तो वो उन लोगों को दिया गया जिनके पास, जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास खेती नहीं थी, ऐसे, और जो लोग जिनको पानी से बहुत पुराना नाता था, ऐसे मछुआरों को जो ये काम दिया गया तो वहां पे मछली का उत्पादन होने लगा, ऐसे ही डेयरी का उत्पादन होने लगा। जब डेयरी का उत्पादन हुआ तो दूध कहाँ बेचेगा, वो एक बड़ी समस्या का पैदा होने से पहले ही सरकार ने सोच लिया था कि उनके लिए क्या करना है। तो उसने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाया और एक नया कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय खड़ा कर दिया, और उसकी चेन इतनी है कि गांव का हमें लगता नहीं कि कोई किसान बचा होगा या कोई गांव बचा होगा जिसमें पैक्स ना हो, जिसमें सहकारिता का आंदोलन न पहुंच गया हो और किसान उससे जुड़े ना हो। जी
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, मिस्टर सिंह हैज यू नो आउटलाइन सो ब्यूटीफुली दैट व्हाट हैज बीन द बेसिक चेंज इन द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू द स्टेबिलिटी एंड द मोमेंटम दैट वी हैव सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इवन इन द डिफिकल्ट इयर्स ऑफ कोविड द एग्रीकल्चर सेक्टर केप्ट ग्रोइंग। हाउ डू यू सी द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैव बीन द यू नो मेजर एरियाज वेयर द गवर्नमेंट यू फील हैज यू नो hit the bullseye and which is why we are seeing this buoyancy in our agriculture sector?
2: Yeah, you know, for over a decade, you know, Government of India under Prime Minister Modi ji's direction, you know, has placed agriculture at the heart of a vision, of a plan of Viksit Bharat. Yes. So when we are talking of Viksit Bharat, agriculture is at the core of it. And that is why over the last 10 years, you have seen several schemes that have been launched, several projects, they are so interconnected, which ensures there is latest research also plays a part, technology plays a part, and farmers are empowered to ensure productivity and also their livelihoods become sustainable.
1: Yes.
2: And all the time, the goal has been to double the income of farmers. So whatever ideas you have seen in the last 10 years has been directed at that. And as recently, just a few days ago, we saw the Prime Minister giving a clarion call that India is the, if India's economy is going to reach the third largest economy, that India should be annadata for the entire world. Yes. See, that is a kind of concept, that is a kind of imaginative vision with which this government is approaching agriculture. Yes, our farmers have been handheld, unko madad kiya gaya hai, unko haath pakad ke khade hone ke liye jo bhi sadhan ki zarurat hai, wo sare cheeze bhi dete hue भविष्य को भारत कृषि क्षेत्र में हाउ इट विल गो अहेड एंड हाउ इट विल बिकम द प्रोवाइडर फॉर द एंटायर वर्ल्ड दैट इज बिहाइंड इट। सो इन दिस ड्रीम यू नो टू सी दैट द रूरल इंडिया ट्रांसफॉर्म्स यू हैव सीन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन इनटू अकाउंट ऑल द न्यू प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग लाइक क्लाइमेट चेंज देन इंश्योरिंग मार्केट एक्सेस एंड चैलेंजेस इन मार्केट एक्सेस सेटिंग अप ऑफ वेयर हाउसेस सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेजेस एंड ऑल्सो रनिंग ग्रीन ट्रेन्स You know, produce from one region is immediately transported to the large market. So today, if you are seeing Karnataka tomatoes being available in Delhi, Nasik onions are moving to Bombay and to South, that this whole thing, that entire India being one market, so that our farmers get a better price, has been is just one indication how things are moving. Apart from that, you have also seen there are several other things which this government has done, which is, you know, looking at direct income support. Right. For instance, the PM Kisan, then there is a Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, you know, to provide a safety net for the crop loss against natural disasters. Because somewhere or other you have a cyclone or a flood or, you know, something or the other happens for which our farmer is not prepared. Then credit access, the Kisan credit card, you know, that is also a big thing to provide short-term and long-term credit. Apart from that, you have also seen in this budget, initiative has been where, you know, like a PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, so that, you know, it focuses on low productivity districts. Focus on that. Then also, the overall thing is, you know, mission for Atmanirbharta in pulses, which is the new area, the thrust area, to see that our dependence on import of pulses, that is dal vagara vagara, we don't have to depend. And lastly, I must add, the Prime Minister has also brought focus to natural farming so that the future

0: natural farming, we can have chemical-free agriculture. Hmm. And towards that goal, you are seeing a lot of steps being taken of late.
1: Yes. Mr. Singh, जैसा कि मिस्टर अय्यर ने कहा कि बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, अलग अलग जो स्टेज होती है एक एग्रीकल्चरल साइकिल की, अगर हम पहली जो स्टेज है इनपुट्स की उसकी बात करें, तो उसमें क्वालिटी इनपुट्स अफोर्डेबल रेट्स पर मुहैया कराना, इस पर जो प्रमुख कार्य किया गया है उसको अगर आप सटीक रूप में हमें बता सकें.
2: खेती में इनपुट की लागत को घटाना और उसके उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि किसानों को कैसे फायदा मिल सकता है. तभी फायदा होगा जब इनपुट कास्ट घटेगी और उनके उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, यानी उचित मूल्य या लाभकारी मूल्य मिलेगा. उसके लिए सबसे पहले दो हिस्सों में बांट के देखा जाए तो खेती के लिए जरूरी होती है मिट्टी, खाद, पानी, बीज और किसान, लेबर, ये और पैसा. तो इन सब चीजों का कैसे किया, मिट्टी की सबसे पहले सेहत जांची गई. सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम पर देश के सारे किसानों के खेतों को जांचा गया, परखा गया कि उनके खेत में किस तत्व की कमी है. जो कम है वही चीज डाली जाए, क्योंकि अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था. तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराई गई.
1: 25 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ
2: लगभग सभी किसानों के करा दिया गया. उसका मकसद यह था कि हर 3 साल पर यह कराया जाता है, ताकि इससे ये पता चल सके कि मिट्टी में कौन सी चीज कम है, कौन सी ज्यादा है, उसी हिसाब की खाद डाली जाए. दूसरा काम किया खाद का, फर्टिलाइजर का. हमारे यहाँ याद होगा आपको कि 2014 से पहले फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मचती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही. तो आखिर कहाँ से खाद की उपलब्धता कहाँ से आ गई, ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका. नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का उपयोग किसी और इंडस्ट्रियल उपयोग में कर लिया जाता था रॉ मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को तो वो किसी और उपयोग की नहीं, सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी. उससे 10 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार का सब्सिडी का सीधे सीधे बचा. तीसरी जरूरत थी इनपुट था पानी, सिंचाई. सिंचाई के हिसाब से देखें तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी जो नीचे जमीन से निकाला जाता है, पंप होता है या नहरों से जाता है, वो सिंचाई के काम में आता है. लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी. और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की वो ठीक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी. तो इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म करके जो माइक्रो इरिगेशन को सरकार ने हैवी सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इससे 30 से 70% तक पानी बचता है. जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी, फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी, यानी बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है. प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है. चौथा था बीज, बेहतर सीड. अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, आम कहां से होए. तो जब आप बेहतर सीड अगर उपयोग नहीं, बीज नहीं उपयोग करते हैं, तो उससे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद, यील्ड अच्छी नहीं होगी. प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग का, हमारे साइंटिस्ट, इतना बड़ा ICR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है. हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के, किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे. उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया. और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी, कि अभी अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियां पैदा हो रही हैं और रोग, तो डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैलते हैं. ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए. और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाए, या बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों से बचने वाले ऐसे सीड तैयार किए गए जो उन फसलों पर इनका असर कम से कम हो या न्यूनतम हो. ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने इनपुट को घटाने का. उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार को, कैसे बाजार इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, बेहतर बाजार. अब हर किसान तक बाजार को पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन नहीं, इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान बना दिया इस सरकार ने. प्रधानमंत्री ने कहा ई मार्केटिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसको ई नाम के नाम से जाना गया, और इससे हर किसान अब जुड़ देता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से. वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है, और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिल जाता है.
1: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाता है,
2: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन. तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम. किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, मतलब सब कुछ ऊपर वाले

0: भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल, और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी और 2.5% 2.5% से 5% बाकी सब सरकार के खाते से जाता है किसी भी कंपनी को। उसका फायदा मिला तो जोखिम बच गया है, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे इनपुट मिल गए और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से एक कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले बाजार में मूल्य अगर आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की एक तरह से आज से नहीं, बहुत लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है कि सरकार खरीदती है, लेकिन
1: तब से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य
0: कहते हैं। किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, लेकिन कोशिश यह होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न करनी पड़े, उसकी उपज का मूल्य बाजार में बेहतर मिले। यानी एमएसपी का जो घोषित मूल्य है, अगर कोई किसी चीज का 2500 रुपए क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000 रुपए मिलता है तो किसान 2700 या 3000 पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले। ये सरकार ने बहुत बेहतर
1: बिल्कुल सो जैसा आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है। मिस्टर अय्यर, व्हाट वुड यू से, यू नो द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो, सो हाउ फार यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वैल्यू एडिशन मैकेनिज्म्स, दे हैव इमर्ज्ड एज द सेंट्रल पिलर ऑफ योर इंडियाज फार्म टू मार्केट स्ट्रैटेजी and have been successful?
2: See, the farmer needs correct inputs at the right time, at a right price. Right. And after that, at the time of harvest, he needs some financial help to take care of the expenditures. Then after the produce is harvested, he needs a market and a good price that will, that will take care of his cost as well as give him some reasonable profit to sustain his livelihood. So towards this end, what have we revised? Keep into account the rise in the input cost. And as per the Swaminathan Committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Sinsab was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, with the e-NAM, and along with that, now the lot of attention is being given for storage facilities. Okay. See, the biggest problem is when the prices, have not reached their optimum level, the farmer has a problem in disposing his produce. Yes. So therefore, he requires good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore, particularly to take into account this particular problem. Yes. Because you need to see financial risk management, and what is needed today is a large-scale infrastructure investment to increase farm incomes and build these kind of facilities and connectivity.
1: Yes.
2: So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain of cold storage chains in everywhere.
1: Yes.
2: Because invariably when you hear stories of farmer in distress because the production there is, like for instance, a crop like onion or a crop like cotton or even a crop like even tomatoes. See, what happens is suddenly there is a glut in the market and the prices fall. And there is no food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government thrust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries, caused by nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
1: Yes. Coming to you, Mr. Singh, अभी आपने थोड़ी देर पहले कोऑपरेटिव मॉडल की बात करी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी इन 12 वर्षों में, इसका कृषि क्षेत्र को किस तरह फायदा हुआ है, और जिस तरह का हम कोऑपरेशन मॉडल्स कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं, डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनका क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो है या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये किस तरह का भूमिका प्ले कर रही हैं?
0: देखिए, कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। इस सरकार के आने के साथ ही एक नया मंत्रालय बना, सहकारिता मंत्रालय, जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है, गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा

0: जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न पहुंचा हो। और किसान तो हमें लगता है किसान ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा, चाहे उसे लोन लेना हो, क्रेडिट चाहिए होगा, दूसरा उसे सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, या सुगर का प्रोडक्शन हो, यानी किसी भी चीज से अगर जुड़ा किसान है तो वह कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा। सरकार ने इसको कैसे जोर से दिया, आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को, डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है। दुनिया का आज की तारीख में हम 25% केले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में, और प्रोडक्शन वाइज हम दुनिया के नंबर एक प्रोडक्शन करने वाले देश बन चुके हैं। जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया। तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ, सहकारिता के नाते हुआ, और ये पिछले 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के, कई गुना के वृद्धि दर्ज कर रहा है, इसकी ग्रोथ बहुत तेज है। डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं, 2-4-5 पशु रख करके, दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पे आज पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, हाथ के हाथ पैसा मिलता है। कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है, सारा इनपुट, आप समझिए कि हमें लगता है कि 60-70% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है, उनके पास पहुंचता है, और सब उधारी पर मिलता है, सब क्रेडिट पे मिलता है। किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, सीड की, किसी भी इनपुट की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है, और जब उसकी खेती हो जाती है, जब उसकी उपज तैयार होती है, जब वो मार्केट में बेच लेता है, यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती हैं। हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जो उनके लिए काम करती हैं। अब इसके बाद फिर वो पैसा जमा करते हैं। एक छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25-28 हजार रुपया, या मैक्सिमम मान लीजिए 30 हजार करोड़ कुल टोटल क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में। कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कॉर्पोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NCDC बोलते हैं, उसका आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है। जरा सोचिए एक साल में, सिर्फ एक वर्ष का 1.5 लाख करोड़, और पिछली सरकारों का, पिछली कितनी सरकारें नहीं, वो सिर्फ 25-30 हजार करोड़ पर टिकी रही।
1: तो ये एक आजादी भी मिल रही है छोटे और सीमांत किसानों को जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे।
0: सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लेंडर से उनका बचाव हो गया, सूदखोरों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ता, अपनी पैक से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार ने सबको KCC दे रखा है, आपने जो कहा ना कि इस सूदखोरों से तो इनका छुटकारा ही हो गया, क्योंकि KCC हर एक के हाथ में आ गया। हाँ, एक बात और, जितने भी दूसरे एलाइड सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संबद्ध जो क्षेत्र हैं, उन्हें किसान सरकार मानती ही नहीं थी, उनके उनके किसी परिभाषा में आते नहीं थे। आज जो पशुपालक हैं, डेयरी वाले हैं, जो दूध वाले हैं, या मछुआरे हैं, बी कीपिंग वाले हैं, बागवानी करने वाले हैं, इन सबको किसान मान लिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ किसान को नहीं, खेती करने वाले को नहीं, ये सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी KCC का लाभ मिलता है, यानी बहुत नॉमिनल ब्याज दर पर उनको जितना उनकी डिमांड होती है उसको पैसा मिल जाता है। इसलिए उनकी स्थिति में बहुत भारी सुधार हुआ है।
1: Mr. Iyer, coming to you, can you tell us that this government has always had an inclusive approach towards development in any and every sector? So if we talk about the vulnerable section, the small and marginal farmers, of course, you mentioned the PM Kisan Samman Nidhi Yojana. The very word Samman is giving respect to the farmers. Then the Fasal Bima Yojana you talked about, Kisan Mandhan Yojana is giving pension for small and marginal farmers. And nearly about 25 lakh farmers have enrolled. And also another very interesting enlightening statistic is that 51% beneficiaries of PM Fasal Bima Yojana belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, OBC categories. And of course, you mentioned PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is going to benefit 1.7 crore farmers in most low productivity areas, the aspirational districts. So you feel that it is one of the intentions of the government is to take this prosperity to every farmer, be it in a remote area or be it from a backward area?
2: Absolutely, absolutely. You see, the overall philosophy of Prime Minister Modi has been that beech se lekar bazaar tak. And this is a broad concept, you know, from the seed to the market, the final produce, in that whatever process is involved, including the economic condition of the farmer, the health of the farmer, and also use of modern technology. And do not forget, particularly irrigation. Now, in the last budget, they have got it for micro irrigation, where 5,000 crore has been set apart. See, apart from major irrigation projects, because the underlying philosophy is per drop more crop. That is for every drop that is being, you know, water that is, that the productivity must go up, which will require, you know, streamlining your canals, repair and maintenance of your canals, sub canals, and all these requires, you know, all the ministries of the government along with the state governments. They have to work hand in hand to ensure the benefit reaches everybody. You mentioned about the Dalit farmers, you mentioned about tribal farmers. They have a problem of their own, a very unique problem. That is also being tackled in a different way, particularly, you know, the climatic conditions as well as the land condition. You know, there are places which are receiving rainfall throughout the year. There are places that do not receive rainfall at all. So you have already schemes to tackle that also. This particular approach we have seen is there is not one single aspect that is neglected. And our farmer knows that he has a confidence that this government, whatever problem comes, they will take care of it. And take, for instance, the role of technology. I want to make a special mention. Now, Drone Didi Yojana. Now, look at Drone Didi Yojana. This is to empower the women self-help groups in our villages. But that is also connected with agriculture and productivity. Now, these Didi, Drone Didis are being trained to use the technology for, you know, pesticides, spreading the pesticide, spraying of pesticide, as well as finding out the condition of the crops. You know, we had the vast acreage under crop. What is the condition of the crop? So this kind of technology availability is also giving boost to the farmer, like the soil health card and other things. So the overall idea is, you know, there should be an integrated development.
1: Absolutely. So Mr. Singh, jaisa unhone kaha, Mr. Iyer ne, ki ek parikalpana hai ki hum jo vishwa hai, usko bhi export kare. Hum already exporter, major agriculture exporter ban gaye hain. 2014 se dekhe to 37% bade hain hamare agriculture exports. $51 billion ho gaye hain. Aur isme jo processed food exports hai, unka share bhi badhkar 20% ko paar kar gaya hai. So ek shift hai towards higher value added. So ek progressive shift dikhai de raha hai food processing ki taraf. Food processing par bahut sarkar ne jo bal diya hai, PLI bhi aaya hai food processing industry ke liye. Iske bare mein aap hame thodi bata sakte hain jo value added aur food processing hai, is par bal diya jana kyun itna important hai?
0: फूड प्रोसेसिंग क्या है कि रॉ फूड आइटम्स यानी जो कृषि उपज है, अगर उसको हम प्रोसेस्ड करके बेचते हैं, वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो उसका मूल्य बेहतर मिलेगा, किसान को फायदा होगा. हो क्या रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जितना दूध पैदा होता है पूरे देश में, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश, जिसका मोर देन 60% कच्चा यूज होता है, जिसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, 30-40% ही दूध का अभी तक प्रोसेसिंग हो पाती है. अगर इस दूध की प्रोसेसिंग होने लगे तो बेहतर मूल्य किसानों को और बेहतर मूल्य मिल सकता है और कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी. इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यहाँ जो फिशरी है, फिशरी एक बड़ा सेक्टर है. अगर हम इसकी प्रोसेसिंग सेंटर खोल दें, प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग बेहतर होने लगे, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक डिमांड जो पूरी होगी होगी, और फिशरमैन को बेहतर मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा. तो हमारे देश में जितने भी अब तक फूड प्रोसेसिंग के वो बने सेंटर बनाए गए, मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं, कितने साल से हमें लगता है 201 साल से हम सुनते आ रहे हैं जब से ये मिनिस्ट्री बनी है, इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जितनी संभावना है. यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम उस गति से नहीं हुआ है. इस सरकार का फोकस पूरा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री का, कि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य तब मिलेगा जब उसके उपज का प्रोसेसिंग होगी, प्रसंस्कृत के तौर पर जाएगा. कोई भी चीज टमाटर के, तो जैसे टमाटर है, आलू है, एक सिंपल वे में अगर टमाटर जाता है तो किस साल के कुछ महीनों तक ही वो सप्लाई की जा सकती है. लीन पीरियड में उसके मूल्य बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स पर. तो कंज्यूमर्स को भी प्रभावित ना होना पड़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले साल भर, इसके लिए प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है. और जितने भी प्रोड्यूसर, जितने भी प्रोड्यूस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनके सारा प्रोसेसिंग सेंटर उसी जगह पे होना चाहिए जहां से वो पैदा होते हैं.
1: तो इस संदर्भ में मिस्टर सिंह, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 1,185 प्रोजेक्ट्स मॉडर्न प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं नवंबर 2025 तक. और जो PLI, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत 169 एप्लीकेशंस को मंजूरी मिली है. और PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम भी है, जिसमें 4,00,000 से अधिक एप्लीकेशंस के माध्यम से 1,70,000 से अधिक लोन्स को मंजूरी मिली है. सो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है, और आपको लगता है कि इसमें, जैसा आप कह रहे हैं, कि स्कोप और भी ज्यादा है?
0: कोरोना के पीरियड में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी और कही ही नहीं थी बल्कि उन्होंने घोषणा भी की थी कि 1,00,000 करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड का अनाउंसमेंट किया था और उस फंड का पिछले अगले 5 सालों तक उसका उपयोग किया जाएगा। और अब समझिए कि 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो ये जितना आपने बताया मत्स्य संपदा हो चाहे फूड संपदा हो जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं बनाई जा रही हैं सब उसका पार्ट है। और इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग के सेक्टर पर पूरा फोकस रहेगा। जब प्रोडक्शन बेहतर होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हो सकता है उसके खराब होने के चांस हो जाएंगे, तो उसको अगर प्रसंस्करण कर देते हैं तो वो हमारी चीज बच जाती है। और कम उत्पादन में बेहतर उपयोग करने का तरीका है प्रसंस्करण। प्रसंस्करण से कई फायदे होते हैं, जो किसान को फायदा, कंज्यूमर को फायदा, और उससे जो उस पूरी चेन बनती है उसमें लोगों को रोजी रोजगार मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, एज वी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव रीच्ड अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड आवर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज ऑल्सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड इन द लेटेस्ट बजट। प्रमोशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक कोकोनट, कोको, कैश्यू, सैंडलवुड इन कोस्टल रीजन्स एंड अगर ट्रीज इन नॉर्थ ईस्ट एंड आमंड्स, वॉलनट्स एंड पाइन नट्स इन हिली एरियाज, these have been defined as the focus areas. So you think, you know, this kind of very focused approach that the government is taking, looking at the very vast and varied geography of India, that is the way to go forward, using the strengths of the opportunity?
2: No, you have raised a very, very important dimension to the government's priority. Particularly, yes, you talked of the need for going for high-value crops. You know, in fact, the Prime Minister, soon after the last budget, you know, he specifically addressed a webinar where he spoke about this and he appealed to the farmers to take care of this diverse climatic condition and focus on scaling up the harvest of these high-value crops. Yes. And some of the crops you mentioned. Because today, as the Prime Minister looks at the possibility of Indian farmers getting great access to world market, it is important for to take care of quality, to take care of branding and standards of our produce. This is very, very important. And for that, you know, agriculture experts, industry and farmers will have to jointly work towards this goal, which is actually the thrust area. Because as the markets of world are opening, as the Prime Minister himself put it, and global demand is changing, so we need to see that how we are more export-oriented in our production. That is very, very important because we have a rich agroclimatic, you know, zones. That is why, you know, Prime Minister particularly mentioned, you know, you mentioned cashew, cocoa, sandalwood, and this national mission on edible oil and pulses and the national mission for natural farming are particularly to meet this objective.
1: Thank you so much, Mr. Iyer. We are running out of time. Thank you so much, Mr. Singh, for this in-depth discussion on the various aspects of the progress in agriculture and farmers' welfare that has taken place in the last 12 years of the NDA government and the way forward. Thank you.
2: Thank you very much.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: इन द स्पेशल सीरीज यू वर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट Empowering farmers through welfare and farmer-centric policies. The participants were Shekhar Iyer, political analyst, and S.P. Singh, senior journalist. The moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
5: Ye Akashvani ka Chaibasa Kendra hai. FM के 101.7 MHz पर 7:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा। पहली पसंद आप सबों की है, सुनना चाहा है छोटा निमरी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, रोहन, कोमल, ऋतिक, दौलतबाग मुरादाबाद से जफर हुसैन, नईमा बेगम, काशिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी, वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चाईबासा से भोला राम मधुर, मधु लकड़ा, नताशा और बेबी, बड़ी बाजार चाईबासा से विनोद कुमार पवन, मीना पवन, चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनमहिनी महतो, मनोरमा और दिनबंधु, चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, बसंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत। कॉलेज रोड घाटशिला से सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष आनंद। अमलाटोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और सोनू। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया। बड़ा निमटी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीथु रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमृत कुमार, अमित कुमार, सुमित कुमार। खसवां बड़ा बाम्बो से नायडू महतो, उषा महतो, प्रिया महतो, डॉली महतो, तरुण महतो एवं समस्त परिवार के सदस्य। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म असली नकली का ये नगमा। आवाजें हैं लता मंगेशकर की।

अगली पसंद आप सबों की है। रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जयस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार, कुचाई बिदरी से केपी सेठ सोए, सरिता सोए, दुर्गामती राजकुमारी, रेशमी, विशाल, मुन्ना और सनी, ग्राम सूराबेड़ा से बासिंग सरदार, बीरू सरदार, रमेश, कमल सिंह और अंशु एवं सरदार परिवार, बड़ा बाम्बो सुपाईसाही से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला प्रमाणिक, श्यामदेव नायक, पूजा और सीमा, ग्राम गेलिया लोहर से कोमल

बसंती रमेश बनमाली बेसरा अन्नू शेदु कुमारी और पूजा तुरी टोला चाईवासा से मदन ठाकुर पुष्पा देवी रोहित ठाकुर संगीता देवी लाडो हरी खुशी कुमारी रिया कुमारी अर्पिता कुमारी आमजोड़ा पोखरिया मालुका से शिवा गोप प्रेम गोप प्यारी बहने संगीता गोप लिपि गोप दीपाली गोप खरसवा पतिसाई से सुकरा नायक मंजू नायक जलेश्वर नायक गौरव नायक सोनुआ गांव पोड़ाहाट से मिथुन नायक राकेश नायक मुकेश नायक मखरू आचार्य सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार नशीम बेगम आयसा खान हदिया खान असमा सालिया शोएब खान पोतरा मुश्तबा खान रऊ भाई साहिद भाई गांधीबाग अंकोला से रमेश कटनकर वैशाली कटनकर। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म खुशी मिल गई। इस फिल्म का गाना आवाज़ें हैं श्रेया घोषाल और उदित नारायण की।

कार्यक्रम के अंत में आई सुनते हैं आप सबों की पसंद पे अगला गीत। गांव कोयडा से पोंडे बोईपाई, रेशनल बोईपाई, यशमती बोईपाई, कश्मीरा बोईपाई, मोनिका बोईपाई, सुनीता बोईपाई, मीनाक्षी बोईपाई, देवी चरण भंज और तारकेश्वर बांधा। गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्ण गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, सरस्वती गोप, आराध्या गोप, अमित गोप, सुमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, विनोद गोप, आशीष गोप, विकी गोप, राजू गोप, राजन गोप, माहिर गोप, शुभम गोप। महालीसाई से बिरवल महाली, सरस्वती महाली, प्रेमचंद महाली, फूलमणि महाली, शकुंतला महाली, सुमांती महाली, यशोदा महाली, शांति महाली। बड़ी बाजार चाईबासा से मौजम बिहारी, समीमा खानम, निम्मी, बिट्टू किरण, रोशनी, परी, मुस्कान, नबिया। बड़े बाजार चाईबासा से भगीरथ महतो एवं इनके परिवार के सभी सदस्य। भाटपारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी, लोकेश जोशी। न्यू कॉलोनी नेमडी चाईबासा से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना देवी, खुशबू, खुशी, अभिषेक, अंश, अंशु, अनीश। महुल्डिया सोनमा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, बंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गीतेश, अन्नु, तन्नु, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो। मेन रोड सोनमा से गुरुचरण नायक, अंशुया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पानी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नीलपानी प्रधान और नीक पानी प्रधान। आप सभी सुनना चाहते हैं भीगी पलके फिल्म का गाना। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

इस गीत के साथ ही श्रोतामारा आज का आपकी पसंद कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा। पहली फरमाइश आप सबों की है, बड़ा बाम्बू सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, श्यामदेव नायक, पूजा सीमा नायक, सुदर्शन प्रमाणिक, ममता, नमिता, सुशीला, ग्राम के लिए लोहर से कोमल बेसरा, बसंती, रमेश, अनु, बनमाली, सिद्धू कुमारी और पूजा। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सुहाग का ये नगमा। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अगली फरमाइश है पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुढ़ाना से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर और गोपाल पाटिल की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म रोटी। इस फिल्म का गाना आवाज़ है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

श्रोता सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। अगली फरमाइश है छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म साजन का ये नगमा। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल की। गीत लिखा है समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का।

अगली फरमाइश है पटेल नगर मलौट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, बेबी आरजू जजोरिया की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म श्री 420 का ये नगमा, आवाज़ें मुकेश की है।

अगली फरमाइश है, बड़ा नेमरी चाय बासा से तुलसी पथिक मीरा देवी बजरंगी ठाकुर मीतू रंजन राजीव रंजन मौलिक रंजन अमित कुमार सुमित कुमार और शुभम कुमार की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मेरा नाम जोकर। इस फिल्म का गाना आवाज़ें हैं मन्ना डे की।

मेरा ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

और आइए सुनते हैं आप सबों की फरमाइश पर यह अगलगित। गांधी चौक और बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मास्टर मनीष। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सनम तेरी कसम। इस फिल्म का गाना आवाज़ें हैं आशा भोसले की।

अगली फरमाई से ग्राम खेड़ियाघर प्रखंड मंझारी से बसंत बैंकुरा, सुलोचना बैंकुरा, हेमंत पात्रो, कौशिक कुमार पान, दीपक कुमार, रिंकी कुमारी, रूपाली कुमारी, झीपी कुमारी और जयमनी जयंती की आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म। ये है मुंबई मेरी जान। इस फिल्म का गाना आवाज़ें हैं कुमार शानू की, गीत लिखा है आनंद और इंदिवर ने, संगीत जतिन ललित का।

कार्यक्रम के अंत में आई सुनते हैं आप सबों की फरमाइश पे अगला गीत। न्यू कॉलोनी निमडी से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, खुशी, खुशबू, अभिषेक, अनीस और मुन्ना। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म अनाड़ी का ये नगमा। आवाज़ें हैं मुकेश की।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं आज का फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार संध्या।

0: के खिलाफ तीसरा और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
2: We categorically reject.
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
2: Desist from making any comment on them.
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एक

0: कृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस आल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास एक रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: I mean, what the numbers which has estimated from 90%, which is one of the worst in the century. It is not something which is in a decade or something like that. And if it comes true, I mean, we can pray that it should not. But if it comes true, that means your agriculture productivity will come down, number one. Number two, at the same time, rural demand will also get affected. And number three, combination of fuel prices, higher fuel prices, having the multiplier effect on the overall prices.
1: So you said 6% inflation, it could go up even further.
0: Yeah, it can go up to 6% in the current. And that's not just my estimate. The estimates which are given by various economists. And that is why the RBI report is talking about the upward risk. So one is, of course, the West Asia crisis. And third, the consequent impact on the rural demand as well as the agriculture production.
1: Mm-hmm. Let's talk about the RBI stance on liquidity management, which shifted during the year. Do you, Shishir, read the report as signaling a bias towards tighter liquidity going forward? And what would that mean for bond yields?
0: If you just see the preamble of RBI, one of the key aspects of RBI preamble is to check the monetary supply. And why monetary supply is to be checked? To check the inflation. So if the inflationary expectation is high, what are the ways, what are the tools available in your hand? One is, of course, you can raise the policy interest rate. That's a very easy thing to do. The second one is, of course, the raise the CRR. The third one is the mop up the excess liquidity from the market. So at this moment, what we are seeing that RBI will certainly go for a slightly tighter liquidity thing. But if you are talking about a capex of more than 11 lakh crore, if you have to provide hand holding to the private sector, then the liquidity should much be more than what is estimated. Now, coming to the bond yield, of course, the bond yield is on the higher side, and not just in India, but overall, globally, you will see US or UK or European market, everywhere we are seeing the yields are on the higher side. Even in Japan, it is on the higher side. So this is nothing unusual. But of course, this will have some impact on the interest rate. As of now, we are expecting that the RBI may not go for any change, at least in two policy. One, which the announcement will be made on 5th of May, and the second, which we are expecting in the month of August. So these two policy meeting, we are not going to see in change in the interest rate despite higher yield. But after that, inflation rate is more than 6% or even 6%, then we may see some interest rate action, and that will have impact on the yield because both are inversely related.
1: While back, you talked about the El Nino effect, etc. In fact, the RBI report emphasizes climate-related financial risks and greening the financial sector. Are Indian banks prepared for transition and physical climate risk, or is this largely an aspirational effect?
0: See, the problem with the green financing, of course, it is a very
1: fashionable
0: word, and it seems to be a very intellect word also, that when we talk about the green financing, problem is, who is the taker? I mean, government launched a sovereign green bond, and it was a very good initiative because the projects which are going for environmental related or anything which is going to have positive impact on the environment, they are going to have more and more resources available under them. But we did not find much taker from the sovereign green bond. And that's the government has already accepted it. It's not, I am saying that, government has already accepted it. Now the banks are ready to provide some financing for the green project as well as the various green initiative. And the companies are also looking for that, because I will just add one line that SEBI regulation says that the top 1,000 companies are supposed to come out with the ESG report. That's the environmental and social governance report. And under that, they have to talk about 3P. That's the people, planet, and the profit. So whatsoever they are doing for the planet, they have to disclose it. Now, when they have to disclose it, they will try to include more into the green element in project. You will also remember one thing. We just had the IPL tournament. In the IPL, there was a big campaign about the green dot balls. So as many dot balls we have, they will plant tree. So that is something also related with, because for that you need money. It's not something that is coming free of cost. So these are the initiatives which are being planned, and the companies are taking some innovative route, but not much we have seen in terms of going for this kind of financing.
1: Okay, on fiscal risks, Shishir, RBI notes contingent liabilities and state-level debt dynamics. How worried should markets be about the fiscal monetary mix ahead of the next budget cycle?
0: Many of the states are having a problem because of some freebies, what we call as, and because of the freebie, they do not have much resources, so they rely on the market borrowing to provide money for a different expenditure. So there we are finding that that's a really concern on that side. At the same time, we should also remember that this year, because of the reduction in central excise in the month of March, there is expectation that the central excise collection or the overall collection will go down, but the fertilizer subsidy will go up. So you have the central finance and you have the state finances. So combination of these two are also something the market is slightly thinking about. So when an investor going to the market, it will have certainly in mind that what kind of financial strength a central government has or the state government.
1: The RBI also suggests, Shishir, that there should be a continued focus on improving access to credit for MSMEs. What practical policy or operational steps will most effectively close the MSME credit gap?
0: So if you see MSME thing, the government has just come out with the fifth version of ECLGS, which is the Emergency Credit Guarantee Line Scheme. And the scheme, which was announced on 5th of May, as approved by the cabinet, has seen a very good response. That means the MSMEs are looking for financial support from the organized sector. And that is also going to help in that bringing down the cost of operation. Because if you are going to the unorganized sector for financing, that will, your cost of operation will go up. Already there is an issue of competitiveness. So if the cost of operation is up, that competitiveness will also be impacted. So MSME financing is something very, very important thing. And the good news is that more and more banks are encouraging their people to go and lend money to the MSME. And of course, those MSMEs which are really what we call as an eligible MSME or financially better position or their repayment record is better, we are finding them that the banks are ready to pay that. And if I go by the last 5-7 days, many of the bank MDs have said that we have got 600 crore rupees, 700 crore rupees worth of application from MSME. So even if we take 10 people are talking about 700 crore each, that means 7,000 crore worth of loan going to be dispersed among the MSME.
1: Thank you, Shishir. Those were very clear and actionable insights. And to our listeners, the RBI's annual report is more than statistics. It maps risks and opportunities that affect loans, savings, and the wider economy. Appreciate your perspective and your time for us. Thank you very much.
0: Thank you very much.
2: You were listening to a discussion on key takeaways from RBI's annual report 2025-26. The participants were Shishir Sinha, economic analyst, and Rajesh Lekh, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app News on AIR.
3: Money Talk. आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए पीएम स्वनिधि के 6 वर्ष वित्तीय समावेशन के माध्यम से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के महाप्रबंधक राजेश कुमार और पत्रकार सौरभ शुक्ला।
4: मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में, जिसने शहरों और कस्बों में काम करने वाले रेहड़ी पटरी वाले छोटे विक्रेताओं की मदद करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं राजेश कुमार जी, जो जनरल मैनेजर हैं सिडबी के, उनसे बात करेंगे। राजेश जी, आपका स्वागत है।
5: धन्यवाद।
4: राजेश जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे आम लोगों के समझने के लिए कि ये पीएम स्वनिधि योजना आखिर है क्या और इससे रेहड़ी पटरी वालों को खासतौर पर क्या फायदा मिलता है।
5: पीएम स्वनिधि योजना बेसिकली एक लोन प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई योजना थी, जिसमें सिलसिलेवार ढंग से 3 चरणों में लोन मिलता था। पहला लोन 10,000 का था, दूसरा 20,000 का और तीसरा 50,000 का। इस लोन के साथ साथ उनको इंटरेस्ट सब्सिडी थी, 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता था। और डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के लिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन से मेरा मतलब है QR कोड के थ्रू पेमेंट लेना या डिजिटली पेमेंट करने पे 100 रुपए तक प्रति मंथ का इंसेंटिव था
4: जी।
5: अब उसके अलावा 400 रुपए का और इंसेंटिव ऐड हो गया है, जो कि बल्क ट्रांजेक्शन परचेज करने पे उनको मिलता है। इसके अलावा जो सरकार की 8 वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनसे जोड़ने की योजना थी और उनके स्किल के डेवलपमेंट करने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम था।
4: तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो इस योजना को करीब 6 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है खासतौर पर कोरोना के बाद छोटे दुकानदारों के लिए योजना कितनी मददगार साबित हुई होगी?
5: ये मददगार कितनी ज्यादा थी ये आप इसके नंबर से समझ सकते हैं। अभी तक 75 लाख से ज्यादा लोगों को इस स्कीम में लोन मिल चुका है और करीब 17,800 करोड़ के लोन, करीब 1,13,00,000 लोन दिए जा चुके हैं। तो इसका विस्तार पूरे भारत में था, सारे स्टेट यूटीज में स्कीम में अर्बन एरियाज में इसके लोन दिए गए और लोगों को काफी सहायता हुई, इसलिए कि उनके पास उसमें कार्यशील पूंजी खत्म हो गई थी, बिजनेस को रीस्टार्ट करने के लिए उस समय पैसा चाहिए था
4: जी।
5: बट गरीब लोगों को पैसे की जरूरत हमेशा रहती है, कोरोना खत्म होने के बाद भी अभी तक चल रही है और उसका डिमांड है, लोगों में इसका काफी यूटिलिटी दिख रहा है
4: जी। राजेश, एक अहम चीज जो इस स्कीम में है कि वो एक बिना गारंटी के एक छोटा लोन मिल जाता है, तो ये कितना बड़ा फायदा होता है रेड़ी पट्टी वाले लोगों के लिए और ऐसे लोग जो साहूकारों के पास जाते थे पहले लोन लेने के लिए या पैसा कर्ज लेने के लिए और उसमें उन्हें काफी लंबा ब्याज भी चुकाना पड़ता था, तो ये खासतौर पर उनके जीवन स्तर में किस तरह का एक सुधार आप देखते हैं?
5: सुधार दो रूप में आप देख सकते हैं, एक तो वही अमाउंट अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर से मनी लेंडर से लेते थे तो काफी ज्यादा ब्याज देना पड़ता था
4: जी,
5: जो उनके प्रॉफिट को कम करता था। दूसरा, चूंकि काफी हाई रेट कॉस्ट पे लोन मिलता था तो वो एक छोटा अमाउंट लेते थे, जितना बेसिक जरूरत होती थी उतनी ही लेते थे क्योंकि काफी ज्यादा उनको इंटरेस्ट देना पड़ता था। स्कीम में रिजनेबली गुड अमाउंट, जिसको कहते हैं कि पहले 10,000 रुपया जो अभी बढ़ के 15,000 रुपया हो गया, फिर 25,000 रुपया, फिर 50,000 रुपया का लोन मिलता है, तो उनको सिर्फ ना बिजनेस चलाने के लिए बल्कि बिजनेस बढ़ाने के लिए सुविधा हो रही है और इसकी वजह से उनका ओवरऑल इनकम इसलिए बढ़ रहा है कि उनके बिजनेस का साइज बढ़ रहा है
4: जी।
5: तो दोनों रूप से फायदा हुई और हमने इम्पैक्ट स्टडी कराया, 2 स्टडी कराया था, तो उसमें निकल के आया कि इनका इनकम जो है करीब करीब 20% से एनुअली बढ़ रहा है जिन्होंने इसके अंदर लोन लिया है। तो इसका दोनों वजह से है, कॉस्ट कम होना और बिजनेस का बड़ा करना।
4: कोई एक उदाहरण जो आपके जहन में ताजा हो रहा हो इस समय बात करते समय कि किसी के जीवन स्तर में आपने सुधार देखा हो, क्या काम करता था वो व्यक्ति?
5: बहुत लोगों ने बिजनेस को बड़ा किया, पहले थोड़ा सा क्वांटिटी रखते थे, जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो वो बताते हैं कि चाहे वो फल वाला हो, सब्जी वाले हो या आर्टिफैक्ट्स वाले हो, उनका दायरा बढ़ गया, उनका स्टॉक का क्वांटिटी बढ़ गया और उनकी कैपेसिटी बढ़ गई। कुछ ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी किया कि पहले आप सिर्फ फल बेच रहे थे, अब उसका आप जूस भी बेच रहे हैं या कट फ्रूट फ्रूट्स भी बेच रहे हैं, सिर्फ आप मछली बेचते थे, अब मछली को जो है सो फ्रिज में रख रहे हैं तो उसको ज्यादा समय तक बेच पा रहे हैं या फिर उसको आप प्रोसेस करके बेच रहे हैं। पहले आप छोटी आय के आपके पास पूंजी थी तो आप छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स खरीदते थे, अब जब ज्यादा पैसा है तो बड़े बड़े महंगे आर्टिफैक्ट्स भी खरीद के आप दुकान में रखते हैं। तो हजारों ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, आपको बता देंगे लोग कि कैसे उनके बिजनेस को बढ़ावा मिला है इससे।
4: आप लोगों को कोई चुनौतियां भी सामने आई जब स्कीम को आप लोगों के बीच लेकर के गए, उनका रुझान कैसे था? क्योंकि आज तो नंबर्स बड़े अच्छे दिख रहे हैं लेकिन शुरुआती दिनों में क्या माहौल था?
5: शुरुआती दिनों में डिमांड था, इसलिए कि कोरोना के कारण लोग काफी अफेक्टेड हुए थे, उनको पूंजी चाहिए थी और सरकारी जो मशीनरी है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यूएलबीज हो, अर्बन लोकल बॉडी, मतलब जो शहर का जो लोकल निकाय है, उन लोगों में भी रुचि थी। बट एक मुश्किल जो थी इनको बैंक तक ले जाना, और बैंकों में भी एक थोड़ा सा ये मानसिक रूप से ये होता है कि इतने गरीब लोगों को लोन देना वापस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। शुरुआती एक उलझन थी लोगों के दिमाग में, एक दुविधा थी कि ऐसा सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, बट बहुत जल्दी ये साबित हो गया कि ये काफी सक्सेसफुल है, लोग लोन चुका रहे हैं, तो उसके बाद ये पीछे मुड़ के इस स्कीम ने नहीं देखा।
4: ये वाकई खासतौर पर बैंकों के लिए भी दिक्कत होती है कि अगर वो किसी को लोन दे रहे हैं तो वापस आएगा नहीं आएगा, ये चिंता बैंकों के लिए बड़ी होती है। तो इस स्कीम में क्या कहीं ऐसा कुछ देखने को मिला है जरा भी कि नहीं लोगों की तरफ से इंतजार हो कि नहीं मेरा पैसा माफ कर दिया जाएगा ऐसा कुछ, या वो अपनी क्रेडिट रेटिंग सुधारने के लिए तुरंत ही लोन का भुगतान करने में सबसे आगे बढ़कर अपना काम करते हैं?
5: मैंने नहीं देखा कभी कि किसी ने इंतजार किया हो कि उसका लोन माफ हो जाए, लेकिन चूंकि गरीब लोग हैं तो उनके जिंदगी में बहुत सारी ऐसी जेन्युइन परेशानियां आती रहती हैं, वो हेल्थ का इश्यूज हो, बिजनेस का इश्यूज हो, आपके इलाके में बाढ़ आ गया, आपके गांव में स्थिति आपदा हो गई, गर्मी है, कुछ ही कारण से आपका बिजनेस हो, बारिश हो गई बहुत ज्यादा तो आपका बिजनेस अफेक्ट हो गया, तो बहुत सारे कारणों से लोग ऋण को चुका पाने में असमर्थ होते हैं। बट ऐसा मैंने नहीं देखा जहां पर कि उनके पास नियत नहीं हो चुकाने की, और इस स्कीम में इनबिल्ट इंसेंटिव है, आप पहला लोन पे करेंगे तो दूसरा बड़ा लोन मिलेगा, दूसरा लोन प्री पे करेंगे तो तीसरा और बड़ा लोन मिलेगा, आप तभी लेंगे लोन जब आपको जरूरत है, लेकिन आपको ये पता है कि जब जरूरत है तो वो लोन मिलेगा
4: जी,
5: तो इसलिए लोगों की रुचि है लोन को लेने में और रिपे करने में।
4: जी जाहिर है, तो मतलब कर्ज चुकाएंगे तो अपने कारोबार को बढ़ाने की रुचि लोगों में रहती ही है, और उसका एक इंसेंटिव भी मिलता है कि अगर आपने लिया हुआ कर्ज समय पर चुका दिया तो आपको और ज्यादा कर्ज मिलेगा। डिजिटल पेमेंट इंसेंटिव की भी आपने बात कही थी, वो किस तरह से होता है और पिछले 6 सालों में लोगों ने इसमें किस तरह का रुझान दिखाया?
5: डिजिटल इंसेंटिव है, अगर आप जैसे बैंक से अपने पैसा जो है सो QR कोड के थ्रू ऑनलाइन लेते हैं तो उसके लिए हम इंसेंटिव देते हैं, या आप जो अपनी पेमेंट करना है जो आप खरीद करते हैं उसके लिए आप पेमेंट करते हैं, पर्सनल हो या बिजनेस एक्सपेंसेस हो, तो एक तो रिटेल का हम देते हैं जो साल में मैक्सिमम 1200 रुपए तक मिल सकता है, 100 रुपए प्रति मंथ। दूसरा एक अभी शुरू किया गया है जिसमें क्वार्टर में हम 100 रुपए देते हैं, अगर वो स्ट्रीट वेंडर 2000 रुपए से ज्यादा का परचेज करता है और ऑनलाइन पेमेंट करता है, तो इस तरह से आप साल में 1600 रुपए तक डिजिटल इंसेंटिव के रूप में पा सकते हैं, जो आपके ऑलमोस्ट लोन के इंटरेस्ट का कॉस्ट सब्सिडाइज कर देता है।
4: जी, महिलाओं के लिए इस योजना में कोई खास पहल देखने को मिली?
5: महिलाओं की भागीदारी इस स्कीम में काफी ज्यादा है, अबाउट 45% जो हमारे बेनिफिशियरी हैं वो महिलाएं ही हैं, तो दो की इस स्कीम में अलग से कोई उनके लिए इंसेंटिव का प्रोविजन नहीं किया गया था, समरूप से ये स्कीम सबको बराबर रूप से सहायता प्रदान कर रहा है, लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी में बिजनेस में महिलाएं हैं और स्ट्रीट वेंडिंग में खास करके उनका योगदान दिखता है, तो उनकी भागीदारी वो हमारी स्कीम में भी दिखती है।
4: एक अहम सवाल ये भी उठता है कि जब हम अपने आसपास कारोबार में सुधार देखते हैं तो उससे उन लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ता है पूरी तरह से। एक तरह से अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें आप इस तरह की योजनाओं का क्या फायदा होता देखते हैं?
5: अर्थव्यवस्था को फायदा ये है कि जैसे 17,800 करोड़ ये फॉर्मल लोन्स दिए गए, ये पैसे कभी इनफॉर्मल सेक्टर से लिए जाते अब ये फॉर्मल सेक्टर से हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है और आगे बाहर से लोन लेने में सुविधा होगी। इनफैक्ट हमारे स्कीम में जो स्टडी है उसके हिसाब से 30% से ज्यादा लोगों ने अभी ही स्कीम से बाहर बैंकों से लोन लिया है, फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया है, ये फायदा है। दूसरा जो इम्पैक्ट है, जब आपका इनकम लेवल इम्प्रूव होता है तो आपकी सबसे पहली इच्छा होती है कि अपने फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड में जहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है या सबसे जरूरी आपको होता है उसकी बेसिक सुविधा की उन्नति कर सके, सुधार कर सके, वो आपके घर का हो, बच्चों की पढ़ाई हो या कोई हेल्थ का इश्यू हो, जिस घर के लिए अलग अलग चीजें क्रिटिकल होंगी, लेकिन जहाँ जो क्रिटिकल है वहाँ वो उस पर एक्सपेंड करते हैं, अपने को सुधारने की कोशिश करते हैं, और ये भी हमारे इम्पैक्ट रिपोर्ट में निकल के आया है कि आधे से ज्यादा लोगों के जीवन स्तर में कहीं न कहीं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है।
4: आपने इम्पैक्ट रिपोर्ट का जिक्र किया तो उसमें क्या क्या पैमाने रखे थे आप लोगों ने इस रिपोर्ट को बनाने के लिए?
5: एक तो हम देखना चाहते थे कि इनकम में क्या इम्प्रूवमेंट है, दूसरा ये देखना चाहते थे कि उस इम्पैक्ट उनके लिविंग्स पे आता है कि नहीं, तो 4 बेसिक पैरामीटर्स थे, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, उनके घर का ठिकाना था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद का और परिवार का हेल्थ, और खाने पीने का एक न्यूट्रिशन जो एक बेसिक आप कहते हैं अच्छा भोजन रिलेटिवली वो मिल रहा है कि नहीं, कि इन चारों पैरामीटर पे स्टडी किया गया था।
4: तो क्या परिणाम इसके निकल के आए, क्या लोगों के स्तर में एक अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला या एक नोशनल इंक्रीज जिसे कहते हैं कि एक मामूली फर्क नजर आया?
5: उस ढंग से उसको क्लासिफाई नहीं किया गया था उस रिपोर्ट में कि कितना अमूलचूल है, ये अमूलचूल तुरंत हो भी नहीं सकता
4: जी,
5: लेकिन हर एक कदम जो कि सही दिशा में बढ़ता है वो इम्पोर्टेंट है, उस तबके के लिए खास करके काफी मायने रखता है।
4: इस योजना का विस्तार भी किया गया है, आपको क्या लगता है किस तरह से और ज्यादा फायदेमंद होगा ये लोगों के लिए और नए लोग भी स्कीम में शामिल होंगे?
5: अभी तक ये सिर्फ शहरी लोगों के लिए था जो स्टैचुटरी टाउन्स हैं, अब हम इसको सेंसस टाउन में एंड पेरी अर्बन एरियाज में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो एक तो वो फायदा हो रहा है और दूसरा स्कीम में अब क्रेडिट कार्ड को जोड़ा गया है, दूसरा फायदा है लोगों के लिए जो एग्जिस्टिंग बोरोअर्स हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए है, और तीसरा हम उनके स्किल में ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनको एक बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए उस पर भी हम ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनके ट्रेनिंग कराना, उनका हैंड होल्डिंग कराना, उसके लिए भी सरकार कोशिश कर रही है।
4: सर, आपसे एक अहम सवाल ये जानना चाहेंगे कि जो छोटे लोन लेने वाले थे उनमें से कितने लोग बड़े लोन की तरफ बढ़े हैं, ऐसा कोई आंकड़ा अगर आप हमारे साथ साझा कर सके?
5: जैसे हमारा जो स्कीम है जो छोटे लोन है जिसको हम फर्स्ट लोन करते हैं, तो उसमें करीब अभी आज की तारीख में 75-75.5 लाख लोगों ने लोन ले रखा है।
4: बिल्कुल,
5: उसमें से करीब करीब 47 लाख से थोड़े कम लोगों ने रिपे कर दिया पूरी तरह से, या तो जो जिन्होंने फर्स्ट लोन रिपे कर दिया है वो सेकेंड लोन के लिए एलिजिबल है, उनमें से करीब 29 लाख लोगों ने सेकेंड लोन लिया है, और जो 13.5 लाख लोगों ने लोन रिपे कर दिया है उसमें से करीब 8 लाख लोगों ने थर्ड लोन लिया है। तो एक तरह से माना जाए कि काफी ज्यादा जो रिपे कर चुके हैं उनमें से मोर देन 60% 70% लोग जो है सो एग्रेसिव नेक्स्ट लोन लेते हैं।
4: तो चलिए हम बात करते हैं स्कीम के बेनिफिशरीज से भी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। विष्णु शंकर भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। विष्णु जी, सारनाथ के रहने वाले हैं आप, और क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में इस योजना का लाभ लेने के बाद? बोलिए राजेश जी।
6: सर हम लोग तो रेडी वाले हैं, सारनाथ म्यूजियम पे ठेलिया पे दुकान लगाता हूँ मैं सर
4: जी।
6: और

0: जो मेरा कार्ड है काफी पुराने समय से था जी। कोरोना काल जब आया तो हम लोग लगातार 2 साल के लगभग बंद किए हुए थे, दुकान फिर से शुरू की तो हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी सर। तो उसी समय सर पीएम सुनिधि जो आई, ये सर अच्छा हो कि पहली बार तो बैंक हम लोग को सम्मान मिलने लगा। फिर उसके बाद जो हम लोग उसमें रजिस्टर करा कर अपना 10,000 का लोन लिए, जब हम लोग उसकी एक्टिविटी करने लगे तो हम लोग को उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने लगा। पहली बार तो उसमें मंथली दे देना पड़ने लगा, फिर उसके बाद हम लोग जब 10,000, 20,000, 50,000 का लिए तो बैंक ऑटोमेटिक आज हमारी सर 4 लाख की लोन की हुई है। उसमें ओडी अकाउंट होती है सर, तो उससे सर हमको बहुत ही सहायता मिला और उसके साथ साथ पीएम सुनिधि साथ साथ हमारे फैमिली मेंबरों को भी सर जोड़ा गया है।
1: बिल्कुल। तो विष्णु जी बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपका कारोबार इसी तरह से आगे भी बढ़ता रहे। तो राजेश जी, अभी आपने विष्णु जी को सुना, वो अपनी बात
0: जी जी
1: बता
0: सर
1: रहे थे
0: हम
1: कि किस तरह से जो है उन्हें इस योजना का फायदा मिला और किस तरह से उन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। तो और भी जो लोग इस तरह की योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं या उनके मन में कोई डर है, कोई शंका है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: उनको मैं कहूंगा कि आप अपने शहर के यूएलबी बॉडी होता है, आप उनसे संपर्क, और अगर खुद से कर सकते हैं तो हमारे पीएम स्वनिधि के वेबसाइट पे जाकर के या मोबाइल ऐप से डायरेक्टली आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास स्ट्रीट वेंडिंग का सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट है तो, और
1: बिल्कुल
2: नहीं है तो वेंडिंग के लिए पहले अप्लाई करें। और स्ट्रीट वेंडिंग और लोन अप्लीकेशन अब कंबाइंड रूप से एक साथ होता है, तो आप जब अप्लाई करेंगे तो पहले आप यूएलबी आपका स्ट्रीट वेंडिंग का कंफर्मेशन करेगा, जिसको हम LOR कहते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और जब आपका LOR यूएलबी अप्रूव कर देगा तो फिर आपका एप्लीकेशन बैंक को चला जाएगा लोन के लिए।
1: तो राजेश जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद आपका।
3: अभी आप सुन रहे थे पीएम स्वनिधि के 6 वर्ष वित्तीय समावेशन के माध्यम से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के महाप्रबंधक राजेश कुमार और पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 10 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल। आज हम आपको सुनवा रहे हैं भूपेंद्र और मिताली सिंह की आवाज़ में गजल।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

श्रोता सुन रहे हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। आज आप सुन रहे हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ में गजल।

भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह द्वारा गाए इस गज़ल के साथ ही श्रोता हमारा आज का गज़लों का कार्यक्रम महफिल अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और आइए आप सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। पहला गाना है सावन को आने दो, गायक कलाकार हैं यशुदास।

अभी आपने सुना फिल्म सजा का ये गाना, आवाज़ें थी लता मंगेशकर की। और आइए सुनते हैं फिल्म शिक्षा का ये नगमा, आवाज़ें यशुदास की है।

अभी आपने सुना फिल्म यादों की बारात। इस फिल्म का गाना आवाज़ें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की, और आई सुनते हैं फिल्म टावर हाउस में लता मंगेशकर को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: We categorically reject.
2: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: Desist from making any comment on them.
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान